मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

नई सुबह, नया नजारा, हरे भरे पेड़ पौधे, फल फूल और आसमान में पंख फैलाए पंछियों का चहचहाना। सूरज की गुलाबी किरणें कहती हैं, कल की हार को अपनी आज की ताकत बनाते हैं। चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। मुट्ठी भर किस्मत, पर्वतों से ऊंचे हौसले, बाहों भरे सपने और समंदर से भी गहरी सोच, लेकिन चेहरे पर लहरों की सी मुस्कान लिए। नमस्ते लखनऊ के एक और बेहद ही रोमांचक सफर में मैं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा हूँ आपके साथ। सुप्रभात, नमस्कार।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6 बजे हैं नमस्ते लखनऊ के सफर में। दिन की शुरुआत देश दुनिया की खबरों के साथ। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और

0: इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के आज के अंक में विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत किसान भाइयों के अपने कार्यक्रम कृषि चर्चा के साथ। आज का विषय फसलों के मुख्य पोषक तत्व। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
2: शुभ प्रभात। कृषि चर्चा के आज के अंक में हम पोषक तत्वों के संबंध में बात करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी फसलें अच्छी तरह से हमें उत्पादन दे सकें। नाइट्रोजन की कमी देश के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। फास्फोरस और पोटास भूमि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फसलों के लगातार उगाने और पोषक तत्व प्रबंधन के अभाव में यह तत्व भी अधिकांश भूमियों में कम हो गया है। लेकिन नाइट्रोजन की अगर हम बात करें बृहद रूप में पहले नंबर पर, तो उसमें हम ये सोचते हैं कि कैसे हम जाने बिना भूमि की जांच कराए, यानी मिट्टी जांच कराए हुए भी, तो जो फसलें हम उगाते हैं उन फसलों की स्थिति और कुछ लक्षणों को देखकर हम जान सकते हैं कि इस

0: खेत में हमारे नाइट्रोजन की कमी है, जैसे कि पौधों की बढ़वार रुकी हुई दिखे और साथ ही साथ तना पतला एवं छोटा हो, तब भी हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी है। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, यह प्रभाव पहले पुरानी पत्तियों पर पड़ता है, नई पत्तियां बाद में पीली पड़ती हैं। पौधों में टिलरिंग कम होती है, यानी शाखाएं जो उसकी निकलती हैं, जो एक बंच में पौधे निकलते हैं, उसे भी हम टिलरिंग की श्रेणी में लेते हैं। फूल कम या बिल्कुल नहीं लगते हैं, फल फूल गिरना प्रारंभ हो जाता है, दाने कम पड़ने लगते हैं और नाइट्रोजन की कमी से जड़ें गुच्छेदार लाल बादामी रंग की हो जाती हैं। यह एक विशेष स्थिति देखने में आती है, जैसे कि फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये हमें उदाहरण स्वरूप देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन की जो अधिकता का प्रभाव है, वह भी हम पहचान सकते हैं कि हमारी भूमि में किस तरह की है। नाइट्रोजन की कमी नुकसानदायक है, उसी प्रकार नाइट्रोजन की अधिकता भी पौधों के लिए नुकसानदायक है। अधिक पैदावार से पौधे गिर जाते हैं, पौधे कोमल होने से कीट बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है, पौधों की सूखा और साथ ही साथ पाला सहन करने की भी क्षमता कम हो जाती है। यह सब नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। पौधे में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है तथा कार्बोहाइड्रेट व खनिज तत्वों की मात्रा कम हो जाती है और साथ ही साथ फसल देर से पकती है और उसमें दाने की उपज कम व भूसे की उपज बढ़ जाती है। इसी तरह से एक मुख्य पोषक तत्व में फास्फोरस को हम जरूर इसमें शामिल करना चाहेंगे, कारण कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है हमारे फसलोत्पादन के लिए। फास्फोरस की कमी के लक्षण देखने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि पौधों की वृद्धि अगर कम हो, तब भी आप समझें कि फास्फोरस की कमी है। जड़ों का विकास रुक जाता है, टिलरिंग कम होती है, पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, कुछ समय बाद पुरानी पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। इसी तरह पोटाश भी मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है, इसे भी हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, कारण कि यह जो नाइट्रोजन या फास्फोरस या जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व से लेकर के गौण पोषक तत्व जो हमारी मिट्टी में उपलब्ध हैं, उनके लिए यह बेहद आवश्यक होता है संचार के दृष्टिकोण से। इसकी कमी से पौधों में वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि झाड़ी नुमा होती है, यानी बिल्कुल लुंज पुंज सी स्थिति होती है। झाड़ियों को आप देखते ही हैं कि कुछ टहनी इधर लटक रही है, कुछ उधर लटक रही है, तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति हमारी फसलों में हो जाती है। पत्तियां छोटी पतली व सिरों की तरफ सूख कर भूरी पड़ जाती हैं और मुड़ भी जाती हैं। पुरानी पत्तियां किनारों और सिरों पर झुलसी हुई दिखाई पड़ती हैं और किनारे से सूखना प्रारंभ करती हैं। जड़ों की वृद्धि रुक जाती है या फिर कम हो जाती है और साथ ही पतली व भूरे रंग की हो जाती हैं। कल्ले बहुत अधिक निकलने लगते हैं, तने कमजोर हो जाते हैं, दानों का आकार छोटा हो जाता है, पौधों पर रोग लगने की संभावना अधिक हो जाती है। कारण यह है कि जो तत्व हमारी मिट्टी में हैं, पोटाश भी पौधों के लिए आवश्यक होता है कि जो तत्व हैं उनको पूरे पौधे के शरीर में दौड़ाने की व्यवस्था यह सुनिश्चित करता है, जिससे रोगों से या फिर कीटों से लड़ने की क्षमता पौधे में उत्पन्न होती है। आलू व सरसों में पत्तियां झुलस जाती हैं, यह भी पोटाश की कमी के कारण ही होता है। और साथ ही साथ जिसे हम लेमिना कहते हैं, यानी पटल ऊपर को उठ जाता है, आलू और फूल गोभी के साथ साथ सेम में भी इसे आप देख सकते हैं। तो ये तो रही हमारी जो प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति की बात है, उसके संबंध में जानकारी।
1: फसलों में मुख्य पोषक तत्व, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी, कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और ये है नमस्ते लखनऊ का सफर, जहां बारी है कार्यक्रम सुविचार की। आज का विषय प्रसन्नता।
2: जिंदगी हंसते खेलते जीने के लिए है। सुख चाहने वाले संतोषी बने और अपने आप को संयम में रखें। संतोष ही सुख की जड़ है, असंतोष में तो दुख ही दुख है। प्रसन्नता मनुष्य के भाग्य की एक विशेष रचना है जो सब में समान है, परंतु मनुष्य अपनी अजानकारी के कारण उसके लाभ से वंचित रहता है। प्रसन्नता बाह्य पदार्थों में नहीं, ये तो

0: हृदय के अंदर एक वस्तु है जो बाहरी आडंबरों से प्रभावित नहीं होता, वो सदैव प्रसन्न रहता है। मुस्कान में खर्च कुछ नहीं करना पड़ता, पर वो पैदा बहुत करती है। इसे देने वाले दरिद्र नहीं होते, किंतु पाने वाले निहाल बनते हैं। ये कौंधती तो बिजली जैसी है, पर उसकी स्मृति कभी कभी चिरस्थाई बनी रहती है। कोई भी इतना धनी नहीं जिसे मुस्कान पाने की आवश्यकता ना हो। कोई इतना दरिद्र नहीं जो इसे पाकर पुलकित ना हो उठे। ये घर में सुख बिखेरती है, व्यापार में लाभ कमाती है और संपर्क में आने वालों को मित्रता के धागों से जकड़ती चली जाती है। मुस्कान थके हुओं का विश्राम, निराशों का प्रकाश, ठिठुरे हुओं की धूप और पीड़ितों के लिए प्रकृति पदत्त सर्वोपरि उपचार है। हंसेंगे तो सफल समझे जाएंगे और लोगों का सम्मान पाएंगे। रोएंगे तो साथ देने वाले विरले ही होंगे। सामान्यतया रोने वालों से लोग बचते हैं कि कहीं अपने दुर्भाग्य की चपेट में हमें भी न लपेट ले। मनोरंजन के बाद मनुष्य हल्कापन, प्रकाश और नई चेतना अनुभव ना करे तो वो मनोरंजन निरर्थक और समय का अपव्यय ही कहा जाएगा। अच्छे और बुरे व्यक्तित्व को पहचानने का एक सही तरीका ये है कि अगर मुस्कुराने से किसी व्यक्ति का चेहरा अधिक सुंदर हो उठता है तो वो अच्छा है, और अगर भद्दा लगता है तो वो सचमुच बहुत बुरा है। स्वस्थ मनुष्य के चित्त के लिए प्रसन्नता वैसी ही प्राकृतिक है जैसे उसके गालों की लाली, और जहाँ कहीं स्वाभाविक म्लानता होती है वहाँ या तो दूषित वायु, अस्वास्थ्यकर भोजन, अनुचित रूप से कठिन परिश्रम होता है या भूल से भरी दिनचर्या। नारी के जीवन का संतोष ही स्वर्ण श्री का प्रतीक है। मन की प्रसन्नता ही व्यवहार में उदारता बन जाती है। अपने अतिथियों से प्रसन्नचित और हंसमुख बने रहो। दीप सा जलकर प्रकाश दे दो, फूल सा मिटकर सुवास दे दो। देनी है मिट्टी को अमरता, तो जिससे मिलो उसे उल्लास दे दो। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अंतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मन को हर्ष और उल्लासमय बनाओ, इससे हजारों हानियों से बचोगे और लंबी उम्र पाओगे। प्रसन्नता स्वास्थ्य की आधारशिला है। जो सदैव मुस्कुराते रहते हैं वो अस्वस्थ नहीं हो सकते। महात्मा गांधी कहा करते थे, यदि कोई मुझसे विनोद प्रियता छीन ले तो मैं उसी दिन पागल हो जाऊंगा। मुस्कान तथा आह्लाद थकान की दवा है, विनोद इनका जनक है। विनोद प्रियताएं अधिकांश महापुरुष का गुण रही हैं। गांधी जी के जीवन का तो ये अनिवार्य पहलू था। प्रसन्नता पुरस्कार नहीं, वरन सही ढंग से सोचने की आदत का स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रकार दुख कोई दंड नहीं, वरन गलत ढंग से सोचते रहने की सहज प्रतिक्रिया है। जो लोग दूसरों के जीवन को प्रसन्न बनाते हैं वे अपने जीवन को प्रसन्नता से दूर नहीं रख सकते।
1: प्रसन्नता, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुविचार। मीडियम वेव के मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं और ये समय है नमस्ते लखनऊ के सफर में ईश्वर के सुमिरन का। कार्यक्रम है आराधना।

नैन खुले तो दर्शन हो, होंठ खुले तो कीर्तन हो, याद रखूं सतगुरु तेरे नाम को, मन भटके तो सुमिरन हो। वाहिगुरु और गुरु की कृपा को ध्यान करते हुए आराधना कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गुरबानी के साथ।

ऊपर वाला देर से देता है पर देता जरूर है, जो मांग में सच्चाई हो उसकी सुनवाई भरपूर है।

कृष्ण की मुरली में जो प्रेम की धुन है, बस वही सच्चा सुकून है। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर।

प्रभु न दंड देते हैं, प्रभु न माफ करते हैं, वो तो कर्म फल के तराजू हैं जो बस इंसाफ करते हैं। और वो कहते हैं ना, झूठ की भीड़ में अकेले पड़ जाओ तो मत घबराना, दुनिया भले ही खिलाफ हो पर यकीन मानो अगर आप सच्चे हैं तो सत्य का साथ ही साक्षात ईश्वर का साथ है।

इस भक्ति गीत के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। श्रोताओं, आज आपने जिन कलाकारों को सुना वो हैं जसपाल सिंह, मन्ना डे, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और पंडित राजन साजन मिश्र।

आपके रेडियो सेट पर ये है आकाशवाणी लखनऊ, जहाँ जारी है नमस्ते लखनऊ का सफ़र और साथ ही जारी है प्रभु कीर्तन। इसी श्रृंखला में आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों के स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 6:55 हुए हैं, सुनिए संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: वाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमं अन्तिमं प्रचरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। यह भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोग रूपेण स्वसंबंधस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तंत्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंक वित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभाग

0: भागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति अपि च उभौ देशौ उन्नतनिर्माणस्य आधारभूतसंरचनायाः ऊर्जायाः अर्थव्यवस्थायाः रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः भारतम् इटली च सांस्कृतिकविनिमयं प्रवर्धयितुं प्राचीनसभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य 27तमं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परम् अवगमनं गभीरं कर्तुं सांस्कृतिककूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतरसम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिकसम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानाञ्च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम् पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां पशुपालकानां मत्स्यपालकानां कृषिवैज्ञानिकानां श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान् पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम् गृहमन्त्री अमितशाहः वित्तमन्त्री निर्मलासीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति पश्चिमबंगालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य विदर्भस्य च भागेषु आगामिदिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा चण्डीगढ दिल्ली पंजाब बिहार छत्तीसगढ तटीय आन्ध्रप्रदेश हिमाचलप्रदेश ओडिशा राजस्थान तेलंगाना उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम् अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की सुबह के 7 हैं नमस्ते लखनऊ के सफर में अब बारी आ गई है सेहत को आरोग्य बनाने की कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा आज का विषय विश्व चाय दिवस जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर
2: श्रोताओं नमस्कार मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेय की जो भारत के हर घर में सुबह की शुरुआत का हिस्सा है दोपहर की राहत है और शाम की संगत का बहाना भी जी हाँ हम बात कर रहे हैं चाय की और जब विषय चाय हो तो ये जानना दिलचस्प है कि हर साल 21 मई को विश्व चाय दिवस यानी वर्ल्ड टी डे मनाया जाता है ये दिन चाय के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को सम्मान देने के लिए बनाया गया है परंतु आज हम इस चर्चा में चाय को सिर्फ एक पेय ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा साथी मानकर बात करेंगे भारत में चाय केवल एक कप नहीं होती ये एक भाव है सुबह की अलसाई आंखों से लेकर थकान से भरे दिन के अंत तक चाय हर कदम पर हमारे साथ रहती है ये केवल स्वाद नहीं देती ये एक साथ होने की अनुभूति भी देती है चाहे किसी को बुलाना हो बात की शुरुआत करनी हो रिश्ते को मजबूत करना हो या अकेले बैठकर खुद से मिलने का मन हो चाय हर अवसर की साथी है पर ये जो छोटी सी चुस्की है

0: इसमें बहुत गहराई भी छिपी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चाय में प्राकृतिक रूप से मौजूद तत्व हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले बात करें सामान्य भारतीय चाय की, जिसमें दूध, पानी, चीनी और चाय की पत्ती के साथ अदरक, इलायची, तुलसी या लौंग जैसे मसाले डाले जाते हैं। ये संयोजन केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि ये सभी सामग्री मिलकर एक प्रकार का घरेलू काढ़ा बनाती हैं। अदरक और तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुण होते हैं। इलायची पाचन तंत्र को सुदृढ़ करती है और लौंग संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। इसलिए भारतीय मसाला चाय सिर्फ सर्दी जुकाम में ही नहीं बल्कि थकान और मानसिक तनाव में भी राहत देती है। अब अगर बात करें ग्रीन टी की, तो ये आजकल स्वास्थ्य प्रेमियों में बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। ग्रीन टी में कैटेचिन्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को बाहर निकालते हैं और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। ये वजन कम करने, हृदय स्वस्थ बनाए रखने और त्वचा की चमक को बरकरार रखने में मददगार मानी जाती है। वहीं हर्बल टी यानी जड़ी बूटियों से बनी चाय जैसे कि कैमोमाइल, लेमन ग्रास या पुदीना, ये शरीर को शांति देने वाली, नींद सुधारने वाली और पाचन में मदद करने वाली होती है। चाय के माध्यम से हम न केवल स्वास्थ्य की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं बल्कि स्थानीय किसानों और छोटे उत्पादकों की आय को भी सहयोग दे सकते हैं। भारत चाय उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में है और असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी जैसी जगहों की चाय आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। विश्व चाय दिवस का एक उद्देश्य ये भी है कि हम इन चाय उत्पादकों के योगदान को समझें और उनके प्रति आभार प्रकट करें। जब हम एक कप चाय का आनंद लेते हैं तो उसमें कई लोगों की मेहनत शामिल होती है। खेतों में काम करने वाले किसान, पत्तियों को सुखाने वाले और पैकिंग करने वाले श्रमिक और अंत में दुकानदार से लेकर वो हाथ जो प्यार से हमें चाय का कप थमाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से चाय का सेवन लाभकारी है लेकिन संतुलन यहाँ भी बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा चाय पीने से शरीर में एसिड बढ़ सकता है, नींद पर असर पड़ सकता है और कभी कभी आयरन के अवशोषण में भी रुकावट आ सकती है। इसलिए दिन में 2 से 3 कप चाय पर्याप्त मानी जाती है। खासकर अगर आप चाय में बहुत ज्यादा चीनी डालते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए क्योंकि ये आदत धीरे धीरे शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकती है। कोशिश करें कि चाय को थोड़ा और प्राकृतिक बनाएं, जैसे गुड़ डालें या चीनी की मात्रा कम करें। श्रोताओं, जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की तो उसमें केवल खानपान नहीं बल्कि मानसिक शांति, मेलजोल और जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी शामिल होती हैं। चाय एक ऐसा माध्यम है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। ये अकेलेपन में साथी है, परिवार में स्नेह की डोर है और समाज में संवाद का सेतु है। तो क्यों ना आज के दिन हम चाय को एक नई नजर से देखें, एक पेय के रूप में नहीं बल्कि सेहत, सादगी और सह अस्तित्व के प्रतीक के रूप में। विश्व चाय दिवस के इस अवसर पर हम सब मिलकर एक वादा करें कि हम चाय को केवल आदत नहीं बल्कि आदर्श बनाएंगे। हम इस पेय का उपयोग न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए करेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों से जुड़ने के लिए, संवाद को गहरा करने के लिए और खुद से जुड़ने के लिए भी करेंगे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: विश्व चाय दिवस, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। प्रस्तुत है आज दिन भर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को हम लेकर आएंगे 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे ऋतु भार्गव का ख्याल गायन। रात्रि 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे गायक कलाकार भूपेंद्र सिंह के स्वर में गजल। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8:00 सुनेंगे डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा की वार्ता, बदलते परिवेश में दूरस्थ शिक्षा। खेल जगत, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत इतिहास के पन्नों से जानेंगे 1983 विश्व कप का सफर। आलेख शमशुल आरफीन का और प्रस्तुति आसिफ इकबाल की होगी।

सुबह 9:15 पर जिले की हलचल कार्यक्रम में आज सुनेंगे आगरा और सुल्तानपुर जिले की हलचल। उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9:30 पर आज सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश क्विज प्रोग्राम आकाशवाणी एट 90 पार्ट 2। पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। लोकगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार कंचन श्रीवास्तव के स्वर में सुनेंगे अवधि लोकगीत। सुबह 9:50 पर सुनेंगे अवधि लोकगीत इनके स्वर में कार्यक्रम लोकरंग में, और दोपहर 2:45 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में। दोपहर 1:15 का समय ग्रामीण महिलाओं के लिए उनके अपने कार्यक्रम घर आंगन का। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा के साथ होगी भेंट वार्ता, आज के दौर में संयुक्त परिवार टूटने के कारण और उसके नुकसान। विज्ञान और किसान इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर 2:30 पर, और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे भेंट वार्ता सफलता की कहानी गन्ना उत्पादन। इस विषय पर विजयपाल यादव से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायंकालीन सभा के आरंभ में शाम 5:10 पर लेकर आएंगे इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग, जिसके अंतर्गत आज की बात के साथ जानेंगे हमारी धरोहर के बारे में। नई उड़ान इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:45 पर, आज इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर सामयिक चर्चा के साथ सुनेंगे विकास समाचार और चलेंगे आनंद के साथ ओबी पर, जहां चर्चा का विषय होगा हुनर, ज्वेलरी डिजाइनिंग, बिजनेस भी कला भी। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे राम मनोहर त्रिपाठी की वार्ता जल जीवन मिशन से गाँव में बदलाव, साथ ही होगी चर्चा और अपनी बात।

शाम 6:50 का समय कार्यक्रम खेती किसानी का, जिसके अंतर्गत चर्चा, लोकगीत और जानकारी की बातें के साथ सुनेंगे भेंट वार्ता, जायद सब्जियों में सामयिक प्रबंधन। इस विषय पर कौशल कुमार नीरज से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इन सभी ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ श्रोताओं, आपके मनोरंजन के लिए आकाशवाणी लखनऊ से समय समय पर हम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भी लेकर आएंगे, जहां शामिल होंगे आपके फोन कॉल्स, मेल्स और आपके फरमाइशी फिल्मी गीत। तो ये थी आज आकाशवाणी लखनऊ से दिन भर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में एक जानकारी।

मीडियम वेव के मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ, जो है धड़कन देश की। सुबह के 7:10 हुए हैं और ये समय है नमस्ते लखनऊ के सफर में, कार्यक्रम विविधा का, जिसे आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

विविधा कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार। दोस्तों, आज विविधा कार्यक्रम में हम आपके लिए एक नहीं बल्कि दो विषयों के बारे में विशेष जानकारी और साथ ही साथ चर्चा लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रकृति की और ईश्वर की महान रचना की, और वो है मनुष्य, यानी कि हम और आप। और ये रचना ईश्वर की सबसे महान इसलिए क्योंकि अन्य जीव जंतुओं की तुलना में मनुष्य के पास बुद्धि और दिमाग का एक बहुत ही अमूल्य उपहार है। और ये बुद्धि हमें विवेक के साथ साथ बहुत कुछ सोचने के लिए और बहुत कुछ समझने के लिए आगे बढ़ाती है, जो हमें अन्य जीव जंतुओं से अलग करती है। लेकिन जब ये विचार

नकारात्मक दिशा में मुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मनुष्यों में पशु के समान व्यवहार आने लगते हैं, और यही आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य के दिमाग में एक ऐसी हिंसक विचारधारा जिसे आतंकवाद कहते हैं, जिसका उद्देश्य है राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लाभ पाने के लिए आम जनता और सरकारों में भय या आतंक पैदा करना। और इसी आतंकवाद को खत्म करने के लिए आतंक विरोधी दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है कि हम जो विश्व में हमारे आसपास आतंकवाद यानी हिंसा के जो विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं और जिसकी वजह से आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो ऐसा ना हो। क्योंकि हम इंसान जब एक साथ मिलकर अपनी प्रकृति, अपनी पृथ्वी, अपने समाज, अपने देश और इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करेंगे, तो हम भी तो उसी का हिस्सा हैं और हम सब एक साथ रहेंगे अन्य जीव जंतुओं के साथ में तालमेल बिठाकर, जो प्रकृति का नियम ही नहीं उनका सपना भी है। आतंकवाद एक ऐसा हिंसक विचारधारा है जिसमें कि अगर हम देखें तो इसका मकसद केवल हिंसा करना नहीं होता, बल्कि उस हिंसा के जरिए समाज में दहशत फैलाना होता है। वे आम नागरिकों, सार्वजनिक स्थलों या सरकारी संस्थाओं को निशाना बनाते हैं ताकि सरकारें और आम जनता उनकी मांगों के आगे झुकें और मजबूर हो जाए। और इसके लिए हिंसा के कई तरीके भी अपनाए जाते हैं। कारणों पर अगर हम नजर डालें तो आतंकवाद के कई ऐसे कारण हैं जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक जिम्मेदार हैं। इसका प्रभाव कुछ यूं है कि आतंकवाद मानवता, शांति और विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके कारण निर्दोष लोगों की जान जाती है, अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है और लोगों के बीच आपसी विश्वास और भाईचारा खत्म हो जाता है। और ये वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमें इस मनुष्य जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम अपने आप में, अपने लोगों के साथ में ये वादा करें कि हम इसके विरोध में खड़े होंगे और आज विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस को साकार करेंगे। और इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं एक तरफ नकारात्मक प्रभावों की, तो बात सकारात्मकता की भी होनी चाहिए। विविधा कार्यक्रम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के दो विषय हैं, एक तरफ तो हम आतंकवाद विरोधी दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ आज विश्व चाय दिवस है। जी हाँ, एक ऐसा पेय जो हर महफिल की शान होती है और जहाँ भी दो लोग मिल जाएं, चाय पर चर्चा हो जाए तो फिर दिन बन जाता है। और सिर्फ चर्चाओं से ही नहीं, सुबह की शुरुआत चाय के साथ, क्या बात। ये चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ ही नहीं, बल्कि ये चाय विकासशील देशों में लाखों परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत भी है, लाखों गरीब परिवारों के लिए निर्वाह का मुख्य साधन भी है। चाय उद्योग हो या फिर चाय से जुड़ी ढेर सारी बातें, हंसी मजाक की हो या फिर उस पे गंभीर मुद्दों को हम आपस में बातें करें, चाय हर मुश्किलों को आसान बना देती है। चाय पीने वाले इस बात को बखूबी समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर किसी के दैनिक जीवन में चाय के महत्व को बताता है और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस दुनिया भर में चाय के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया भी जाता है। तो चलिए हम भी आज इस दिवस को एंजॉय करते हैं चाय के विभिन्न रूपों के साथ और इसके ढेर सारे अलग अलग स्वाद के साथ, और इस स्वाद को अपने जीवन में बरकरार रखते हुए, मिठास को बरकरार रखते हुए, चाय की खट्टी, मीठी और मसालेदार स्वाद के साथ।

0: साथ अब विविधा कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति को। मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ।
1: कहता हूं बाप तू आप ही पैमाना बन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 7:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे। उसके पहले संदेश।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। प्रदेश में स्वगणना का अंतिम दिन आज, कल से शुरू होगी मकानों की गिनती। और राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
3: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को

0: यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री को रोम में सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत समावेशी विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए वैश्विक मंच पर एक सशक्त आवाज बनकर उभरा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु देश व राज्य की क्षति है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं अधिकांशतः जागरूकता के अभाव में होती हैं। ऐसे में सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन स्तर पर सड़क सुरक्षा के संबंध में पाक्षिक बैठक कर कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवर स्पीड तथा नशे में वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान परिवहन निगम को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सही फिटनेस वाली बसें ही सड़कों पर चलें। साथ ही चालकों परिचालकों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव के कारण आने वाले वर्षों में फसलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य को अभी से खाद्य सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कल लखनऊ में हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। उन्होंने मंडी कर और मंडी शुल्क प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मंडियों में स्वच्छता, रंग रोगन, त्योहारों के दौरान प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण हटाना और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। एक रिपोर्ट।
2: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक निर्माण विभाग की 2026-27 की कार्ययोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में मानक, गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के अंदर भेज दिया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने कल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर अपना कामकाज संभाल लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका है।
3: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से MSME विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाए इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब

0: लोग मिलकर करेंगे।
1: प्रदेश में चल रही स्वगणना का आज अंतिम दिन है। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने आज भी लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में कल से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कल खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी।
2: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है। और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हुआ है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समय शेड्यूल में प्रोग्राम है।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कल 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने राज्य में कुछ स्थानों पर कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में रात में भी उमस भरी गर्मी पड़ने की आशंका है। भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, जबकि कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा आज 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। प्रदेश में स्वगणना का आज अंतिम दिन, कल से शुरू होगी मकानों की गिनती। और राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 7:32 हुए हैं।

समय हो चला है नमस्ते लखनऊ के सफर में शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है ख्याल गायन, कलाकार हैं ऋतु भार्गव और आप प्रस्तुत कर रही हैं राग नट भैरव। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना भी एक ताल में।

अभी आप सुन रहे थे ऋतु भार्गव के स्वर में राग नट भैरव में ख्याल गायन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात्रि 10:30 पर भी आप इन्हें सुन सकते हैं। इसी के साथ ही नमस्ते लखनऊ का सफर भी अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 8 बजे हैं, सुनिए समाचार प्रभात, हिंदी समाचार पत्र का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से

0: आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में

0: मालता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
1: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट आपका और कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
2: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की

0: सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सक्सेसफुली कंक्लूड्स हिज विजिट टू इटली, मार्किंग फाइनल लेग ऑफ हिज 5 नेशन ऑफिशियल टूर। इंडिया एंड इटली टू सेलिब्रेट 2027 एज ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation. The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए

0: during Modi's Italy visit. The paper also carries a picture of Prime Minister Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni at the Colosseum, and a screen grab of the video widely circulated on social media where PM Meloni is thanking PM Modi for presenting her a bag of toffees, Melody, a play on their names. The video has been viewed over 11 million times. The Pioneer writes, PM Modi's Melody gift to his Italian counterpart sends internet into a frenzy. The Asian Age writes, after talks with Putin, Xi calls for immediate end to West Asia war. Hindustan Times headlines, talks in final lap, strikes if no deal, says Trump. Iran says conflict will expand beyond region if US resumes attacks. Financial Express headlines, RBI lines up $5 billion swap to aid liquidity. In the growing market of cosmetics, Central Drug Standard Control Organization has issued an advisory saying cosmetics can only be rubbed, sprayed or sprinkled on body. The newspaper headlines, no cosmetic job with jabs, warns drug regulator. The Indian Express in an exclusive writes, working in my own grave, how workers are training robots that may replace them. The news item writes about workers in factories who are asked to wear smart glasses throughout their day. The exercise reflects a growing global push by AI and robotics companies to gather what's called egocentric data, first-person recordings of human activity that can teach machines how people perform physical tasks. And finally, The Economic Times writes, Google rejigs iconic search box for AI era, adding Google is redesigning its iconic search box and adding new artificial intelligence coding tools in its first step to expand influence in the age of AI. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पांच मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुज़ाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हल्के में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। इससे कबल कल भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को खुसूसी कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया, जो बाहमी ताल्लुकात में एक अहम कदम है। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें ज़राअत, अहम मादनियात, आयुर्वेद, साइंस, टेक्नोलॉजी और भारत से भारतीय नर्सों के इटली जाने में सहूलत पैदा करना शामिल हैं। दोनों मुल्कों ने टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने की रोकथाम से मुतालिक मुफाहिमत नामों पर भी दस्तखत किए। रोम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुश्तरका अखबारी बयान में कहा कि इटली दुनिया भर में डिज़ाइन और दुरुस्तगी के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान अपने हुनर, सलाहियत और कम खर्च इख्तिरा के एक पावर हाउस की है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली डिज़ाइन तैयार करने और दुनिया के लिए मुहैया कराने के

0: साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीद बरकरार है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का चौथा और आखिरी हॉकी मैच 3-3 गोल से बराबरी पर ख़त्म हुआ। इससे कबल इसी मैदान पर 18 साल तक की उम्र की खातून खिलाड़ियों के चौथे और आखिरी मैच में भारत ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अनितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में इटली का दौरा करने और वज़ीर आज़म जॉर्जिया मिलोनी से मुलाकात करने से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वज़ीर आज़म मोदी के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि भारत और इटली के दरमियान बातचीत सिर्फ रस्मी ताल्लुकात तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक ने खसूसी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। अखबार ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को नुमाया किया है कि इंतजामी फैसले में ताखीर लोगों को उनके जायज़ हकूक से महरूम करने के मुतरदिफ। अखबारात ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान दिए गए इस बयान को अहमियत दी है कि जनूबी कोरिया के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी और होगी मजबूत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुज़ाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सुबह के 8:45 हुए हैं। थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: आकाशवाणी लखनऊ से कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार। और दोस्तों, आज हमारे जो नए श्रोता जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, उनके लिए ये जानकारी कि अगर आप सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत तो अपने मेल भेजें हमें इस पते पर, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। और बस इसी के साथ जुड़ जाएंगे आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में सुनने के लिए अपने पसंदीदा फरमाइशी गीत। और कार्यक्रम का नाम है आपके मेल आपके गीत। शुरू हो चुका है ये सफ़र जहाँ पे कि मैं हूँ आपके साथ और आपके ढेर सारे मेल हैं हमारे पास में, और साथ ही साथ हमने चुन लिया है वो गीत जो कि अभी पहुँचेगा आपके।

रेडियो सेट पर। लेकिन इससे पहले हम बता दें उन श्रोताओं के नाम जिनके मेल को हमने कर लिया है शामिल, और ये हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर आज का इस कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा प्यारा सा ये खूबसूरत सा ट्रैक, जिसे हमने लिया है फिल्म गोलमाल से। और इस गाने में आवाज है किशोर कुमार की, बोल है गुलजार के और संगीत आर डी बर्मन का।

आकाशवाणी लखनऊ से ये है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में चुन लिया है हमने अगले ढेर सारे मेल को, जिसमें कि शामिल हो गया है ये नाम, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार बहाई वाले रक्षा मौर्या राम सागर शाहू रसूलपुर वाले रामचरण प्रजापति किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहवा जिला खीरी से विजय पाल यादव शुभम यादव ऋचा शिखा गुड़िया सुरभि राजेश कुमार और विजय पांडे जी मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति प्रतिभा शर्मा इशप्रीत शर्मा और माया कुमार जी खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा अंकुश अरोड़ा अशोक श्याम कुंवर प्रमिला श्याम कुंवर चीनू आसमा दीपक श्याम कुंवर अनुशी श्याम कुंवर टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज

जगमोहन, प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा और माया कुमार जी, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुषी श्याम कुंवर, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। और आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है ये खूबसूरत सा ट्रैक जो है फिल्म जाबाज से। इसमें आवाज़ है मनहर उदास और साधना सरगम की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

और श्रोताओं, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें यकीन है कि आप भी अपने ईमेल इस आईडी पर बढ़ा रहे होंगे, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर। तो फटाफट भेजिए अपने मेल और शामिल हो जाइए इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपके मेल आपके गीत। और इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया है हमने हमारे अगले श्रोताओं के मेल को, जो है शिवाजी नगर वर्ली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंद्राबाई खोबरखेड़े और छकुलिताई खोबरखेड़े, खांडवी बुलढाड़ा से दीपाली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े, थिलोरी दरियापुर से सुनैना पवन भूडे, तनुज पवन भूडे, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब संयम जैन, मुस्कान जैन, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दाऊद सराय

सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी और किसान रेडियो क्लब कुरसठ हरदोई से राम खिलावन, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनीराम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव और राम प्रसाद। और आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है ये खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी चितचोर। और इस गाने में आवाज है यसुदास की, संगीत और संगीत रविंद्र जैन का है। तो अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम कर दीजिए हाई, क्योंकि पहुंच रहा है आपके पास ये नया नया गाना आपके रेडियो सेट पर।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: आकाशवाणी लखनऊ से ये है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में शामिल हो गया है अगला मेल रजनी।

इस चौरसिया अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से, ग्राम रजौनी जिला महुआ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनका सारा परिवार, ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित, लखाना दौन जिला सिवानी मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे, छोटी बाजार गणेश चौक छिंदवाड़ा से माही दुबे, पलक दुबे, मधुर दुबे, सतीश लालाजी दुबे और राजेंद्र दुबे, और नागजुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर, बेबी आयशा खत्री, गुंग और जिला धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री। चलिए, आपके लिए पहुँच रहा है फिल्म बाबू का ये खूबसूरत सा ट्रैक, जिसमें आवाज़ है लता मंगेशकर की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अपने रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में अपने फरमाइशी गीत, और ये कार्यक्रम की अंतिम पेशकश जो है फिल्म तेरी कसम से। और इस गीत के लिए हमने जिन श्रोता के मेल को शामिल कर लिया है वो है वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, ग्राम पंचायत काई मऊ, कुरिया कुआरियापुर सैंडी हरदोई उत्तर प्रदेश से, मुदित राजपूत, विजेंद्र पाल राजपूत, अनवी राजपूत, सुनीता राजपूत, शोभा राजपूत, दीपा राजपूत, राम फेरेरा राजपूत, कपिल राजपूत, प्रांजल राजपूत, रमा राजपूत, अनया राजपूत और कृष्णा राजपूत, गांव फ्रासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मनवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, गाँव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब आपसे बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर, मंसूरी कमरुन निशा, साबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी, फुलेर नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। तो सुनिए अपने रेडियो सेट पर इस गाने को जिसे में आवाज है अमित कुमार की और फिल्म है तेरी कसम।

और अमित कुमार की आवाज में इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत समाप्त करने की दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति को नमस्कार। ये सारा मीडियम वेव के मीटर पर हम हैं आकाशवाणी लखनऊ। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और सुल्तानपुर जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और सुल्तानपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
2: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 प्रतिमा किए जाने के अवसर पर आगरा में अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर और माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम का लखनऊ से सजीव प्रसारण को जन प्रतिनिधि अधिकारियों और अनुदेशकों द्वारा देखा गया। इस अवसर पर जनपद के 226 अंशकालिक अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि शिक्षक केवल नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार होता है। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में स्वर्णिम दुग्ध अमृत संवाद समागम थीम पर आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। डेयरी कॉन्क्लेव का शुभारंभ पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कॉन्क्लेव में आगरा और अलीगढ़ मंडल के पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी विशेषज्ञ उद्यमी निवेशक किसान और गोपालकों द्वारा भाग लिया गया। डेयरी कॉन्क्लेव में स्वदेशी नस्ल संरक्षण और आधुनिक डेयरी तकनीक योजनाओं की जानकारी गोपालन पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था डेयरी और क्षेत्र में रोजगार और निवेश की संभावनाओं पर मंथन किया गया। कॉन्क्लेव में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित निवेशकों द्वारा अपने स्टॉल के माध्यम से दुग्ध उत्पादन नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि निराश्रित गौवंश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए एक माह में ही भुगतान करने का काम करेगी। विगत दिनों आगरा में भारत और न्यूजीलैंड के बीच बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। इस बिजनेस मीट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और न्यूजीलैंड सरकार के व्यापार और निवेश मंत्री टाड मैकल की मौजूदगी में व्यापार निवेश औद्योगिक साझेदारी के नए अवसरों का अन्वेषण करना और उन्हें बढ़ाने की ठोस रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए बिजनेस मीट में भारत और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियों और नीति निर्माताओं ने सहभागिता कर दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया जिससे व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आगरा आने वाले समय में निर्यात के क्षेत्र में

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे और इसी के तहत आगरा में भी एक इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की योजना प्रस्तावित है। आगरा में उद्योग बढ़ने से बेरोजगारी दूर होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ताजमहल के साथ साथ अन्य चीजों के लिए भी आगरा पहचाना जाएगा।
1: बहुत ही विस्तार से बड़ी सार्थक चर्चा आगरा के उद्योग जगत के साथ आज करने का सौभाग्य मिला। जो बेहतरीन काम आगरा में हो रहा है अलग अलग व्यापार में, चाहे वो चमड़ा का उद्योग हो, कपड़ा का उद्योग हो, मसालों का उद्योग हो, कि हम कैसे आगरा के उद्योग के लिए क्या नई योजनाएं, क्या नए प्लान्स कर सकते हैं।
0: धर्मवीर छत्रपति सामाजी महाराज की 369वीं जयंती पर छावा भारत क्रांति मिशन द्वारा राष्ट्रीय जन्मोत्सव समारोह 2026 के तहत महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुई राष्ट्रीय गौरव यात्रा के विगत दिनों आगरा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आगरा किला के सामने हनुमान मंदिर पर आयोजित संभाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, छावा भारत क्रांति मिशन के चीफ कोऑर्डिनेटर विजय काकड़े पाटिल द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। छावा भारत क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बिलास पंगारकर ने बताया कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर 10 मई को महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुई राष्ट्रीय गौरव यात्रा संभाजी नगर, इंदौर, चित्तौड़गढ़, भीड़भाड़ा होते हुए जयपुर से आगरा पहुंचे और यहां से जयपुर होते हुए नर्मदा के खलघाट पहुंचकर संपन्न होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि धर्मवीर संभाजी महाराज का जीवन और उनका संघर्ष आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है।
2: जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की चूलें हिला दी थी और औरंगजेब का दक्कन जीतने के सपने को कभी महाराज से आगे नहीं बढ़ने दिया था और हिंदवी स्वराज की स्थापना उन्होंने की थी और उनकी वजह से भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और सनातन संरक्षित रहा था। ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं आगरा की तरफ से प्रणाम करता हूं।
3: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का।
4: जिले में बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। पिछले एक सप्ताह से पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। निरंतर बढ़ती गर्मी के कारण पेयजल की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन बेहद संवेदनशील है। भीषण गर्मी व हीट स्ट्रोक से जिले के अस्पतालों के ओपीडी कक्ष में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई है। जनपद में नवागत जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह व पुलिस अधीक्षक चारू निगम के कार्यभार संभालने के बाद जन सुनवाई के मामलों में दिखाई गई गंभीरता के बाद जन शिकायतों का कुशलता पूर्वक निस्तारण कर रहे हैं। जिले की तस्वीर को बदलने के लिए प्रयासरत जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि
5: तो ये सारे जो हमारे कोर इश्यूज हैं, एक डे टू डे है, एक लंबे हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिवाइड करके पूरी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है डिपार्टमेंट वाइज उस पर वर्क करेगी। हर डिपार्टमेंट से हमने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी ले चुके हैं 50% हम लोगों से और बाकियों की भी ले रहे हैं। फाइनल करके हम पब्लिक भी शेयर करेंगे, अपनी साइट्स पे भी डालेंगे कि ये चीजें जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे।
4: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जनपद के किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। आर्थिक सहायता से खाली खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी है और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। योजना ने छोटे व सीमांत किसानों को खेती के लिए आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे प्रधानमंत्री का किसानों की आय बढ़ाने का सपना साकार होता दिख रहा है। जनपद सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कुल पात्रों की संख्या 4,51,600 है, जिनमें से 13 मार्च को 22वीं किस्त के रूप में 3,97,442 किसानों के खातों में योजना की धनराशि भेजी जा चुकी है। जिन किसानों को धनराशि नहीं आई है उनकी कमियों को ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर दूर किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने बताया कि
6: फार्मर रजिस्ट्री हमारी लगातार चल रही है और ये 31 मई तक चलेगा। इसमें लगातार निराकरण चल रहा है और आगे के दिनों में इन किसान भाइयों का जिसका किसी कारण से वंचित रहे हैं इनको प्राप्त होगा। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई अपने फार्मर रजिस्ट्री का जो कैंप चल रहा है उसमें अपना फार्मर रजिस्ट्री कराएं।
4: शत्रु संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के पर्यवेक्षक विद्यासागर ने बताया कि कुड़वार के रवनिया गांव के निकट गाटा संख्या 198 की नीलामी होगी। 11 जिलों में शत्रु संपत्ति नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। शहर के लोक निर्माण विभाग, सिविल लाइन व गभड़िया में भी कीमती संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में जनगणना 2027 को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रारंभिक सर्वे, मकान सूचीकरण और डिजिटल डेटा संकलन की प्रक्रिया शुरू करा दी है। जनगणना प्रक्रिया को मीडिया कार्यशाला के माध्यम से स्थानीय पत्रकारों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि नगर क्षेत्र के वार्डों में कर्मचारियों और सुपरवाइजरों की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। हाउस लिस्टिंग, ब्लॉक,

0: चिन्हित कर घर घर सर्वे की रूपरेखा बनाई गई है। जनगणना कर्मियों को डिजिटल एंट्री और मोबाइल आधारित डाटा फीडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशासन QR कोड आधारित पहचान प्रणाली और ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। 16 मई 2026 से घर घर सर्वे और स्वगणना अभियान शुरू हो चुका है। रेलवे, बैंक और सरकारी संस्थानों में सेल्फ एलुमिनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जनगणना 2027 को प्रमुख अभियान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी निगरानी लगातार हो रही है। प्रथम चरण में 22 मई से 20 जून तक जनगणना का कार्य कर्मी घर घर पहुंचकर मकानों की गणना करेंगे। सुल्तानपुर जिले में आगामी वृक्षारोपण अभियान को लेकर वन विभाग सक्रिय हो गया है। प्रभागीय वन अधिकारी अमित सिंह ने इस वर्ष व्यापक जनभागीदारी के साथ विशेष पौधरोपण अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी, घटते भूजल स्तर और पर्यावरणीय असंतुलन को देखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
1: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
0: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज आकाशवाणी लखनऊ से दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में विज्ञान और किसान इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर 2:30 पर। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे भेंट वार्ता, सफलता की कहानी गन्ना उत्पादन। इस विषय पर विजयपाल यादव से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे राम मनोहर त्रिपाठी की वार्ता, जल जीवन मिशन से गांव में बदलाव, साथ ही होगी चर्चा और अपनी बात। ग्रामीण महिलाओं के लिए उनका अपना कार्यक्रम घर आंगन लेकर आएंगे दोपहर 1:15 पर। और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चाओं के साथ साथ होगी एक भेंट वार्ता, आज के दौर में संयुक्त परिवार टूटने के कारण और उनके नुकसान विषय पर।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत होगी डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा की वार्ता, बदलते परिवेश में दूरस्थ शिक्षा। इसके साथ ही साथ खेल जगत कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत इतिहास के पन्नों से जानेंगे 1983 विश्व कप का सफर, आलेख शमशुल अरफीन का और प्रस्तुति आसिफ इकबाल की होगी। शाम 6:50 का समय कार्यक्रम खेती किसानी का होगा, जिसके अंतर्गत सुनेंगे चर्चा, लोकगीत और जानकारी की बातें, और इसके साथ साथ होगी भेंट वार्ता, जायद सब्जियों में सामयिक प्रबंधन। इस विषय पर कौशल कुमार नीरज से भेंट करता होंगे डॉक्टर।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश क्विज प्रोग्राम आकाशवाणी @90 का भाग दो। पेशकश आसिफ इकबाल की है।
1: सामईन, आकाशवाणी के 90 साल होने पर हमने आपके सामने क्विज प्रोग्राम की पहली किस्त पेश की थी। आज आपको सुनवाते हैं उसी प्रोग्राम की दूसरी किस्त।
2: तो अब हम अगला राउंड स्टेथोस्कोप राउंड शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी
3: और ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो आप पढ़ रहे हैं उससे ही जुड़ जाएंगे सवाल और इन सवालों से ही ये साबित होगा कि अगली जो दो टीमें होंगी वो कौन सी होंगी जो हमारे साथ आगे फाइनल राउंड में खेलेंगी। तो सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए मेडिकल साइंस से।
2: आप लोग तालियों से एक बार इजाजत दीजिए।
3: तो सबसे पहला सवाल एक बार फिर जाएगा टीम हवा महल के लिए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है।
2: ऑप्शन है नाक, कान या उंगली।
4: कान।
2: कान,
3: बिल्कुल सही जवाब।
2: टीम आबशार के लिए आपने पहले दो राउंड तो बहुत अच्छे खेले हैं। थर्ड राउंड में आपका अगला सवाल है
3: किस उपकरण से यानी कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं।
5: स्फिग्नोमैनोमीटर।
2: बिल्कुल सही जवाब है, विदाउट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। टीम आबशार का। टीम रजनीगंधा के लिए अगला सवाल है
3: मेटफॉर्मिन किस बीमारी में दी जाती है।
2: आपके ऑप्शन है हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी डायबिटीज और ऑप्शन सी है अस्थमा।
6: सर ऑप्शन बी डायबिटीज।
2: डायबिटीज।
3: और अब
2: फिर से सवाल हवा महल की तरफ।
3: टीम हवा महल के लिए थायराइड ग्लैंड कहां पर होती है।
2: ऑप्शन है आपके स्टमक, चेस्ट या नेक।
4: नेक।
2: नेक। इस बार ऑप्शन ना भी दे तो आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ग्लैंड थायराइड ग्लैंड नेक पर होती है।
3: अगला सवाल बहुत आसान है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स जो है उनका जीवन काल लाइफ
2: स्पैन
3: कितनी होती है।
2: 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन या 120 दिन।
5: 120।
2: जोरदार तालियां होनी चाहिए।
3: अगला सवाल है टीम रजनीगंधा एमोक्सिसिलिन किस वर्ग की दवा है।
2: आपके ऑप्शन है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक या सी सेडेटिव।
5: एंटीबायोटिक।
2: एमोक्सिसिलिन राइट आंसर।
3: बिल्कुल सही जवाब। और एक बार फिर माइक आता है टीम हवा महल की तरफ। ORS का इस्तेमाल किसमें किया जाता है।
2: ऑप्शन है आपके हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन या डायबिटीज।
4: डिहाइड्रेशन।

0: और एक बार फिर टीम आबशार के लिए,
1: कौन सा विटामिन हमारे ब्लड को क्लॉट करता है, यानी कि हेल्प करता है?
2: विटामिन के।
1: विटामिन के। टीम रजनीगंधा के लिए अगला सवाल है,
0: कौन सी दवा नींद लाने के लिए दी जाती है?
1: आपके ऑप्शन है सेडेटिव, एंटीबायोटिक या एंटीसिड।
3: सर ऑप्शन ए,
1: सेडेटिव।
3: जी
1: बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक बार फिर से टीम हवा महल की तरफ चलिए।
0: और टीम हवा महल के लिए सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है?
1: आपके ऑप्शन है शोल्डर जॉइंट, एल्बो, हिप या नी।
4: नी जॉइंट।
1: नी जॉइंट।
0: जोरदार
1: तालियां टीम हवा महल के लिए, बहुत बढ़िया।
0: और अब एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ, और सवाल है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है?
1: स्टमक, माउथ या इंटेस्टाइन।
2: माउथ।
1: माउथ बिल्कुल सही जवाब है आपका।
0: अगला सवाल टीम रजनीगंधा के लिए, शम साहब।
1: मानव शरीर में ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? बोन मैरो, किडनी या लीवर।
0: बोन मैरो, किडनी या लीवर।
1: ऑप्शन ए बोन मैरो।
0: और एक बार फिर टीम हवा महल की तरफ हम चलते हैं, और टीम हवा महल के लिए सवाल है,
1: सोलबुटामॉल किस रोग में दिया जाता है?
0: अस्थमा, डायबिटीज या फिर फीवर।
4: अस्थमा।
1: अस्थमा सही जवाब।
0: बिल्कुल सही जवाब। और अब अगले सवाल के लिए एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ, और सवाल है कि मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है?
1: किडनी, लीवर या लंग्स।
2: लीवर।
1: लीवर।
0: और रजनीगंधा के लिए सवाल आ जाता है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ बनता है?
2: पैनक्रियाज।
1: पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। आप लोगों का जो ये राउंड था वो टाई हो चुका है, लिहाजा हम एक सवाल आप लोगों के सब्जेक्ट से बाहर पूछेंगे, इसमें से एक टीम को जो हमें एलिमिनेट करना है।
0: ये सवाल आपके लिए आ रहा है जो आपको अगले राउंड तक ले जाएगा। रमनप्रीत सर पूछेंगे आपसे सवाल,
5: लेकिन ये जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोगों को हाथ उठाना है बस, ठीक है? मैं इसमें दो ऑप्शन दूंगा, जिसका हाथ उठेगा उसी का जवाब माना जाएगा। पहले आपको ये बताना है कि आकाशवाणी पे रजनीगंधा कार्यक्रम किस समय स्टार्ट होता है? ऑप्शन है 8 बजे रात में या 10 बजे।
2: सर रात 8 बजे।
5: गलत जवाब है, आप माइनस मार्किंग हो जाएगी, जिसकी वजह से टीम रजनीगंधा आगे जाएगी।
1: तालियां बजाएं सबके लिए एक बार। तो अब ये टीम हवा महल और टीम रजनीगंधा ये फाइनल में है।
0: बहुत शानदार।
1: अभी आखिरी राउंड शुरू हो रहा है, इस राउंड में जो जीता वही सिकंदर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बॉलीवुड और उर्दू अदब की दुनिया से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। टीम हवा महल के लिए पहला राउंड जो शुरू हो रहा है, जो जीता वही सिकंदर का, इसमें हम आपको एक गाना सुनाएंगे, उसके बाद सवाल पूछेंगे आपसे।

0: सवाल ये है, ये फिल्म थी दिल्ली 6 और इस गाने को आपने सुना। आपको ये बताना है कि इस गाने के लेखक कौन थे। ऑप्शन है गुलजार, प्रसून जोशी, आनंद भट्टाचार्य या फिर इरशाद कामिल। ऑप्शन बी प्रसून जोशी, और ये बिल्कुल सही जवाब
1: है। टीम हवा महल के लिए। टीम रजनीगंधा का अगला सवाल गौर से सुनिएगा। ये

0: कि इस गजल को लिखने वाले कौन है। और ऑप्शन है आपके पास गुलजार, समीर, निदा फाजली या फिर इंदीवर।
1: ऑप्शन ए गुलजार, क्या लगता है आपको?
0: नहीं, ये जवाब गलत है।
1: गलत है, आप डॉक्टर
0: इसे लिखा है निदा फाजली ने।

0: ये आवाज सुनी आपने, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज। आपको ये बताना है कि ये गाना किस फिल्म का है, नमस्ते लंदन, न्यूयॉर्क, रुस्तम या फिर सिंग इज किंग। ऑप्शन ए यानी नमस्ते लंदन।
1: नमस्ते लंदन कह रहे हैं भाई साहब।
0: बिल्कुल सही जवाब।

0: कहना आपने सुना, फिल्म थी कयामत से कयामत तक, गाया था उदित नारायण ने, और आपको ये बताना है कि गाना किस पर फिल्म आया गया है। ऑप्शन है आपके सलमान खान, शाहरुख खान, या फिर आमिर खान, या फिर सैफ अली खान।
1: ऑप्शन सी क्या है भाई?
0: आमिर खान।
1: आमिर
0: बिल्कुल
1: खान
0: सही जवाब,
1: बिल्कुल सही जवाब, टीम रजनीकांत के लिए जबरदस्त।
0: और अगला गाना प्ले करें।
1: हाँ बिल्कुल।

0: गाना आपने सुना सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, ये किस फिल्म का गीत है? कुली नंबर वन, बेटा, डर या फिर आशिकी?
1: आशिकी। जोरदार तालियां। वेल डन।

0: जिंदगी की यही रीत है। मिस्टर इंडिया का ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है?
1: टीम रजनीगंधा के लिए ये सवाल।
0: राहुल रॉय, अक्षय कुमार, अनिल कपूर या फिर सुनील शेट्टी? ऑप्शन सी, अनिल कपूर। बिल्कुल सही जवाब।
1: टीम रजनीगंधा के लिए बहुत बढ़िया आपने खेला है।

0: आवाज आपने सुनी, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। आपको बताना है कि इस गीत को गाया किसने। ऑप्शन है पंकज उदास, कब्बन मिर्जा, अनवर या फिर शब्बीर कुमार।
1: पंकज उदास।
0: गलत जवाब। इस गाने को गाया है कब्बन मिर्जा ने।

0: जी।
1: और ये सवाल है
0: रजनीगंधा के लिए।
1: बिल्कुल टीम रजनीगंधा के लिए, तेरे मस्त मस्त दो नैन, ये किस फिल्म का गीत है? बहुत आसान सा सवाल है और ऑप्शन आपके पास है, रेडी, टाइगर जिंदा है, सुल्तान या फिर दबंग।
0: सुल्तान, इजहारे ताजियत अगेन, ऑडियंस पोल दबंग।
1: यानी आपका जवाब यहाँ पर होता है गलत। अब सवाल आपके पास आए हैं, बॉलीवुड से रिलेट करते हुए हैं।
0: टीम हवा महल के लिए प्ले करिएगा।
2: अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब यही मेरा कलमा है और यही मेरा मजहब।
1: आवाज आपने सुन ली शाहरुख खान की, आपको बताना है ये डायलॉग किस फिल्म का है।
0: ऑप्शन,
1: माय नेम इज खान, डंकी, पठान या फिर रईस।
0: रईस, ओहो,
1: बिल्कुल सही जवाब। और अगला डायलॉग सुनाएंगे।
3: ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है।
1: सुन लिया आपने, सवाल भी हम आपको बता दें, आपको ये बताना है कि सनी देओल साहब इस फिल्म में कात्या किसे कह रहे हैं। और ऑप्शन हम आपको बता दें, अमरीश पुरी, परेश रावल, डैनी या फिर आशीष विद्यार्थी।

0: ऑप्शन ए अमरीश पुरी।
1: गलत जवाब।
0: गलत जवाब। सही जवाब है डैनी।
2: सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की।
0: सुन लिया, ये फिल्म कालीचरण का डायलॉग है और आपको बताना है कि लॉयन किसे कहा गया है, उस अभिनेता का नाम बताना है, रंजीत, प्रेम चोपड़ा या फिर अजीत।
1: प्रेम चोपड़ा।
0: सही जवाब है अजीत।
3: वो गैम्बो खुश हुआ
1: जी।
0: आपको बताना है ये डायलॉग किस फिल्म में बोला गया है, फिल्म तिरंगा, फिल्म खून भरी मांग, मेरी जंग, मिस्टर इंडिया या फिर हम पांच।
1: टीम रजनीगंधा। ऑप्शन बी क्या है?
0: मेरी जंग।
1: मेरी जंग ऑप्शन बी राइट, यही है। गलत जवाब।
0: सही जवाब है मिस्टर इंडिया।
1: मिस्टर इंडिया। चलिए ये राउंड यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अब हमारा फाइनल राउंड शुरू होने वाला है। पहला जो सवाल होगा इसमें उर्दू अदब से जुड़े सवाल होंगे। टीम हवा महल के लिए उर्दू अदब का सवाल है, गालिब का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है जफर अली गालिब, असदुल्ला खान गालिब या इनमें से कोई नहीं। दूसरा वाला असदुल्ला खान गालिब, बिल्कुल सही जवाब है, तालियां हो जाएं।
0: और अगला सवाल क्या है?
1: अगला सवाल हमारा है लफ्ज मर्द का मुतजाद क्या है? ऑप्शन क्या है जमशेद भाई?
0: आदमी, इंसान या फिर औरत।
4: सर ऑप्शन सी औरत।
1: बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हमारा है, एक शेर दे रहे हैं आपको और आपको इसके राइटर का नाम बताना है। शेर है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। जमशेद भाई ऑप्शन दे दीजिए।
0: ऑप्शन ज़ौक, गालिब या फिर मीर।
5: मीर।
0: मीर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही है, गलत है?
1: सही जवाब। अगला सवाल आपके टीम रजनीगंधा से, लव गुफ्तगु का पहला हर्फ कौन सा है? के ऑप्शन है गाफ, बी गैन, सी इनमें से कोई नहीं।
4: सर गाफ है।
1: गाफ। क्या कहते हैं सईद अख्तर भाई? बिल्कुल सही जवाब है टीम रजनीगंधा का। शेर फिर से आप ही के हिस्से में आ रहा है, बेहद फेमस शेर है ये, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।
0: ऑप्शन दे दे। इकबाल, हसरत मोहानी या फिर गालिब।
5: इकबाल।
1: इकबाल।
0: इकबाल।
1: ओ बहुत बढ़िया, आपने इजहार ताजियत किया।
0: बिल्कुल गलत जवाब।
1: बिल्कुल गलत जवाब।
0: और आखिरी सवाल
1: आपके लिए, इस बार आपके लिए शेर एक आ रहा है, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सवाल क्या है?
0: ये शेर किसका है? ऑप्शन है आपके पास बशीर बद्र, जिगर मुरादाबादी या फिर गालिब।
4: सर ऑप्शन सी गालिब।
1: मिर्ज़ा गालिब
4: जी।
1: इज़हारे ताज़िया नहीं करेंगे आप लोग? गलत जवाब। और इसी के साथ ये राउंड यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। हमारे जजेस अभी जो विनर है उसका नाम अनाउंस करेंगे।
0: काफी जद्दोजहद और आपने देखा कि बहुत खूबसूरती के साथ आप लोगों ने खेला फाइनल राउंड में। दोनों ही टीमों ने बड़ी मेहनत की, टीम हवा महल बहुत खूबसूरती के साथ खेली और टीम रजनीगंधा काबिले तारीफ, लाजवाब। ढेर सारी तालियां, एक बार तालियां पहले हो जाए,
1: जोरदार तालियां हो जाए। ये फाइनल
0: बहुत,
1: राउंड
0: बहुत मेहनत की दोनों टीमों ने। और आकाशवाणी एट 90 जो गौरवशाली हमारे साल चल रहे हैं और आज एरम यूनानी मेडिकल कॉलेज में हम मौजूद हैं और क्विज प्रोग्राम के जो विनर हैं यानी जो जीता वही सिकंदर, तो इस राउंड में सबसे ज्यादा नंबर की बात करेंगे तो टीम रजनीगंधा को मिले हैं 40 पॉइंट। जोरदार तालियां
1: होनी चाहिए।
0: और टीम हवा महल को मिले हैं 60 यानी
1: 60 पॉइंट। जो जीता वही सिकंदर,
0: तो जोरदार तालियां हमारी टीम हवा महल के लिए, जो जीता वही सिकंदर। और आज की सिकंदर टीम बनी है हवा महल टीम। और मैं दावत दूंगा हमारे सहायक निदेशक आकाशवाणी प्रोग्राम सुभाष खन्ना जी को कि वो स्टेज पर आए और हमारी विनर टीम को
1: ट्रॉफी यानी मोमेंटो पेश करें। मोहतरम सुभाष खन्ना सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। टीम हवा महल जो कि इस राउंड में

0: यानी फाइनल में विनर रही है, ये मोमेंटो आपके लिए है, जोरदार तालियां होनी चाहिए जल्दी से।
1: और उसके बाद रनर टीम हमारी है टीम रजनीगंधा
0: के लिए,
1: और उसके लिए स्टेज पर हम बुलाएंगे आसिफ इकबाल सर और रमनप्रीत सर, कृपया स्टेज पर आए दोनों लोग।
0: जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने भी,
1: बहुत खूबसूरती के साथ आप लोगों ने खेला, शानदार।
0: और आखिरी जो थर्ड टीम है टीम आबशार,
2: टीम आबशार के लिए मैं कहूंगा कि आप ये समझ लीजिए आप जीते नहीं हैं, लेकिन आज के बाजीगर आबशार
0: जी, बिल्कुल सही बात है, जोरदार तालियां आपके लिए।
1: और बहुत खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को अख्ताम तक पहुंचाया जुबैर साहब ने,
0: जुबैर खान साहब की,
1: जुबैर साहब को मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर साहब का।
3: अदा करना चाहूँगा आकाशवाणी लखनऊ से आए हुए पूरी टीम का एक बार फिर, ये मेमेंटो मेरे लिए बहुत बड़ा मेमेंटो है, बहुत सारे मेमेंटो मिले हैं मेरी अलमीरा में रखे हैं, लेकिन आकाशवाणी से मिला हुआ इस पे जो आकाशवाणी लिखा है रियली ये मेरे दिल के करीब है, अब मैं वाकई में इमोशनल हो रहा हूँ।
1: बहुत शुक्रिया आप सभी का।
4: सामईन ये था हमारा क्विज प्रोग्राम, हम इसमें शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों के बेहतर मुस्तकबिल की दुआ करते हैं। अपनी राय मशवरा या खत आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 7991778157। इसी के साथ इजाजत दें अपने मेजबान आसिफ इकबाल को, आदाब।
5: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 9:50 हुए हैं, प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज की अवधि लोकगीत कलाकार कंचन श्रीवास्तव, इनके स्वर में सबसे पहले आइए सुनते हैं देवी गीत।

कंचन श्रीवास्तव के स्वर में अभी आप सुन रहे थे खेमटा। इसी के साथ ही लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त होता है। आपको बता दूं, आपके साथ संगतकर्ता थे ढोलक पर दिलीप त्रिवेदी, हारमोनियम पर ललित चंद्र भट्ट, बांसुरी पर मुकेश कुमार और साइड रिदम पर गौरव गुप्त। श्रोताओं, कंचन श्रीवास्तव के स्वर में अवधि लोकगीत आप दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम लोक माधुरी में भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 10 बजे हैं, थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत।

0: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
1: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
0: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहे, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपकी रेडियो सेट पर पहुंच रहा है इस कार्यक्रम का पहला नगमा, फिल्म तीसरी कसम मंजिल से। आवाज मोहम्मद रफी की है, बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत RD बर्मन का।

0: बातों बातों में। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़, अमित खन्ना के लिखे इस गीत को संगीत दिया राजेश रोशन ने।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये है आकाशवाणी लखनऊ, सुबह के 10 बजे हैं, सुनिए न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की, कहा पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा वे इस वर्ष भारत के साथ अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर्ज से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाज, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। सुश्री मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहाँ भारत

0: की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वह भारत में अपने साझेदारों के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया।
2: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की यात्रा भारत साइप्रस साझेदारी की बढ़ती गति को दर्शाती है। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। आधिकारिक बयान के अनुसार शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की है। सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर कल आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास है। श्री पर्वतनेनी ने पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने इस वर्ष के पहले 3 महीनों में पाकिस्तान सैन्य बलों द्वारा की गई सीमा पार सशस्त्र हिंसा के कारण 750 नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाओं को दर्ज किया है। इनमें से अधिकांश हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप हुई हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरान के बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकेबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला जा चुका है जबकि 4 जहाजों को रोका गया है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर नए सैन्य हमले टालकर बातचीत का मौका देने की बात कही थी लेकिन समुद्र में कार्रवाई जारी है। अमरीका का कहना है कि इस नाकेबंदी से ईरान को रोज करीब $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 2 मालवाहक जहाजों को कब्जे में ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा युगोस्लाविया के विघटन और रवांडा नरसंहार के मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की अंतिम कार्यवाही पूरी हो गई है। अंतिम सुनवाई में रवांडा नरसंहार के कथित वित्त पोषक फेलिसियन काबुगा से जुड़ी कार्यवाही औपचारिक रूप से बंद कर दी गई। काबुगा का शनिवार को निधन हो गया था। दोनों न्यायाधिकरणों ने अत्याचार और नरसंहार से जुड़े 155 लोगों को दोषी ठहराया। इन अदालतों ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा और किसानों तथा मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। IPL क्रिकेट में

0: कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा लिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की। कहा, पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास। और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, वे इस वर्ष भारत के साथ अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 10:20 हुए हैं। थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे नए फिल्मी तरानों का कार्यक्रम चित्रपट से।
2: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
3: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
2: एक ऐसा कार्यक्रम
3: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
2: विकास की बातें, संगीत की मिठास
3: और एक नए भारत की आवाज।
2: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
3: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
4: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है नए फिल्मी तरानों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला नगमा आपके रेडियो सेट तक पहुंच रहा है फिल्म नादानिया से। सचेत टंडन और असीस कौर और सचिन जिगर की है आवाज़, बोल अमिताभ भट्टाचार्य की हैं और संगीत सचिन जिगर का।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म अय्यारी से, बोल मनोज मुंतशिर के और संगीत रोचक कोहली का।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम ये है चित्रपट से। कार्यक्रम का बाकी का नगमा इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी लखनऊ से कार्यक्रम चित्रपट से में हमारा अगला गाना पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर, फिल्म योद्धा से। अरिजीत सिंह और नीति मोहन की है आवाज, और इस गाने को लिखा है कुणाल वर्मा ने, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अब हम आपको सुना रहे हैं 21 फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है और ये अब आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है।

0: बेटा मुकेश।
1: यासर देसाई और अल्तमश फरीदी के स्वर में आइए अब सुनते हैं जबरिया जोड़ी फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक। रश्मि विराग ने इस गाने को लिखा है और संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

हम दो हमारी दो इस फिल्म का गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, जुबीन नौटियाल, दिव्या कुमार और सचिन जिगर की आवाज़ में, बोल शीली के हैं और संगीत सचिन जिगर का।

0: माहे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: चित्रपट से कार्यक्रम में अगला गाना पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर यासिर देसाई की आवाज में। बोल रोहित शर्मा के हैं और संगीत अमजद नदीम का और फिल्म का नाम है बहन होगी तेरी।

आकाशवाणी लखनऊ से चित्रपट से कार्यक्रम में ये पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर इस कार्यक्रम का अंतिम नगमा, ये है

आकाशवाणी लखनऊ से चित्रपट से कार्यक्रम में ये पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर इस कार्यक्रम का अंतिम नगमा। ये है आवाज़ अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की, फिल्म है वॉर 2। बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं और संगीत प्रीतम का।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 11 बज गए हैं और अब समय है कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से और सुनते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत। हमारा नंबर है 0522-22-38-825। तो जल्दी से कीजिए हमें कॉल और सुनिए अपनी पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कह में अब जान लेते हैं हमारे साथ हमारे आज के पहले श्रोता कौन से हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: आवाज जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: हमारा नाम हिमांशु यादव कुकरवारा जिला श्रावस्ती।
0: जी हिमांशु जी, आप हमारे कार्यक्रम के पहले श्रोता हैं, कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आज हमारे आप पहले लिसनर हैं?
1: हम जी बहुत खुशी हो रही है, हम कार्यक्रम में दो बार पहली बार कॉल लगी।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए पहली बार जब कॉल लगती है तो बड़ा अच्छा लगता है ना
1: जी।
0: चलिए, तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे शिवम?
1: जी फिल्म का तो नाम नहीं जानते और गाने के बोल है मैंने फिला मतलब ऐसे कुछ गाना है।
0: जी गदर फिल्म का ये गाना है और उदित नारायण ने इसे गाया है।
1: और दीदी जी कुछ मित्रों को डेडिकेट कर ले।
0: जल्दी से नाम ले लीजिए।
1: सबसे पहले तो आप हैं, बड़े दिनों के बाद मेरी कॉल लगी
0: जी।
1: और माहीलाल चंदेल जी, बेटा सिंह यादव जी है, दिनकर सिंह है और प्रेम सिंह सिसोदिया जी, पूनम दीदी जी और सभी के लिए
0: चल
1: करके दीप्ति जोशी
0: जी जी,
1: वो आती है तो मेरा कॉल नहीं लगता था।
0: देखिए प्रयास करते रहिए, कॉल लग जाएगी। देखिए आज लग गए, आपकी आप पहले हमारे कॉलर बन गए है कि नहीं
1: जी
0: जी। तो चलिए सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले श्रोता जान लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप अविनाश जी?
1: जी बहुत बढ़िया है, और आपसे बात हो रहा है तो और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जब कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो आपका जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज है वो हम सबको बेहद पसंद आता है।
0: धन्यवाद अविनाश जी, कार्यक्रम आप पसंद करते हैं हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और इतनी दूर से आप तभी हमसे जुड़ते भी हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल जी। क्योंकि देखिए आकाशवाणी लखनऊ को भारत के किसी भी कोने से हम सभी सुनते हैं, और कोने कोने से अब श्रोता अपने अपने मन की बात जो यहाँ पर विचार मतलब ये रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, इतनी दूर दूर से एक तरफ से दूसरी तरफ तक दोस्ती बढ़ती जाती है।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी अविनाश जी, तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी आज तो मुझे सुना दीजिए, करण अर्जुन मूवी से जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, कुमार सानू और अलका याग्निक जी की आवाज में, और पहले तो आपके लिए गा, उसके बाद कानपुर से पूनम जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, केसी सिंह जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, राकेश जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, और जितने तमाम सुनने वाले हैं सब
0: सभी के लिए। चलिए कार्यक्रम में कॉल करने के लिए अविनाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। और अब जान लेते हैं हमारे साथ अगले श्रोता कहाँ से हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार जी, आवाज़ बहुत कम आ रही है जी आपकी।
0: अभी आ रही? हेलो, अभी आ रही है
1: आवाज़?
0: अभी आ रही
1: थोड़ी ही।
0: जी अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मतलब जी मैं धर्मवीर बोल रहा हूँ, गांव बड़ौदा जिला जींद हरियाणा से।
0: धर्मवीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो कुछ नहीं करता मैडम जी, बस वैसे घर पे रहता हूँ। अब बालक बच्चे कर लेते हैं काम धाम तो।
0: जी जी, और हमारे यहाँ के कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं?
1: हाँ जी, मैं सुनता हूँ, ये प्रोग्राम सुनता हूँ हर रोज आपका, बहुत अच्छा लगता है जी। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करती हैं, अच्छा लगता है
0: जी। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज गीत सुनना है मैडम जी, फिल्म है प्राण जाए पर वचन न जाए, और गीत के बोल है एक तो है प्रिया जिसपे दिला
0: जी, आशा भोसले की जी की आवाज है। तो चलिए आपकी गीत को पहुंचा देते हैं आपके रेडियो सेट पर।
1: हाँ पहुंचा दो जी।
0: कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और अब हमारे साथ श्रोता कहाँ से जुड़े हैं जान लेते हैं।
1: से
0: हेलो
1: बात कर रहे हैं
0: हेलो, लग रहा है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्होंने सुनना चाहा था नदिया के पार फिल्म का गीत। तो कोई बात नहीं है, हम उनको सुनवा देते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हमारे नए श्रोता जो अभी हमसे जुड़े हैं वो भी हमें कॉल कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत। हमारा नंबर है 0522-2238-825। और अब जान लेते हैं हमारे श्रोता कहाँ से जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अपना नाम बताइए।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: और दीदी मैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यानी यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। दीदी
0: बेटा सिंह जी, आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं, हमारे साथ हम अक्सर हमारी आपकी बात होती है। कैसे हैं आप?
1: जी दीदी बढ़िया। इस समय तो मानो कि लो चल रही है और गर्म थोड़ा ज्यादा पड़ रही, तो घर पे ही है और कार्यक्रम आपका सुन रहे हैं
0: जी।
1: और सचमुच में आपका बात करने का तरीका जो एक अंदाजा है, इतनी मिठास है आवाज में, बहुत सुनने में आनंद आ रहा है।
0: धन्यवाद आपका बेटा सिंह जी।
1: जी
0: और देखिए ये तो आप बहुत अच्छा है क्योंकि इस समय गर्मी का हाल सभी जगह यही है, सभी जगह पे गर्मी का यही टेम्परेचर चल रहा है। और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर भाई ना निकलें, अब ज़रूरी है तो थोड़ा सा एहतियात बरतें, पानी पी कर निकलें, पानी साथ लेकर चलें, कान को थोड़ा सा लपेट कर सिर को चलें, क्योंकि देखिए थोड़ी सी बचत अपनी अगर कर ली जाए तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। क्यों, सही बात है ना
1: जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिसने
0: जी
1: सोचा सुन भी रहे हैं तो शायद
0: जी
1: उम्मीद है कि पारित कर
0: हाँ
1: लेंगे।
0: जी जी बिल्कुल ज़रूरी है। अपने शरीर का ध्यान तो हमें खुद रखना ही पड़ता है, तो जो बहुत ज़रूरी काम हो उसी के लिए ही निकले दिन में, बाकी समय आप अपनी बचत के साथ निकलें। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बेटा सिंह जी?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा फागुन और गीत की बोल रहेगा एक परदेसी मेरा दिल ले गया, मोटी मोटी आंखों में आंसू दे गया
0: जी।
1: और इसी मित्र को सुनना चाहेंगे। पहले हमारे हिमांशु यादव हो गए और माही लाल चंदेल हो गए, फूलचंद मंसारी से हो गए, दिनकर चित्रकूट धाम से हो गए, चंद्रपाल हो गए
0: जी। जी सभी के लिए आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।
1: ओके दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे अगले श्रोता जान लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अपना नाम बताइए।
1: कुलवंत सिंह नाम है, मैं कुलवंत सिंह।
0: जी कुलवंत सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: लुरिया पत्थर शाह ब्लॉक निगासन डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं मैडम
0: जी। क्या करते हैं आप?
1: ये संयोग है, कल भी हमारा फोन लग गया था। वैसे हमको 1978 से मैडम रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो ने हमको बहुत कुछ दिया है।
0: बिल्कुल, बहुत मनोरंजन भी है यहाँ पर और ज्ञान भी है आपके लिए, जानकारियाँ भी हैं।
1: इसमें मैं ऐसा जो कुछ ठोस है ना, इसमें कोई लाग लपेट वाली कोई बात नहीं, समाचार आते हैं सब कुछ आता है इसमें, सब कुछ है और सब कुछ बातें हमको। हेलो किसान भी तो नंबर हमारा अक्सर लगता है
0: जी,
1: बुधवार के बुधवार
0: जी जी। तो
1: हम सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लखनऊ के प्रोग्राम सुनते ही सुनते हैं, हमारा ये सर फेवरेट रेडियो है सबसे।
0: क्या बात है, तो चलिए
1: हमको लगभग 40 साल मैडम हो गया और तीसरी बार आज लगा है, कल भी लग गया था इसी टाइम
0: जी,
1: तो आज भी लगा है, अब नहीं लगाए एक दो महीना, दूसरे श्रोताओं को
0: बिल्कुल
1: दिया जाना चाहिए
0: जी। बिल्कुल सही है, तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कुलवंत जी?
1: हाँ जी मैडम, उसका नाम फिल्म का नाम नहीं मालूम, गीत है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान
0: जी जी। सन्यासी फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज में है।
1: मुकेश जी की आवाज में
0: जी जी, तो सुनवा दें आपकी पसंद का गीत।
1: हम सिख कौम से ताल्लुक रखते हैं लेकिन हम धार्मिक ज्यादा सुनते हैं ना, क्योंकि
0: जी
1: गाने तो मैडम बहुत सुनने को मिलते हैं, गाने का हमको इतना शौक नहीं है, जो बातचीत श्रोता करते हैं ना जहाँ तहाँ से
0: जी जी
1: वो बहुत अच्छी लगती है। बाकी हमारे पास कभी आप इधर आए तो आपका स्वागत है। गुरुद्वारा साहब है, गुरु नानक देव जी पहली पातशाही का चरण छोह प्राप्त जगह जहाँ उन्होंने कोरी को राजी किया था, उस जगह पर हम बोल रहे थे।
0: जी जी बिल्कुल कुलवंत जी, अगर उधर आना हुआ तो बिल्कुल आएंगे, लेकिन अभी अभी हम आपकी पसंद का गीत आप तक पहुँचा देते हैं।
1: राय साहब से हमारी बात अक्सर वैसे ही होती रहती है उनसे
0: जी जी जी। तो चलिए आपकी पसंद जी, आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और अब जान लेते हैं हमारे अगले श्रोता कहाँ से हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कैसे हैं? अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काचन पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज से रूप सिंह साहब से बोल रहा हूँ।
0: रूप सिंह जी, कार्यक्रम
1: तो
0: में
1: बढ़िया है, और आप सुनाइए मैम।
0: मैं भी अच्छी हूँ। क्या करते हैं रूप सिंह जी?
1: खेती बाड़ी करता हूँ
0: जी। तो इस समय तो कोई फसल होगी नहीं कि लगाई है?
1: नहीं,
0: कोई
1: मूंगफली मक्का है।
0: जी जी जी तो और गर्मी का मौसम तो है ही, इस समय आपकी तरफ
1: हाँ
0: भी
1: जी,
0: गर्मी ऐसी ही होगी मुझे लगता है, क्योंकि सब तरफ
1: गर्मी
0: ऐसी
1: काफी पड़ रही है अभी, और लू भी चलने लगी है काफी तेज।
0: जी। तो

0: रूप सिंह जी आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हिसाब खून का, दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, और कुछ मित्रों को, अजीत
0: जल्दी से नाम ले लीजिए।
1: शर्मा, रोशन लाल साग के हैं, दीपक साग के रचनाला से हैं, सतीश सरकोबा से हैं, मुन्ना लाल हैं, महिपाल, सुरेश और अनुप्रिया खुशी
0: चलिए
1: और
0: सभी,
1: वेदराम साग के।
0: जी जी आपकी पसंद का गीत आपके सभी मित्रों के लिए। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए रूप सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और अगली श्रोता हमारे कहाँ से जान लेते हैं। हेलो हेलो,
1: जी आपकी आवाज नहीं आ रही।
0: अभी आ रही है। हेलो
1: जी,
0: जी अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं मुनीर अहमद बोल रहा हूँ, गांव चित्तवा, जिला बाराबंकी।
0: मुनीर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, और आप ठीक हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह।
0: जी मुनीर जी, क्या करते हैं आप?
1: हम तो फिलहाल सिलाई का काम करते थे।
0: जी

0: आवाज़ आपकी भी बहुत हल्की आ रही है। हेलो, सिलाई का काम करते हैं जी, तो आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गीत आज हमको सुनना है वो रेडियो वाले साईं बाबा
0: जी, तो सुनवा दें आपकी, सुनवा दें आपकी पसंद का गीत।
1: लोगों के नाम ले सकता हूँ?
0: जल्दी से ले लीजिए।
1: हमारे बाबू भाई अंसारी हैं, वो अहमदपुर बाजार से
0: जी,
1: रामपुर कटरा से मोहम्मद अरमान हैं
0: जी,
1: नैना मोटे नूर आलम
0: जी, सभी के लिए आपकी पसंद का ये गीत आपकी रेडियो सेट पर।

0: आइए जान लेते हैं हमारे श्रोता कहाँ से हैं। हेलो
1: हेलो।
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: बहुत देर आवाज नहीं आ रही।
0: अभी आ रही है आवाज आपको?
1: हाँ, आवाज आई है।
0: जी बताइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? हमारा मीर प्रसाद नाम है।
0: मीर प्रसाद?
1: मीर प्रसाद, हाँ जी, हाँ
0: जी, ठीक है।
1: और बहन जी कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: लखनऊ से बोल रहे हैं, मोतीपुरवा रायबरेली बॉर्डर।
0: अच्छा जी, तो
1: मोती का पुरवा रायबरेली बॉर्डर, तहसील
0: अच्छा,
1: मोहलालगंज।
0: जी जी मोहलालगंज, ठीक है। तो
1: आज पहली बार कॉल लगा है।
0: तो कैसा लग रहा है आपकी बात हमारे
1: बहुत
0: साथ पहली
1: बहुत
0: बार?
1: अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
0: जी, हमें भी बहुत
1: अरे
0: खुशी होती है जब हमारे साथ एक नए श्रोता जुड़ते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा
1: हाँ
0: लगता
1: जी,
0: हो जब उनके नए साथी जुड़ते
1: अरे
0: हैं ना।
1: हम सर 90 से ट्रांजिस्टर लाइन तब से सुन रहे हैं।
0: जी,
1: तो जब से आप प्रोग्राम चालू हुआ तब से हम फोन लगा रहे हैं, तब से आज जाकर फोन लगा है।
0: देखिए मेहनत सफल हो जाती है, जब आप प्रयास करते रहेंगे तो कॉल कभी ना कभी तो लगेगी ही
1: हाँ
0: लगेगी।
1: जी, हाँ ये तो है ही है,
0: जी
1: कभी ना कभी तो इतनी लाइन बिजी रहती है कि
0: जी तो जल्दी से
1: फोन
0: बताइए
1: लगना बड़ा मुश्किल हो
0: कौन,
1: जाता
0: जल्दी
1: है।
0: से बताइए कौन सा गीत सुनेंगे, क्योंकि आपकी कतार में और भी श्रोता लगे हुए हैं। जी बताएं।
1: जी हाँ, अरे पुरानी फिल्म को कोई भी हो।
0: चलिए आपको सुनवा देते हैं रांझा फिल्म का ये गीत, और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।
1: जी हाँ, ठीक
0: जी
1: है।

0: और अब जान लेते हैं हमारे कार्यक्रम में आज के आखिरी श्रोता कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मैं देवी शंकर शुक्ल
0: जी
1: फतेहपुर से बोल रहा हूँ, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य।
0: देवी शंकर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, जल्दी से ये

0: मित्रा कौन है? हेलो
1: हेलो,
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मैं देवी शंकर शुक्ल
0: जी
1: फतेहपुर से बोल रहा हूँ। सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य,
0: देवी शंकर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, जल्दी से ये बता दें।
1: मेरा गांव मेरा देश का
0: जी
1: आया आया टरिया पे कोई चोर। मैडम जी, मेरा मेरा फोन बहुत दिन में लगता है, तो चार छह नाम है तो कहो तो बोल दो।
0: जल्दी से बोल दीजिए।
1: दिनकर सिंह, प्रेमदास बाबा जी, फूल चंद्र पाल, विजय कुमार पांडे, शारदा प्रसाद प्रजापति, भगवान सिंह, राकेश सिंह शिमला, आशुतोष त्रिपुरा।
0: जी, सभी के लिए आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर। देवी शंकर जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुवांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
0: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी,
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी,
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
2: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
2: शोला वनों को देखने से ऐसा

लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोलावन के बारे में कुछ और बातें। शोलावन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
0: जी,
1: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोलावनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओ, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
2: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
2: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
6: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
7: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें

0: और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
1: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
0: हाँ।
1: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
0: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
1: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
0: हाँ।
2: अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़।
0: इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
1: बिल्कुल सही कहा अटकू।
3: इसे काट।
4: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
1: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल।
5: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
6: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
0: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
1: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
5: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
1: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
0: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
5: वो उसे काटने लगे।
4: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
0: अच्छा ठीक है
1: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
5: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
6: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
5: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
7: अरे वाह अटकू मटकू,
5: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
0: पेड़ हमारे
1: दोस्त हैं।
0: जीवन में हरियाली लाओ,
1: पेड़ लगाओ।
8: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
11: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे। दोस्तों, जिंदगी में कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो थके हुए मन में भी नई उम्मीद जगा देते हैं।

पुराने गीतों की मिठास कभी कम नहीं होती और ऐसा ही गीत बरसों बाद भी आज भी उतना ही दिलकश लगता है।

0: लता मंगेशकर और मुकेश के युगल सुरों में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था सरस्वती चंद।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: सपनों को देना है नई रफ्तार तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर हर दिन शाम 5:45 पर। रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से

सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, पुराने गीत सिर्फ सुर और शब्द नहीं होते, ये यादों की वो खुशबू है जो हर बार दिल को छू जाती है।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की युगल सुरों में अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था नीला आकाश। और इसी के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत

0: के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। गंगाराम ने हमें थाना टडियावा जनपद हरदोई से सूचित किया है कि श्यामावती, जिनकी उम्र 50 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, ये दिनांक 18 मई 2025 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने लाल रंग की साड़ी, ब्लाउज व चप्पल पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना आप थाना टडियावा जनपद हरदोई को दे सकते हैं। ब्रज रानी ने थाना हरपाल

0: और जनपद हरदोई से सूचित किया है कि कुमारी साधना जिनकी है उम्र जिनका कद 5 फीट 3 इंच रंग गोरा चेहरा गोल है ये दिनांक 30 अगस्त 2022 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने मेहंदी रंग का सूट व सैंडल पहन रखा था। इनकी गर्दन पर तिल का निशान है। इनके बारे में कोई भी सूचना आप थाना हरपालपुर जनपद हरदोई को दे सकते हैं। शकील अंसारी ने थाना बघौली जनपद हरदोई से सूचित किया है कि आमिर अंसारी जिनकी उम्र 26 वर्ष कद 5 फीट 9 इंच रंग गोरा इकहरा शरीर ये दिनांक 15 अप्रैल 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने सफ़ेद टी शर्ट नीली पट्टीदार जीन्स पैंट पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9918306840। नंबर एक बार पुनः सुन लें 9918306840। मुनेश ने हमें ग्राम सुनौटा जनपद मंझीला जनपद हरदोई से सूचित किया है कि विपिन कुमार जिनका कद 5 फीट रंग सांवला है इकहरा शरीर है ये दिनांक 30 मार्च 2026 से लापता है। घटना के समय इन्होंने काली पैंट सफ़ेद शर्ट व चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप थाना मंझीला जनपद हरदोई को दे सकते हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं 7897398461। नंबर एक बार पुनः सुन लें 7897398461। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में इलाकाई खबरें नष्ट की जाएंगी।
6: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल लखनऊ में रोड सेफ्टी को लेकर एक आला सतही मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वज़ीर-आला ने कहा कि सड़क हादसात ज़्यादातर बेदारी की कमी से होते हैं, ऐसे में तमाम अज़ला में रोड सेफ्टी से मुतालिक ख़ुसूसी मुहिम चलाई जाएं। वज़ीर-आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वह सड़क की हिफाजत की कोशिशों के पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए सरकारी सतह पर 2 हफ्तेवार मीटिंग करें। उन्होंने स्टंटिंग, स्पीडिंग और नशे में गाड़ी चलाने की रोकथाम के लिए मुअसर इकदाम की हिदायत दी। मीटिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से कहा गया कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि सिर्फ मुनासिब फिटनेस वाली बसें ही सड़कों पर चलें और ड्राइवर और

0: कलेक्टर की बाकायदगी से सेहत की जांच होती रहे। वजीर आला ने यह भी हिदायत दी कि सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही करके ज़रूरी कार्रवाई की जाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अल नीनो के असर से आने वाले बरसों में फसलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए रियासत को अभी से ग़िज़ाई तहफ़ुज़ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कल लखनऊ में हुई एक जायज़ा मीटिंग में वजीर आला ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर प्रोजेक्ट गंगा और अंदरून मुल्क गंदम की प्रोसेसिंग को फ़रोग देने के लिए मार्केट फीस में छूट जैसे मसाइल का जायज़ा लिया।
1: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल महकमा तामीरात आम्मा के साल 2026-27 के लाहे अमल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायज़ा लिया। मीटिंग में रियासत के तमाम ज़िला मजिस्ट्रेट, वज़रा और अवामी नुमाइंदे शामिल हुए। इस मौके पर वजीर आला ने अफसरान को वाज़ह हिदायत दी कि तरक्याती कामों में मेयार और वक्त से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के हर एक ज़िले से मकामी ज़रूरियात के मुताबिक तरक्याती तजावीज़ तैयार करके एक हफ्ते के अंदर पेश की जाएँ। रियासती काबीना की तौसी में काबीनी वजीर बने भूपेंद्र चौधरी ने कल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के वजीर के तौर पर ओहदा संभाला। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की में MSME का अहम किरदार है।
2: निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से MSME विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाए इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
0: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में आइंदा नीट UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान के मद्देनज़र मरकजी हिफाजती और खुफिया एजेंसियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में जनाब प्रधान ने इम्तिहान को महफूज, गैर जानिबदाराना और शफाफ तौर पर कराने के लिए सख्त निगरानी और पुख्ता हिफाजती इंतजाम की ज़रूरत पर जोर दिया। रियासत में जारी खुद शुमारी का आज आखिरी दिन है। रियासती मर्दम शुमारी के डायरेक्टर और चीफ प्रिंसिपल मर्दम शुमारी अफसर शीतल वर्मा ने लोगों से आज भी खुद शुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। मर्दम शुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत रियासत में कल से मकानों की गिनती शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। इस दरमियान कल सुप्रीम कोर्ट ने मर्दम शुमारी 2027 के तहत ज़ात पर मबनी मर्दम शुमारी कराने के मरकजी हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मसला हुकूमत के पॉलिसी दायरा कार में आता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि पसमानदा तबकात के लिए फलाही इकदाम करने के वास्ते हुकूमत को उनकी तादाद जानना जरूरी है। रियासत में शदीद गर्मी और लू से लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही है। बांदा कल 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ रियासत का सबसे गर्म ज़िला रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। महकमा मौसमियात ने कल तक रियासत के बाज़ मकामात पर शदीद लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम के सभी श्रोता पंचन का प्रतिभा त्रिपाठी क्यार नमस्कार। आशा करी थी हमारी सभी सखी हो रही सब परिवार स्वस्थ और प्रसन्न हुई हैं। अच्छा यह बात है ना कि देखो जब हमार परिवार जो है वही खुशहाल रहते हैं तब हम पंचे भी खुश रही थन। मने कि परिवार के सुख माँ ही हमार सुख निहित रहते हैं और यह तान्य परिवार के छाप जोन है वही हमरे व्यक्तित्व पर भी पड़त है। हाँ तो दोनों मतलब एक दूसरे के से प्रभावित रहते हैं। हाँ और कौनों भी देखो मनई जो है वही के आचरण व्यवहार बोली संस्कार से वही के परिवार के बारे में बहुत कुछ आकलन हो जाते हैं। और यही कर उदाहरण भी देखो हम पंचन का देखे का मिलत है ना आसपास से का होते कि जब हम पंचे अपने बेटा बिटिया या कौनो भी मनई अपने बेटवा बिटिया के रिश्ता करे जाते हैं तो वही का देखते हैं बस वो यह पता लगावे में रहते हैं कि भाई परिवार नीक है कि नहीं। कहे कि यह विश्वास होता है कि अगर परिवार भला है हाँ वही की सोच नीक है तो जो वही के बेटा या बेटी हैं वह अच्छे हुई हैं वह नीक मनी हुई हैं। और कई बार तो देखो हम पंचन या कहानियों तो सुने हैं ना कि पानी पियो छान के और रिश्ता जोड़ो जान के। तो कहे के मतलब यह है कि हमार परिवार कैस है वही के बहुत कुछ जो असर है वही हमारे व्यक्तित्व पर पड़त है। और यह से कहा भी गवा है कि जो गधेरन है ना उनकर पहल पाठशाला परिवार का कहा जाते कहे से कि परिवार के संस्कार के छाप हमारे व्यक्तित्व पर पड़त ही। और जो लड़का है वही अपने परिवार में जो देखत हैं जो सुनत हैं वह सीखत हैं। तो अगर हमारे परिवार के वातावरण जो है वो या तय करत है कि आज जो ननुहार लड़का है वही काल भविष्य में कैस इंसान बनी या बहुत कुछ हमारे परिवार के संस्कार पर हमारे परिवार के जो वातावरण है वही में जो आचरण है वही पर निर्भर करत है। तो अगर परिवार के वातावरण शांत और खुशहाल है एक दूसरे के आदर सम्मान करे वाला है तो जो वही परिवार के जो लड़का गधेरन है नान नान छोट छोट बच्चा लड़का है तो वह आगे चल के एक अच्छे इंसान बनते हैं स्वस्थ और प्रसन्नचित रहे वाले व्यक्ति बनते हैं सबका सम्मान करे वाले व्यक्तित्व के रूप में उनका निखार होते हैं। और वह के उल्टा अगर कोनो ऐस परिवार है जहाँ की रात दिन किचकिच हो रही है लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ऐस लड़कन के व्यक्तित्व पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़त है। और अक्सर देखा गया है कि जब वे बड़े होते हैं तो भाई वह जो उन्हें लड़ाई झगड़ा वाले झगड़ालू व्यक्तित्व के रूप में उनका विकास हो जाते हैं और बहुत नकारात्मकता से घिरे रहते हैं उनका कोनो अच्छा मार्ग नहीं पकड़ पाते ना पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लागत कोनो काम धाम नहीं कर पाते। तो कुल मिलाए करके हमारे परिवार के जो है बहुत बड़ी भूमिका होती कोनो भी लड़का के व्यक्तित्व के निर्माण में। तो यह से देखो हम सब का यह कोशिश करे का चाहिए कि हम परिवार माँ अपन आचरण अच्छा रखी। हम अगर दूसरे के सम्मान कर रहे हैं हम अगर अपने परिवार की जो महरुएँ हैं जो बिटियन हैं उनका आदर सम्मान दे रहे हैं स्नेह दे रहे हैं तो जो भी घरे के बेटवा हैं बिटियन हैं वो जो देख रहे हैं वो आगे चल के वह ऐसा है करिए। हाँ यही के अलावा एक बात आपका और बताई कि हमारे परिवार में ही जो है लड़कन बच्चन बहुत कुछ सीखते हैं जैसे कि नैतिक विकास वह परिवार में सीखत है। एक सुरक्षित और जो प्यार भरा वातावरण वाला परिवार होते वही में जो लड़का बच्चा रहते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़त है। परिवार के माध्यम से ही जो बच्चा है वही अपन भाषा सीखत है धर्म परंपरा रीति रिवाज और संस्कृति से जुड़त है। तो भाई कुल मिला कि फिर बात वह आई कि परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती एक जो ननुहार लड़का है वही के व्यक्तित्व के निर्माण में। तो हम सब का यह कोशिश करे का चाहिए कि हम अपने परिवार की नींव का हमेशा अच्छे संस्कार और सद्गुणन से मजबूत रखे का चाहिए जो हमारी आगे आवे वाली पीढ़ी है उनका भी अच्छे संस्कार मिल सके। और एक बात बताई कि देखो परिवार जो है ना वही एक ऐस वृक्ष के समान होती जोने के नीचे भाई सबके सुख दुख साझा होते हैं। और मान लो कबो कबो का है कि कोनो बहुत बड़ी समस्या आ गई या बहुत काम धाम भाई है कोनो जग परोज है तो परिवार में जब सबको मिलजुल के रहते ना तो चुटकी बजावत देखो काम हो जाते बड़ी से बड़ी समस्या के हल निकल जाते। और वहीं अगर परिवार में कोई नहीं है भाई अकेले रहे पड़ रहा है तब फिर का होते कि जो घरेतिन हैं उनके काम में मनसेधु का ही हाथ बटावे का पड़ते हैं। तो परिवार की एक यह बहुत बड़ी भूमिका है। और यह जो हम बात कह रहे हैं तो यह कुछ भाव का लिया भवा एक लोकगीत हम आप सबका सुनवा रहे हैं तो आप सुनो। यह लोकगीत है डॉक्टर कल्पना एस बर्मन।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए।

0: सतर्क रहिए।
1: और श्रोता बंधुओं, देखो जैसन कि हम बात आज कही रहे हैं कि जो परिवार है वही की बहुत बड़ी भूमिका होती एक लड़का के व्यक्तित्व के निर्माण में। हाँ, और ख़ास करके जब हम बात करी थे संयुक्त परिवार की, तो देखो संयुक्त परिवार में बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर चाहे मान लो अगर घर के काम काज हैं, चाहे हमारे लड़कन बच्चन की देखभाल है, हाँ मान लो कहूँ हमका जाए का है, तो यह नहीं सोचे का परत कि भाई हमारे लड़का बच्चा को उस समय को देखी, हाँ वहाँ पर दादी हैं, चाची हैं, बुआ हैं। और सबसे बड़ी बात कि बच्चा का अपने घर में ही इतने लोग मिल जाते हैं वही का खेले के लिए, वही बातें साझा करे के लिए, वही का सही गलत की जानकारी देवे के लिए, कि वही बहुत कुछ होता ना जब घर में वही का जानकारी नहीं मिलत तब है लड़कन जो ने बाहर कहू कहू गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। तो यह सब जब हम सब मिलजुल के संयुक्त परिवार में रहते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन आज के दौर में संयुक्त परिवार जो है वही लगभग लगभग समाप्त हो ही रहे हैं, और यही कि भाई बहुत से परिणाम भी दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो आज कार्यक्रम में हम अपने श्रोता पंचन का एक यह विषय पर एक वार्ता सुनवा रहे हैं कि आज के दौर में संयुक्त परिवार टूटने के कारण और उसके नुकसान, कि भाई का कारण है, काहे संयुक्त परिवार जो है आज टूट रहे हैं, और वह के का नुकसान है जो हमका झेले का पड़ रहा है, जो ने हम अब भाई थोड़ा सा कोशिश करी और अपने परिवार का मिलाए जुलाए करके संयुक्त परिवार के रूप में फिर से जो है परिवार का बनाई। और या वार्ताकार ये की हैं शांभवी शुक्ला बहनी, जो उनकी यह विषय में जानकारी दे रही हैं। तो चलो सुना जाए यह वार्ता।
2: मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शांभवी शुक्ला, उपायुक्त राज्यकर, उत्तर प्रदेश सरकार, आज आप सभी के साथ अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। विषय है आज के दौर में संयुक्त परिवार टूटने के कारण और उसके परिणाम। बहनों, शायद आपने समाचार में सुना हो, अभी कुछ समय पहले फरवरी 2026 में हमारे देश के प्रतिष्ठित भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन के एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक 76 वर्षीय के नागेश्वर राव ने अपनी 63 वर्षीय बीमार पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। यहाँ कारण घृणा या असंतोष नहीं था, बल्कि भय और असुरक्षा की वह भावना थी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे मरने के बाद मेरी बीमार पत्नी कैसे रह सकेगी, कौन उसकी देखभाल करेगा। यह उल्लेखनीय है कि इस दंपति की एक बेटी है जो सुयोग्य है और अमेरिका में रहती है। कई वर्षों के लगातार अकेलेपन ने असुरक्षा का भाव इस सीमा तक प्रबल कर दिया कि इतने सुयोग्य व्यक्ति से भी ऐसा अप्रत्याशित कृत्य हो गया। यही नहीं, आजकल अनेक माध्यमों से हमें आए दिन ऐसे समाचार मिलते हैं कि पति पत्नी के मध्य कभी किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ और दोनों में से किसी एक ने आत्महत्या कर ली या अपने जीवन साथी की हत्या कर दी। क्या ये घटनाएं हमें सोचने पर विवश नहीं करती कि यदि ये लोग अकेले ना होकर एक बड़े परिवार के साथ रह रहे होते, क्या तब भी ऐसी दुर्घटनाएं संभव थीं? जहां कभी हमारे देश में बड़े संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज वे कितने दुर्लभ हो गए हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा भारत की जनगणना का जो नवीनतम आंकड़ा जारी किया गया है, उसके अनुसार आज हमारे देश में 16 से 18% परिवार ही संयुक्त रह गए हैं। लगभग 70% परिवार एकल हैं, शेष बचे हुए परिवार मिश्रित या विस्तारित हैं। जिस तीव्रता के साथ आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, उसके क्या कारण हैं, क्या परिणाम हैं, और क्या हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान भी है? बहनों, किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता। यही स्थिति संयुक्त परिवारों के टूटने के संदर्भ में भी है। एक समय था जब हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका खेती थी, खेतों के बड़े बने रहने में ही सबका लाभ था। कहने का तात्पर्य ये कि एक बड़ा परिवार जिसमें 20-30 से लेकर 100 से 150 तक सदस्य होते थे, सभी के आजीविका का स्रोत एक ही था। किंतु समय बदला, खेती के साथ साथ भारत में उद्योग धंधे और सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ। धीरे धीरे जनसंख्या का एक बड़ा भाग खेती में कम होते जा रहे लाभ को देखकर इन क्षेत्रों से जुड़ने लगा। चूंकि इन क्षेत्रों का विस्तार शहरों में ही अधिक हुआ, इसलिए शहरीकरण बढ़ा।

और संयुक्त परिवारों के बड़े हो रहे बच्चे अपने परिवार से अलग होकर शहरों में आ गए। पारिभाषिक दृष्टि से देखें तो एक परिवार वह है जिसके सदस्य रसोई और संपत्ति साझा करते हों। शहरों की ओर रुख करने वाले इस युवा वर्ग की रसोई तो अलग हुई ही, साथ ही संपत्ति भी अपने मूल परिवार से अलग होती गई। आजीविका के साथ साथ बेहतर शिक्षा के लिए भी शहरों की ओर पलायन हुआ। एक अन्य प्रमुख कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह भी है, जो संयुक्त परिवारों के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। ये इच्छा स्वयं में अनुचित भी नहीं। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर हम लगभग 100 वर्ष पूर्व के हिंदी साहित्य पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि 1918 से 1936 के वर्षों में छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्री सुमित्रा नंदन पंत और श्रीमती महादेवी वर्मा जी अपनी कृतियों के माध्यम से व्यक्ति को उसके आत्मिक विकास के लिए मिलने वाली आवश्यक स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे, जिसे उस समय का समाज देने को तैयार नहीं था। महादेवी जी का कहना था कि आज का कवि अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। धीरे धीरे ही सही, यह स्वतंत्रता मिली भी, किंतु कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, सीमा से अधिक हो जाए तो कोई भी वस्तु या स्थिति विष के समान हो जाती है। आज संयुक्त परिवारों के टूटने से जो परिणाम सामने आ रहे हैं, वे दिन प्रतिदिन विकराल होते जा रहे हैं। एक ओर परिवार के वृद्ध और बच्चे, समाज के वे सदस्य जिन्हें सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता है, वे उपेक्षित हैं। वहीं दूसरी ओर युवा वर्ग भले ही प्रथम दृष्टया अपनी आजीविका कमाने की व्यस्तता में बहुत प्रभावित होता ना दिखाई दे, गहराई से देखने पर उस पर भी इस पारिवारिक व्यवस्था के टूटने से व्यापक प्रभाव पड़ रहे हैं। किसी कवि की लिखी दो पंक्तियां बरबस ही याद आती हैं। कमाने की जुगत में आजकल कितने झमेले हैं, कमाने की जुगत में आजकल कितने झमेले हैं, सभी माँ बाप तन्हा हैं, सभी बच्चे अकेले हैं। एक और बुजुर्ग अपने अकेलेपन से परेशान हैं, तो युवा और मध्यम आयु वर्ग के सामने चुनौती है कि वे अपनी व्यस्त दिनचर्या में किस प्रकार बच्चों के लिए समय निकालें। और बच्चे, वे तो कदाचित इस एकल परिवार व्यवस्था का सबसे अधिक दुष्परिणाम झेल रहे हैं। कुछ समय पूर्व हुए एक शोध में 70 से 75 वर्ष के व्यक्तियों को उनके बच्चों के चित्र दिखाए गए और उसके बाद उनके पोते पोती, नाती नातिन के। दोनों ही स्थितियों में उनके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली तरंगों का अध्ययन किया गया। जैसी हलचल अपनी तीसरी पीढ़ी को देखकर उनके दिमाग में हुई, वैसी अपने बच्चों को देखकर नहीं हुई। आखिर यूं ही तो हमारे गांवों में नहीं कहा जाता कि मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। कारण ये कि जब किसी व्यक्ति के अपने बच्चे छोटे होते हैं तो कार्य की व्यस्तता के चलते उसका ध्यान बच्चे के क्रियाकलाप पर अधिक नहीं होता, जबकि वृद्धावस्था में जब व्यक्ति के पास बहुत समय होता है तो वो अपने सामने खेल रहे बच्चे के प्रत्येक क्रियाकलाप को बहुत ध्यान से देखता है और उससे कहीं अधिक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है। अब सोचिए कि आज के समय में ऐसे बच्चे जो अपने दादी बाबा नानी नाना से दूर हैं, वे सदैव के लिए उस स्तर के प्रेम से वंचित रह गए हैं जो हम सबको प्रायः अपने बचपन में मिला है। इस भावनात्मक रिक्तता के साथ जब ये बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो किसी भी अनुचित बाह्य संपर्क में आकर ड्रग्स जैसी गलत आदतों के आसानी से शिकार भी हो सकते हैं। इंटरनेट का बढ़ता प्रयोग और सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी संयुक्त परिवार को जलाती जा रही इस आग में घी का काम कर रहे हैं। आज सबके हाथ में मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर है और वहीं हर व्यक्ति की दुनिया बनता जा रहा है। ऐसे में सभी की अपनी अलग अलग दुनिया है। जरा याद कीजिए वह समय जब दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक प्रसारित होते थे। उन्हें देखने के लिए एक परिवार के ही नहीं, मोहल्ले के जाने कितने परिवारों के लोग एक साथ बैठा करते थे। आज इन तथाकथित सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने असली सामाजिकता तो छीन ली है और बदले में जो छद्म आभासी सामाजिकता दी है वह कितनी अर्थहीन है, यह इसी से समझा जा सकता है कि कुछ समय पूर्व एक चर्चित यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने, जिनके मिलियन फॉलोअर्स

थे। अकेलेपन से परेशान होकर अपनी लग्जरी कार को स्वयं ही क्रैश करा दिया और आत्महत्या का प्रयास किया। आज के दौर में संयुक्त परिवारों के टूटने का एक दुष्परिणाम सामाजिक सुरक्षा में आ रही कमी भी है। पहले किसी बीमारी या संकट के आने पर सारा परिवार एक ढाल की तरह खड़ा हो जाता था, किंतु अब व्यक्ति असहाय रह जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की भी जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.1% से 2.3% तक रह गई है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ पति पत्नी दोनों ही कार्यशील हैं, एक संतान का पालन पोषण ही चुनौतीपूर्ण समझा जाने लगा है। भारत के मेट्रो शहरों की बात करें तो डिंक कपल DINK अर्थात डबल इनकम नो किड्स की अवधारणा तेजी से प्रचलित होती जा रही है। व्यक्तिवाद इस सीमा तक बढ़ चुका है कि संतान के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाने में व्यक्ति अपना जीवन अपनी पसंद और अपनी सुविधा के अनुसार नहीं जी पाएगा, ऐसी सोच बलवती होती जा रही है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आज से 30-35 वर्ष बाद जब यह पीढ़ी वृद्धावस्था में प्रवेश कर रही होगी तो इसकी देखभाल के लिए परिवार के युवा सदस्य कहाँ से आएंगे, या जहाँ एक ही संतान है वह अपने माता पिता दोनों के ही अस्वस्थ होने पर कैसे उनकी देखभाल कर सकेंगे, जब उनके पास ना तो अपना कोई सगा भाई बहन होगा और ना ही चचेरे ममेरे मौसेरे या फुफेरे भाई बहन। हमारा देश भारत उत्सवों की भूमि है। हम भारतीय स्वभाव से ही उल्लास धर्मी हैं और सामाजिकता हमारे देश का प्राण तत्व है। संयुक्त परिवारों में जिस उल्लास के साथ तीज त्योहार मनाए जाते रहे हैं, जिस प्रकार परिवार के वृद्ध सदस्य अपने रीति रिवाज परंपराएं अपनी अगली पीढ़ी को सिखाते आए हैं, वह इस व्यवस्था के टूटने के साथ ही अदृश्य होता जा रहा है। इस प्रकार संयुक्त परिवारों का यह क्षरण हमारी संस्कृति को गंभीरता से प्रभावित कर रहा है। इस परिदृश्य में जो प्रश्न हमारे सम्मुख खड़ा है वह यह कि क्या हम निष्क्रिय उदासीन मूक दर्शक होकर इस समस्या को दिन प्रतिदिन विकराल होता देखेंगे, या इसका समाधान ढूंढने का भी कोई प्रयास करेंगे। आज व्यक्तिवाद और निजता की भावना को अत्यधिक महत्व दिए जाने की प्रवृत्ति, भाग दौड़ और अत्यधिक व्यस्तता वाली दिनचर्या व्यक्ति की सहन शक्ति को कम से कम कर रही है। इस वातावरण को देखकर तो यूं लगता है जैसे संयुक्त परिवारों के क्षरण की इस धारा को अब वापस नहीं मोड़ा जा सकता। अब एक आवश्यक बुराई के रूप में ये हमारे समाज में विद्यमान ही रहेगी। लेकिन यदि समस्या के कारणों की अपरिहार्य प्रकृति को देखते हुए कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं कि भले ही संयुक्त परिवार अपने पुराने रूप में वापस ना भी लौटें, फिर भी भावनात्मक स्तर पर परिवार के सदस्य ऐसी मजबूत डोर से बंधे रहें कि किसी भी आयु वर्ग का कोई भी सदस्य स्वयं को एकाकी अनुभव ना करे। हम सभी को ये समझना होगा कि आज जिस तरह हर व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होता जा रहा है, इस स्थिति में संयुक्त परिवार ही नहीं एकल परिवार भी छोटी छोटी बातों पर टूट रहे हैं। यद्यपि आर्थिक आत्मनिर्भरता स्वयं में सकारात्मक है, किंतु यह आत्मनिर्भरता जब व्यक्ति को यह विश्वास दिला देती है कि वह बिल्कुल अलग अकेला होकर भी जीवन व्यतीत कर सकता है, बात बस वहीं पर बिगड़ जाती है। हम अपने स्तर पर धन अर्जित कर सकते हैं, संसाधन जुटा सकते हैं, किंतु सामाजिक संबंधों की और भावनात्मक सहारों की आवश्यकता हमें हमेशा बनी रहेगी। सुख में साथ बैठकर हंसने के लिए कोई साथी चाहिए, दुख में कंधे पर हाथ रखने वाले भाई बहन चाहिए। हमारी किसी भी सफलता पर माता पिता के मुस्कुराते चेहरे दिखाई न दें तो सब सूना है। तीज त्योहारों विशेष अवसरों पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। बीमारी या किसी संकट के आने पर साथ खड़ा होने वाला परिवार चाहिए। इस पीढ़ी के माता पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाएं, और यह समझाना शब्दों के माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता को जो करते देखते हैं वही करते हैं। इस संदर्भ में विशेषज्ञों की राय है कि हम 777 रूल का अनुसरण करें। अब यह 777 रूल क्या है? यह नियम ये कहता है कि कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, सवेरे के समय, फिर विद्यालय या कार्यालय से घर आने के बाद,

0: रात में सोने से पहले 7-7 मिनट का समय परिवार को अवश्य दें। परिवार का कोई भी सदस्य जब कोई गलती करे तो उसे करेक्ट करने के बजाय कनेक्ट करने का प्रयास करें। तात्पर्य यह कि डांटने या उपदेश देने के बजाय यह समझने का प्रयास करें कि उससे यह गलती हुई क्यों और कहीं परिवार के अन्य सदस्य भी तो इस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं। परिवार में सभी को अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने दें। किसी भी सदस्य के मन में यह कुंठा व्याप्त न हो कि परिवार में उसकी बात सुनी नहीं जाती, समझी नहीं जाती। प्रतिदिन कुछ समय ऐसा अवश्य निकालें जब पूरा परिवार साथ में कोई कार्य करे। फिर चाहे वह शाम को बैठकर भजन कीर्तन करना हो, साथ बैठकर भोजन करना हो, कैरम या अंताक्षरी जैसे कोई खेल खेलने हो या टीवी पर कोई कार्यक्रम देखना हो। परिवार को सच्चे अर्थों में परिवार बनाए रखना है तो हमें पूरी जागरूकता से ये प्रयास करने ही होंगे। साथ ही एक सुदृढ़ और संवेदनशील समाज के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन लोगों का भी ध्यान रखना होगा जो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। जैसे कुछ समय पूर्व दिल्ली पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिल्ली पुलिस के 2 सिपाही एक वृद्ध व्यक्ति को उनके जन्मदिन पर केक देकर जन्मदिन की बधाई देते हैं। जरा सोचिए, हमारे देश की पुलिस, उसके 2 सिपाही जब वर्षों से अकेले रह रहे एक व्यक्ति को उसके जन्मदिन पर यह अनुभव कराते हैं कि यद्यपि उसका परिवार साथ नहीं है, तब भी कोई है जिसे उसका जन्मदिन याद है। ऐसे में भाव विवल होकर वह व्यक्ति रो पड़ता है और उन सिपाहियों को बेटा कहकर बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आज हमें ऐसे ही उदाहरणों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। महोपनिषद के एक सुप्रसिद्ध श्लोक को उद्धृत करते हुए मैं इस वार्ता को विराम देना चाहूंगी। अयम निजह परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात, यह मेरा है, यह पराया है, यह सोच छोटे मन वालों की होती है। उदार चरित्र विशाल हृदय वाले लोगों के लिए तो यह पूरी धरती ही परिवार है। तात्पर्य यह कि हमारी संस्कृति तो परिवार का विस्तार सारे संसार तक मानती रही है। ऐसे में इस संस्कृति के वाहक हम क्या आज अपने ही परिवारों को बचाने के लिए अपने अहम और स्वार्थपरता का त्याग नहीं कर सकेंगे?
1: अभय श्रोता पंचन सुनीन वार्ता। आज के दौर में संयुक्त परिवार टूटने के कारण और उसके नुकसान। वार्ताकार रहीं शांभवी शुक्ला जी। तो आपका यह वार्ता कैस लगी या हमका जरूर बतायो ईमेल के माध्यम से, और साथ ही यह बतायो कि आप अपने परिवार का एक डोर में बांध के रखे के लिए कौन कौन से प्रयास करत हो, कैसे आप सब लोग मिलजुल के रहे की कोशिश करत हो, यह का जरूर हमका भाई हमसे साझा कियो। और पंचो देखो, जैसन कि अभी हम सुनत रहे और हम सब भी यह महसूस करी थन कि परिवार जोन है वही हमारे सुख दुख के सहारा होते हैं, और वैसे हमका जन बल मिलत है। जब परिवार में सब जने मिल के रहा जाते तो कोनो भी समस्या के समाधान बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। सुख जोन है वही दुगना हो जाते, दुख जो उन्हें आधा हो जाते। तो जन बल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए, जन के साथ साथ हम सबका धन की भी आवश्यकता होती, और खास करके अगर हारी बीमारी में तो भाई देखो पैसा लगभग करते है। और कई बार यह देखा गया है कि पैसा के अभाव में लोग बीमारी अगर कोनो ऐसी हो गई है तो वही के पूरा इलाज भी नहीं करा पाते ना। और खास करके भाई गरीब गुरबा मनई जो है वही जो है इलाज तो करोबे नहीं करते, काहे से कि सोचते हैं कि एक तो इलाज करावे जाऊँ तो वही माँ पैसा लगी, और दूसरे की जो काम धंधा है बहुत से छुट्टी करेगा पड़ी, तो इलाज अधूरा रह जाते। और इन सब बातन का ध्यान में रख के ही कि पैसा के अभाव में कोनो मनई के इलाज न रुके, तो यह से भाई आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है जौने के उद्देश्य यह है कि पैसा आड़े ना आवे, खास करके हारी बीमारी में। तो आपको बतावा चलिए कि यह योजना के अंतर्गत जो पात्र परिवार का सूचीबद्ध अस्पताल में हर बरिस लगभग भाई 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के सुविधा प्रदान की जाती, और यह योजना में अस्पताल में भर्ती होवे से लेके जांच, दवाई, ऑपरेशन या सब कुछ के खर्चा ये में शामिल है। और पात्रता की बात करी कि भाई एमा कौन लोग जो है यह योजना के लाभ ले सकते हैं, तो एमा जो मुख्य बातें हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो वंचित और भूमिहीन परिवार हैं, शहरी इलाकन की बात करी तो वही में सूचीबद्ध जो गरीब परिवार हैं जो उनकी बीपीएल कार्ड धारक लोग हैं, पंजीकृत श्रमिक और निराश्रित लोग जो हैं, यही के अलावा 70 बरिस या अधिक आयु वाले जो बुजुर्ग हैं उन्होंने का यह योजना में शामिल किन गवा है। हाँ, तो भाई यह योजना के बारे में आपका पात्रता की जानकारी हो गई। अब जरूरी

बात है कि यही कार्ड कहाँ से बनवावे का है, कार्ड कैसे बनी, तो वही के लिए आपको बताई दे कि देखो यही कार्ड बनवावे बदे और अपनी पात्रता की जांच करे बदे कि हम यही के लिए पात्र हैं कि नहीं, या सब की जानकारी आप यही की आधिकारिक वेबसाइट जोन है PMJAY ये वेबसाइट पर यही जानकारी ले सकते हो, या फिर आपके जो नज़दीकी जन सेवा केंद्र है वहाँ से भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो और जानकारी ले सकते हो। तो देखो आप भाई खुद यही जानकारी करो और आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो उन्हें उनका यही के बारे में बताओ जो कि यह योजना के लाभ ले सकें। और चलो भाई चले चले तो अब हम चल रहे हैं एक बार आज के मौसम पर जो कि बहुत गर्म हो रहा है और गर्मी से जो है हाल बेहाल है सबको, तो एक नकटा सुनवा रहे हैं और वह में देखो गर्मी के कई वर्णन है, आप सब सुनो संजू सिंह के स्वर में या नकटा।

जो यह के साथ कार्यक्रम की बिरिया समाप्त हो रही है, तो गर्मी में आप सब अपन विशेष ध्यान रखो भाई, पानी उन्हें पियत रहो और ढांग ढूंक के रहो। और बस यह के साथ आज के कार्यक्रम से प्रतिभा त्रिपाठी का दो अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।

बहनें अभी सुन रही थीं अपना कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों जय हिंद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज गीतों का ये सफर आप तय करेंगे मेरे यानी पूनम शर्मा के संग। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर के आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है अर्पण और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है किसान रेडियो क्लब कुरसठ हरदोई से। राम खिलावन, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मणिराम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव, राम प्रसाद, देवी शंकर शुक्ला की।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म साथी के गीत के लिए, जिसे गाया है मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार व विजय पांडे जी की। तो चलिए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

साथ ही फिल्म के इसी गीत को सुनना चाहा था नरहरपुर सफीपुर जिला उन्नाव से कुलदीप तिवारी, किरण, लक्ष्मी, राहुल, मीठी, मोहिनी, सार्थक और उनके सभी परिवार वालों ने। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज की, और इन सभी ने सुनना चाहा है लव फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा ने।

लव फिल्म के इसी गीत को सुनना चाहा था ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने और इन्हीं के साथ ही बीर सिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव कुमारी भारती राव बेला सिंह बाई ने भी इसी गीत की सुनने की फरमाइश की थी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है तकदीर का तमाशा और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है गनीपुर बेटा बांगरमऊ उन्नाव उत्तर प्रदेश से प्रहलाद कुमार कुशवाहा श्रीमती सोनम कुशवाहा की।

इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम खैरावा तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता।

ने रिंग रोड नर्मदा नगर से ही इस गीत की फरमाइश आई है। सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावन वर्मा की।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दोपहर समाचार आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य

0: पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह्युल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां

0: ने गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: India has recently launched
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर

0: श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
2: ये चाय।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक, लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विजयपाल यादव से की गई भेंटवार्ता। विषय है सफलता की कहानी गन्ना उत्पादन। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी जनपद के मितौली ब्लॉक के ललहुआ गांव के प्रगतिशील किसान विजयपाल सिंह यादव भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। विजयपाल सिंह यादव भैया, आप एक सीमांत किसान हैं, आप कम जोत में अच्छी खेती कर रहे हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
2: आदरणीय डॉक्टर साहब और हमारे समस्त सुनने वाले किसान भाई बहनों को मेरा सादर नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरी पढ़ाई बीए तक हुई है और बीए के बाद

0: किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई, तब से मैं खेती में लग गया।
1: कितने दिन पुरानी बात है ये?
0: ये सर 1998 की बात है। 1998 के बाद में मैं खेती से जुड़ गया।
1: यानी 28 साल से आप लगातार खेती कर रहे हैं?
0: जी डॉक्टर साहब।
1: तो ये बताएं कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
0: खेती की जमीन डॉक्टर साहब हमारे पास 1.5 एकड़ है।
1: अच्छा, 1.5 एकड़।
0: जी।
1: तो 1.5 एकड़ में पूरे साल का क्या फसल चक्र अपनाए हैं?
0: पूरे साल में 1 एकड़ में गन्ना बोते हैं, बाकी शेष जमीन पे गेहूं धान पैदा करते हैं।
1: कुछ सब्जियां भी करते होंगे?
0: जी, 1 बीघे में लगभग सब्जी भी बो लेते हैं, जिससे हमारे खाने का खर्चा और कुछ बाजार भी बेच देते हैं।
1: यानी 1.5 एकड़ में ही आपने फसल की योजना ऐसी बनाई है कि आधा में तो मिठास की फसल है
0: जी डॉक्टर साहब,
1: और आधा में ही सब कुछ आपने किया है, अनाज वाली, दलहन और तिलहन भी कुछ करते हैं?
0: तो तिलहन करते हैं डॉक्टर साहब।
1: तिलहन करते
0: जी
1: हैं?
0: जी, तिलहन बोल लेते हैं।
1: और सौ फसल के रूप में ले लेते होंगे?
0: जी नहीं, सौ फसल में भी ले लेते हैं और सिंगल फसल भी ले लेते हैं तिलहन में।
1: तो गन्ने के साथ आप कुछ सौ फसली खेती करते हैं क्या?
0: जी, गन्ने के साथ में कभी कभी मक्का बो देते हैं।
1: अच्छा,
0: समय के हिसाब से जब मक्का बो देते हैं तो मक्का भी 50-60 किलो पैदा कर लेते हैं।
1: तो ये गर्मी वाला बसंत कालीन में ऐसा करते हैं?
0: जी, बसंत कालीन में।
1: तो गन्ने की कौन कौन सी वैरायटी आप लगाते हैं?
0: गन्ने की प्रजाति कोलक 94184 है और कोलक 14201 है।
1: तो ये अच्छी प्रजातियां हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की, इनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं आप?
0: इनकी उपज जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और ये जो कोलक 94184 है ये गन्ना सबसे अच्छा है, इसमें नुकसान कम होता है।
1: और ये जो 14201 है ये तो सबसे नई प्रजाति?
0: ये नई प्रजाति है, ये इसमें भी नुकसान कम होता है
1: और
0: रोग दो कम लगते हैं। और ये दोनों गन्ना कड़े हैं, इनके जो जंगली जानवर सियार वगैरह हैं ये नहीं खाते हैं। बहुत अच्छी गन्ने की प्रजातियां हैं ये।
1: तो आप मिठास की फसल पैदा करते हैं शरतकालीन या बसंतकालीन?
0: बसंतकालीन बोते हैं सर ज्यादा।
1: अच्छा, तो इस साल आपने कोई नया तरीका अपनाया? कैसे गन्ने की बुआई करते हैं?
0: गन्ने की बुआई उसी पुराने बीज से करते हैं, लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखते हैं।
1: अच्छा
0: जी, और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट के बीच में लाही बो देते हैं।
1: तो आप जब शरतकालीन बुआई करते होंगे तब ना?
0: तब शरतकालीन में लाही बो देते हैं, इस समय कुछ नहीं बोते हैं डॉक्टर साहब।
1: अच्छा, तो मूंग और उड़द तो पैदा कर सकते हैं?
0: जी, मूंग 1 बीघे में लगाए हैं, मूंग फसल लगाए हैं 1 बीघे में
1: अलग से।
0: जी,
1: तो ये बताएं कि बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और फसल की कटाई तक मिठास की फसल में कौन कौन सी बारीकी ध्यान में रखते हैं?
0: इसमें खेत की पहले तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं, उसकी जुताई करके गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें मिलाते हैं, फिर गन्ना की बुआई करते हैं।
1: तो क्या ट्रेंच वाला तरीका अपनाते हैं?
0: नहीं डॉक्टर साहब, वो ट्रेंच वाला नहीं बोते हैं, लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट वाला बोते हैं।
1: तो क्या ट्रैक्टर की मदद से या अपने कुदाल से?
0: नहीं, ट्रैक्टर की मदद से गन्ना बोते हैं डॉक्टर साहब।
1: अच्छा, ये बताएं कि फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा एकड़ पीछे कितना देते हैं?
0: बुआई के समय 1 एकड़ में 1 बोरी DAP हम डाल देते हैं।
1: और कुछ यूरिया बाद में किस्तों में देते होंगे?
0: यूरिया सर बाद में जब सिंचाई करते हैं तब थोड़ी थोड़ी करके हम डालते रहते हैं।
1: तो ये बताएं कि इस समय आपकी फसल गन्ने की खेत में है, कौन सा काम चल रहा है?
0: इस समय उसकी गुड़ाई चल रही है डॉक्टर साहब, घास वगैरह जो थोड़ी बहुत है, वैसे घास है ही नहीं,
1: हाँ
0: थोड़ी बहुत है, उसको पहले जुतवा करके बाद में कुदाल से निकलवा देते हैं।
1: तो क्या ट्रैक्टर से जुताई करवाते हैं?
0: हाँ, ट्रैक्टर से जुताई करवा देते हैं, बैलों से भी करवा देते हैं।
1: क्या बैल आपके पास हैं?
0: नहीं, हमारे पास नहीं डॉक्टर साहब है, लेकिन मिल जाते हैं।
1: अच्छा, तो खरपतवारों से मुक्त है आपकी मिठास की फसल?
0: जी, खरपतवार बिल्कुल नहीं है, एक आध है, उनको लेवरों से कुदाल के द्वारा निकलवा देते हैं।
1: और आगे कौन कौन सा काम आप गन्ने की फसल में करेंगे?
0: आगे जब गन्ने की बढ़वार मतलब से हो जाएगी बारिश के पहले, तो उसकी बंधवाई करवा देते हैं।
1: बारिश की शुरुआत
0: में बंधवाई करवा, इससे गन्ना गिरता नहीं है हमारा है।
1: अच्छा, आपने कहा कि अपने काम भर को धान गेहूं भी पैदा करते हैं, सब्जियां भी अपने परिवार के लिए पैदा करते हैं, पशुपालन भी किए हैं?
0: जी डॉक्टर साहब, 2 भैंसे हैं हमारे पास।
1: अच्छा।

0: और अभी दूध नहीं दे रही हैं, दूध कुछ दिनों में देने लगेंगी।
1: तो क्या दूध जब देती हैं तो उनको अपने अलावा क्या बेचती भी हैं क्या?
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, एक टाइम का अपने खर्च में ले लेते हैं और एक टाइम का हम बेच देते हैं, जिससे हमारा परिवार का खर्चा और भैंसों के दाने का खर्चा निकल आता है।
1: और कुछ खेती में भी मदद हो
0: और
1: जाती?
0: खेती में गोबर मिल जाता है, जिससे हमें डीएपी यूरिया कम लेना पड़ता है।
1: तो चूंकि आप के पास 1.5 एकड़ जमीन है और 1.5 एकड़ में ही आपने मिठास और अपने काम की हर चीज पैदा कर रखी है, पशुपालन भी किया है, कुल मिला जुला करके आप खुशहाल
0: जी
1: हैं?
0: डॉक्टर साहब, हम खुशहाल हैं, इतनी खेती में हमारे परिवार का खर्चा चल रहा है, आराम से हम लोग खुश हैं।
1: 28 साल पहले आपने खेती की शुरुआत की, आज जिस मुकाम पर हैं, तो क्या नई तकनीकी ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त होता है?
0: जी 28 साल पहले जब खेती करते थे तब हमें कुछ नहीं पता था, ऐसे बो आते थे, उसके बाद में ऐसे काट लेते थे। फिर उसके बाद में हमारा जुड़ाव जो रेडियो से हो गया, रेडियो के द्वारा हमें बहुत ही ज्ञान मिलता है, हर रोज़ हम कार्यक्रम सुनते हैं, नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, रेडियो के द्वारा ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं खेती के।
1: तो जो नई तकनीक आपको प्रयोगशाला के मिल रही है रेडियो के माध्यम से, उसको अपने खेती में आजमाते
0: जी
1: हैं,
0: आजमाते हैं,
1: पूरे साल में खेती से कितनी आमदनी हो जाती है आपकी?
0: पूरे साल खेती सब लगा करके, मिठास की फसल गन्ना से और गेहूं धान, लगभग हम 1.5 लाख तक कमा लेते हैं,
1: और उससे पूरा परिवार का खर्च चल जाता है।
0: पूरे परिवार का खर्चा चलता है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कम जोत के बावजूद भी आप खेती करके खुशहाल हैं?
0: जी हम यही कहना चाहते हैं सभी से कि बाहर की जो नौकरी इनको छोड़ करके अपनी खेती करिए। खेती में ये फायदा है कि घर के घर हैं, अपना परिवार देख रहे हैं।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है डॉक्टर साहब 99194745 45, 99197445, 99194745।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
0: चलते चलते मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी किसी को जानकारी लेना है तो रेडियो के माध्यम से लें या किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर वो मिलाएं, और सभी खुशहाल रहें, ये मैं कहना चाहता हूँ।
1: और अपने जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र
0: नमस्कार।
1: के संपर्क में नियमित रूप से जरूर रहें, क्योंकि वहाँ हर विषय के वैज्ञानिक हैं जो आपकी हर तरह की मदद करेंगे। विजयपाल सिंह यादव भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि बीए की पढ़ाई के बाद आप 28 साल पहले खेती से जुड़े, 1.5 एकड़ आपके पास कुल खेती की ज़मीन है, लेकिन उसी में आप 1 एकड़ में मिठास की फसल और आधा एकड़ में धान गेहूं सब्जियां और पशुपालन करके आप खुशहाल हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सफलता की कहानी गन्ना उत्पादन, विजयपाल यादव से की गई भेंटवार्ता। अभी आप सुन रहे थे विज्ञान और किसान कार्यक्रम में, भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। अंगद सिंह ने थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी से सूचित किया है कि अनन्या सिंह, जिनकी उम्र 16 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा हल्का लंबा, दुबला पतला शरीर है, ये दिनांक 17 जनवरी 2019 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने ब्राउन टी शर्ट, नारंगी स्वेटर, नीला लोअर पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8840 8

0: 1230। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8840842300। देशराज ने हमें ग्राम बहेरिया जनपद अतरौली जनपद हरदोई से सूचित किया है कि पूरन मल, जिनकी उम्र 48 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा, इकहरा शरीर है, ये दिनांक 18 जनवरी 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने सफ़ेद धारीदार टी शर्ट, काला लोअर पहन रखा था। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना आप थाना अतरौली जनपद हरदोई को दे सकते हैं। राम कुमार ने थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी से सूचित किया है कि मंटू उर्फ रमन, जिनकी उम्र 13 वर्ष, कद 3 फीट 6 इंच, रंग गोरा, ये दिनांक 29 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना आप थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी को दे सकते हैं। महेंद्र कुमार ने हमें ग्राम रज्जाक खेड़ा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई से सूचित किया है कि राम दुलारे, जिनकी उम्र 82 वर्ष, कद 6 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है। घटना के समय इन्होंने सूती धोती और सफ़ेद कमीज पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं, 9815511914। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 9815511914। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन माहे बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोकमाधुरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कंचन श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सोहर।

लोकमांत्री कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं कंचन श्रीवास्तव की गाय अवधि लोकगीत। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं कहरवा।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कंचन श्रीवास्तव के गाए अवधिलोक गीत। संगतकर्ता थे ढोलक पर दिलीप त्रिवेदी, हारमोनियम पर ललित चंद्र भट्ट, बांसुरी पर मुकेश कुमार, साइड रिदम पर गौरव गुप्ता। और इसी के साथ ही लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोकमादरी अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय होने को है शाम के 5 और हम हाजिर हैं सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे

0: मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी का उत्पादन हो रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये फैसला लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 5:05 और ये वक्त हम आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग यानी शाम 5:10 से। शाम 5:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नई उड़ान। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे ओबी आधारित कार्यक्रम, विषय है ज्वेलरी डिजाइनिंग, बिजनेस भी कला भी। लोकायतन कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। आज के कार्यक्रम में सुनिएगा जल जीवन मिशन, ग्रामीण से गांवों में बदलाव, वार्ताकार राम मनोहर त्रिपाठी। खेती किसानी के कार्यक्रम में शाम 6:50 से सुनिएगा जायद सब्जियों में सामयिक प्रबंधन, इस विषय पर कौशल कुमार नीरज से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता।

शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा खेल जगत। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे इतिहास के पन्नों से। 1983 विश्व कप का सफर, आलेख शमशुल अरकीन का, स्वर आसिफ इकबाल के। हिंदी कार्यक्रम होगा रात 8 बजे से। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा भारतीय ज्ञान परंपरा, वर्तमान परिपेक्ष में इसकी उपादेयता। वार्ताकार प्रोफेसर ध्रुव चंद त्रिपाठी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिएगा ऋतु भार्गव का राग चारू केसी में ख्याल गायन। और सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात 8:10 पर आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह की गायी कसलें।

श्रोताओं, आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि चर्चा। कल के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण, इस विषय पर जानकारी आलेख एवं वाचन डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी के। गांधी चर्चा आप सुनेंगे कल प्रातः 6:10 से। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण होगा प्रातः 6:45 पर। प्रातः 7 कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य चर्चा। कल के कार्यक्रम में सुनिएगा मोगरा के औषधीय गुण, इस विषय पर जानकारी आलेख एवं वाचन नीना सोनकर के। विविधा कार्यक्रम में कल सवेरे 7:10 पर आप सुनेंगे विश्व जैविक विविधता दिवस, इस पर आधारित कार्यक्रम। और

की हलचल आप सुनते हैं सुबह 9:15 से। उर्दू कार्यक्रम के तहत सवेरे 9:30 से समाप्त फरमाइएगा दुनिया की अजब गजब खबरें। अपराजिता कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 1:15 पर। कल के कार्यक्रम में आप ओबी आधारित कार्यक्रम सुनेंगे, विषय है 90 बरस की आकाशवाणी कितनी नई कितनी पुरानी। विज्ञान और किसान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30 पर। कल के कार्यक्रम में सुनिएगा मेंथा की फसल का आसवन और विपणन। डॉक्टर रीमा देवी से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे। युवा तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 5:10 पर। और नई उड़ान कार्यक्रम में कल शाम 5:45 पर सुनिएगा गंभीर रोगियों के लिए आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक। इस विषय पर डॉक्टर अर्चना सिन्हा, वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ SGPGI से नीना सोनकर की भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे। लोकायतन कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर सुनिएगा जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण दायित्व। इस विषय पर वार्ताकार होंगे डॉक्टर नागेश्वर तुबे। खेती किसानी के कार्यक्रम में कल शाम 6:50 पर आप सुनेंगे कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी। कल शाम 7:31 पर आप सुनिएगा अंग्रेजी कार्यक्रम। कल के कार्यक्रम में इंटरव्यू का विषय होगा एक्सेप्ट योर सेल्फ, इंटरैक्शन, सेल्फ राइटिंग, बिलीव्स एंड अदर एस्पेक्ट्स। डॉक्टर शिरले जैन, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, IT कॉलेज लखनऊ से डॉक्टर शिवा राकेश के भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे। हिंदी कार्यक्रम में कल रात 8 सुनिएगा भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति की वर्तमान में उपदेयता। इस विषय पर आधारित कार्यक्रम। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे सुषमा वाजपेयी का राग ललित में ख्याल गायन। और रात 10:30 पर सुनिएगा राग गोरख कल्याण में ख्याल गायन। और श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात 8:10 पर आप सुनेंगे साबरी ब्रदर्स के गाए नात एवं कवालियां। इसके अलावा समय समय पर आप फिल्मी गीतों के कार्यक्रमों का आनंद भी लेते रहेंगे। श्रोताओं, ये तो थी आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार दोस्तों, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम युवा तरंग में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विष्णुप्रिया और आज के इस खूबसूरत से सफर में हम साथ बिताने वाले हैं कुछ यादगार पल, जहां होगी दिल से दिल की बातें, नए विचारों की महक और मनोरंजन का शानदार रंग। दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में अक्सर हम खुद के लिए मुस्कुराने के लिए पल ढूंढते रह जाते हैं। ऐसे में संगीत, बातें और कुछ अच्छे विचार हमारे दिन को और भी बेहतर बना देते हैं। बस इसी कोशिश के साथ हम आपके बीच आए हैं ताकि आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला सकें और आपके दिन को और भी खास बना सकें। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर पल में होगा उत्साह, हर बात में होगा अपनापन और हर आवाज में होगी दिल की सच्चाई। बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और आगे आने वाला है बहुत सारा मनोरंजन। तो आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, आज की बात में हम चर्चा करेंगे करियर गाइडेंस पर। आज के समय में हर विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर कोई एक अच्छा करियर बनाकर अपने परिवार और समाज में सम्मान भी पाना चाहता है। लेकिन सही जानकारी और मार्गदर्शन के बिना कई बार विद्यार्थी ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। इसी कारण करियर गाइडेंस का महत्व बहुत बढ़ गया है। करियर गाइडेंस का अर्थ होता है कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि

योग्यता और क्षमता के अनुसार सही करियर चुनने में सहायता देना। आज के समय में पढ़ाई और नौकरी के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। पहले लोग केवल डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या फिर सरकारी नौकरी को ही सबसे अच्छा करियर मानते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। आज कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, पत्रकारिता, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, खेल, संगीत, एनिमेशन, बिजनेस और सोशल मीडिया जैसे कई नए क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इतने सारे विकल्प होने के कारण विद्यार्थी अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा क्षेत्र उनके लिए सही रहेगा। ऐसे में सही करियर गाइडेंस उन्हें सही दिशा दिखाने में मदद करता है। करियर गाइडेंस विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता पहचानने में भी मदद करता है। हर बच्चे की अपनी अलग सोच होती है, अपनी अलग पसंद भी होती है। किसी को विज्ञान पसंद होता है तो किसी को कला, किसी को खेल में रुचि होती है तो किसी को कंप्यूटर और तकनीक में। यदि विद्यार्थी अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार करियर चुनते हैं तो वो अपने काम को पूरी मेहनत और खुशी के साथ करते हैं। इससे उन्हें सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। कई बार विद्यार्थी दूसरों को देखकर या फिर परिवार के दबाव में आकर करियर को चुन लेते हैं। बाद में उन्हें उस काम में रुचि नहीं रहती और वो तनाव भी महसूस करने लगते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर ही करियर का चुनाव करें। सही करियर चुनने से व्यक्ति का भविष्य बेहतर बनता है और उसका कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। करियर गाइडेंस केवल नौकरी की जानकारी देना ही नहीं है, बल्कि ये विद्यार्थियों को जीवन में सही लक्ष्य तय करना भी सिखाता है। जब विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की सही जानकारी होती है तो वो अधिक मेहनत और लगन से पढ़ाई करता है। इससे उसमें अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित होती है। शिक्षक, माता पिता और करियर काउंसलर विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें बच्चों को समझना चाहिए और उनकी रुचि के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के कारण करियर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स, वीडियो और करियर काउंसलिंग की मदद से नए क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं। इससे उन्हें अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि करियर गाइडेंस विद्यार्थियों के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही समय पर मिला सही मार्गदर्शन व्यक्ति के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने करियर का चुनाव सोच समझकर और सही सलाह लेकर करना चाहिए। दोस्तों, आगे और भी विषय पर चर्चा करेंगे, उससे पहले सुन लेते हैं एक गीत।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: दोस्तों आइए बात करते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर।

भारत में प्रत्येक वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 1991 में आतंकवादी हमले में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को आतंकवाद के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा देश में शांति, एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना है। दोस्तों, आतंकवाद आज विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आतंकवादी गतिविधियां केवल किसी व्यक्ति या समूह को ही नहीं नुकसान पहुंचाती, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की शांति एवं सुरक्षा को प्रभावित भी करती हैं। आतंकवाद के कारण निर्दोष लोगों की जान जाती है, आर्थिक हानि होती है और लोगों के मन में भय का वातावरण भी बन जाता है। इसलिए इसके विरुद्ध जागरूकता और एकजुटता अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न संस्थाओं में शपथ ग्रहण कार्यक्रम, भाषण, निबंध प्रतियोगिता तथा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में माध्यम से युवाओं को ये संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती, हमें सदैव शांति, प्रेम और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही रहना होगा। आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से भी गलत विचारधारणाएं फैलाने का प्रयास भी किया जाता है। इसीलिए युवाओं को सजग रहकर सही जानकारी अपनानी चाहिए और किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काव में नहीं आना चाहिए। देश की सुरक्षा और एकता बनाए रखने में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हमें ये प्रेरणा देता है कि हम आतंकवाद और हिंसा का विरोध करें तथा एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, आगे और विषय पर चर्चा करेंगे, उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों आइए अब एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो हम सब भारतवासियों को बहुत पसंद हो, चाहे सुबह हो, शाम या फिर दोपहर, हमको तो वो चाहिए ही चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चाय की। तो दोस्तों आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। हर वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य चाय के महत्व को बताना, चाय उत्पादन से जुड़े किसानों और मजदूरों के योगदान का सम्मान करना तथा लोगों को चाय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूक करना है। चाय दुनिया के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले पेयों में से एक है। लगभग हर देश में लोग अलग अलग तरीकों से चाय पीना पसंद करते हैं। भारत में तो चाय लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडिया विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में से एक है दोस्तों। असम, दार्जिलिंग, कांगड़ा और नीलगिरी जैसे क्षेत्रों की चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारतीय चाय अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। हमारे देश में सुबह की शुरुआत अक्सर एक कप चाय से होती है। घर में मेहमान आए हों, दोस्तों से मुलाकात करनी हो या परिवार के साथ बातचीत, चाय हर अवसर को खास बना देती है। यही कारण है कि चाय केवल एक पेय नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं और संस्कृति से जुड़ी हुई है। चाय के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, लेमन टी और मसाला चाय। अलग अलग लोगों की पसंद भी अलग अलग होती है। कुछ लोग दूध वाली चाय पसंद करते हैं तो कुछ बिना दूध की चाय पीना पसंद करते हैं। आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने के कारण ग्रीन टी और हर्बल टी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। चाय में कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सीमित मात्रा में चाय पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। ये थकान कम करने में, मन को ताजगी देने में और तनाव को कम करने में सहायता करती है। कई लोग काम के दौरान ऊर्जा बनाए रखने के लिए एक कप चाय पीना जरूर पसंद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हमें उन लाखों किसानों और मजदूरों की मेहनत की याद दिलाता है जो चाय बागानों में कठिन परिश्रम करते हैं। उनके प्रयासों से ही हमें अच्छी गुणवत्ता वाली चाय मिल पाती है दोस्तों। इसीलिए उनके अधिकारों, उचित मजदूरी और बेहद जीवन स्तर पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इस दिवस के माध्यम से लोगों को ये संदेश भी दिया जाता है कि चाय उद्योग से जुड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों अंत में ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस केवल चाय पीने का उत्सव नहीं है बल्कि ये उन लोगों के सम्मान का दिन भी है जो चाय उत्पादन और उसके व्यापार से जुड़े हुए हैं। ये दिवस हमें चाय के महत्व को समझने, किसानों के योगदान का सम्मान करने और चाय की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों, आज तो हमने आपसे बहुत बातें की और बहुत सारे विषयों पर चर्चा भी करी है और आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास भी पूरा किया है। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी विष्णुप्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 5:45 और इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम नई उड़ान।

नई उड़ान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर हम आपसे ये सवाल पूछें तो शायद आप सही जवाब जानते हों, क्योंकि ये बात सच है कि जो विविधता होती है एकता की, वही सबसे बड़ी पहचान भी होती है और यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी है। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और जीवन शैली मिलकर इस दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं और इसी विविधता को समझने, अपनाने और सम्मान देने के लिए हर साल संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है दोस्तों कि अगर हम एक दूसरे की संस्कृति को जानने और समझने की कोशिश करें तो समाज में दूरियां कम हो सकती हैं और आपसी विश्वास बढ़ सकता है। संवाद केवल बात करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये समझने और जोड़ने की एक ताकत भी है। जब अलग अलग सोच रखने वाले लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं, तो नए विचार जन्म लेते हैं और विकास की राह आसान हो जाती है। और ये बात हम लोग अपने आसपास के लोगों के साथ भी अपने आप को जोड़ करके देख सकते हैं। चाहे एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जब जाता है, या एक शहर का दूसरे शहर में जाता है, या एक देश का दूसरे देश में जाता है, तो हम वहाँ की जो परंपराएँ हैं, जो संस्कृति है, उसको समझ पाते हैं। किसमें क्या खामियां हैं ये तो जानते ही हैं, लेकिन किसमें क्या खूबियां हैं ये भी जानते हैं और उस आधार पर हम अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं और फिर हम एक बेहतर जीवन जी पाते हैं और अपने समाज को एक बेहतर दिशा भी दे पाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आज के दिन की अगर हम खासियत की बात कर रहे हैं तो आज एक और दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, है ना दोस्तों। हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हमें ये याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि हिंसा और आतंकवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आतंकवाद केवल जाने ही नहीं लेता, बल्कि ये समाज की शांति

विश्वास और एकता को भी तोड़ देता है दोस्तों। जब समाज में संवाद की जगह नफरत और गलतफहमियां ले लेती हैं, तब अस्थिरता पैदा होती है और उसका परिणाम अक्सर हिंसा के रूप में सामने आता रहता है। और ये दिन हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित समाज कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि किसी भी विचारधारा या समस्या का समाधान केवल बातचीत और समझ से ही संभव है। और अगर हम इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो भी आपके संबंध हैं, जो भी आपके नाते रिश्तेदार हैं, जो भी आपके पड़ोसी हैं, उनसे आपके बेहतर संबंध ही आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमेशा शांति, भाईचारे और मानवता के रास्ते पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें आपके साथ हमने साझा की और एक और बहुत ही खूबसूरत सी बात है जिसके चाहने वाले या जिसको पसंद करने वाले मुझे लगता है कि 99% लोग होते हैं, और आज उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। दोस्तों, चाय सिर्फ एक पेय नहीं होता है बल्कि ये भारतीय जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। जब भी आप सुबह उठते हैं या शाम को ऑफिस से थक करके लौट करके जब आप घर जाते हैं तो फटाफट से आपको एक कड़क चाय मिल जाए अगर, तो फिर लगता है कि चलो सारी थकान उतर गई। और सुबह की शुरुआत अगर आप चाय के साथ करते हैं तो लगता है कि बहुत ही एनर्जेटिक शुरुआत आपकी हुई है। तो चाय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल इस वक्त हो चुका है, और चाहे हम किसी टपरी पर बैठ करके चाय पिएं या घर पर बनवा करके चाय पिएं या ऑफिस में पिएं, मज़ा उसका उतना ही आता है। और हाँ, यादें हर जगह के हिसाब से बदलती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं, और जब आप चाय पर चर्चा करते हैं तो बहुत सारी बातें भी निकल करके सामने आती हैं, चाहे वो व्यक्तिगत अपनी लाइफ से जुड़े हुआ हो या फिर समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। वैसे जब चाय की बात चली है तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आइए आपको सुनवा देते हैं। और अगर आप का भी कुछ इसी तरीके से इस समय जो माहौल चल रहा है तो आप इस गाने को गुनगुना भी सकते हैं। फिलहाल सुनिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत और लौट करके आते हैं तो कुछ और आगे की बातचीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नई उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, और आज आपके साथ मैं हूं अभिषेक शर्मा। और अब बारी है आज के विशेष श्रृंखला की, जो कि है हुनर। और आज हम बात करेंगे ज्वेलरी डिजाइनिंग बिजनेस भी कला भी, इसी विषय पर बातचीत होगी। हमारे सहयोगी आनंद मिश्रा जी ने लोगों से बातचीत की है और उनकी बातचीत, उनके अनुभवों को आप तक

भारत में आभूषणों की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज के आधुनिक दौर तक ज्वेलरी डिजाइनिंग हमारी संस्कृति और शिल्प कला का अहम हिस्सा रही है। आज ये क्षेत्र केवल परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, क्रिएटिविटी और व्यापार के नए अवसरों का मजबूत माध्यम भी बन चुका है। और यही वजह है कि ज्वेलरी डिजाइनिंग आज युवाओं के लिए करियर और उद्यमिता का सुनहरा अवसर बन रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप सुन रहे हैं नई उड़ान का ओबी सेगमेंट, जिस पर आज हम बात करेंगे ज्वेलरी डिजाइनिंग कला और बिजनेस दोनों पर।

0: भारत में आभूषणों की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज के आधुनिक दौर तक ज्वेलरी डिजाइनिंग हमारी संस्कृति और शिल्प कला का अहम हिस्सा रही है। आज ये क्षेत्र केवल परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, क्रिएटिविटी और व्यापार के नए अवसरों का मजबूत माध्यम भी बन चुका है। और यही वजह है कि ज्वेलरी डिजाइनिंग आज युवाओं के लिए करियर और उद्यमिता का सुनहरा अवसर बन रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप सुन रहे हैं नई उड़ान का ओबी सेगमेंट, जिस पर आज हम बात करेंगे ज्वेलरी डिजाइनिंग कला और बिजनेस दोनों पर।
1: ज्वेलरी स्पेशली इन इंडिया में सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं है, मतलब सिर्फ वो नहीं है कि आप किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं। इंडिया के अंदर ज्वेलरी हर जेंडर, कास्ट, रिलीजन, उम्र के लोग पहनते हैं। दैट्स व्हाई ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है विच इज कॉल्ड अ जेम मार्केट, जो हमेशा चलेगा।
2: ये कोयम्बटूर से ज्वेलरी बन के आती है, एमरल्ड ज्वेलरी। सबसे पहले इसको जो है 2001 में यहाँ पे लखनऊ के अंदर लेके आया गया था।
3: कारीगर उनकी तो उन्हीं की सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, उन्हीं के जो आर्ट्स होती हैं, उन्हीं की जो कला होती है, उसी के थ्रू हम लोग कस्टमर को अच्छी ज्वेलरी पहुँचाते हैं।
0: साथियों, जब हम आभूषणों की बात करते हैं तो हमारे मन में सुंदरता और एक परंपरा की छवि उभरती है, लेकिन इसके पीछे छिपी होती है कल्पना, एक क्रिएटिविटी, एक मेहनत और एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल। आज ज्वेलरी डिजाइनिंग युवाओं के लिए एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां कला के साथ साथ रोजगार और आत्मनिर्भरता के भी अवसर मौजूद हैं। कैसे ये सेक्टर काम कर रहा है, कैसे इसमें एजुकेशन लोगों को मिल रही है और व्यवसाय के नज़रिए से लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों से जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, ज्वेलर्स के रूप में, जिनसे हम अक्सर रूबरू होते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ हैं निखिल जी, जो कि ज्वेलर्स हैं, और मार्केट में किस तरीके की डिमांड है, किस तरीके की चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उन सब पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो निखिल जी, इस वक्त कस्टमर लगातार आपसे संपर्क में रहते हैं, हर दिन कुछ न कुछ नया मार्केट में होता है, तो क्या इस समय मार्केट में डिमांडेड है, क्या लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, खासकर जब हम ज्वेलरी डिजाइनिंग की बात करते हैं तो डिज़ाइन में लोग क्या ज़्यादा पसंद कर रहे हैं?
2: सबसे ज़्यादा डिमांड में तो एमरल्ड ज्वेलरी और टर्किश ज्वेलरी है, क्योंकि ये वज़न कम फैलावट ज़्यादा वाली ज्वेलरी है आजकल जो मोस्ट डिमांडिंग है, क्योंकि गोल्ड रेट आजकल इतना बढ़े हुए हैं, उसको देखते हुए लोगों का पहला कंसर्न ये होता है ना भैया कि जो है सबसे पहले मुझे वज़न कम होना चाहिए, फैलावट ज़्यादा होना चाहिए। चूँकि ये कोयम्बटूर से ज्वेलरी बन के आती है, एमरल्ड ज्वेलरी, सबसे पहले इसको जो है 2001 में यहाँ पे लखनऊ के अंदर लेके आया गया था। ये बहुत ही यूनिक कारीगरों के द्वारा बनाई जाती है, इसकी एक फैक्ट्री है, ये अपना डिज़ाइन कभी भी किसी को रीडिज़ाइन नहीं करने देती। सबसे बड़ी खासियत तो इसी ये है। एक एमरल्ड ज्वेलरी हो गई, एक टर्किश ज्वेलरी। टर्किश ज्वेलरी ऐसी है जो एक बाहर से बन के, विदेशों से बन के आती है, मशीनों द्वारा बनती है, क्योंकि इसका वज़न कम फैलावट ज़्यादा वाला सीन होता है।
0: बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस देखते हैं और उसमें अलग अलग डिज़ाइन देखते हैं, उसके बाद वो डिज़ाइन देख के उनको वो आते हैं शॉप पे, दुकान पे, कि हमको ऐसा वाला चाहिए। तो वो डिमांड पूरी करने के लिए कैसे आप कस्टमर को एग्री करते हैं?
2: वो डिमांड पूरी करने के लिए हम लोगों को नॉर्मली कुछ नहीं, जो कस्टमर का डिज़ाइन होता है वो अपना वो दिखाएं, सेम हूबहू नहीं, लेकिन हाँ 99.9% हम लोग कॉपी करके देते हैं। चूंकि ज्वेलरी डिजाइनिंग सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि ये एक कला भी है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन करते हैं उनके अंदर एक हुनर होता है।
0: मेरे साथ में पवन गुप्ता हैं, जो कि ज्वेलर्स हैं, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से डिज़ाइन लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे मैन्युफैक्चरिंग पर वही सबसे ज़्यादा बनेगा और एजुकेशन में उसका ही सीधा असर पड़ेगा।
3: यहाँ पे जो कस्टमर की डिमांड होती है गोल्ड ज्वेलरी में, तो यहाँ पे एडी डायमंड का भी काफ़ी अभी डिमांड चल रहा है, इसके अलावा एम्बोस कटिंग और

0: मेरठ की डिज़ाइनें आती हैं यहाँ पे, जो कस्टमर की डिमांड रहती है।
1: हम लोग जब बातचीत करते हैं तो उस बातचीत में डिजाइनिंग पर बात होती है, हम ज्वेलरी पे बातचीत करते हैं, जहाँ से परचेज कर रहे हैं उसकी बातचीत करते हैं, लेकिन उन लोगों की बातचीत बहुत कम होती है जो लोग इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं, कारीगरी कर रहे हैं। कई कई महीनों तक किसी किसी डिजाइन पर भी कारीगरी होती होगी, उस पर भी बातचीत होती है। तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उन लोगों की कारीगरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
0: कारीगर उनकी तो उन्हीं की सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, उन्हीं के जो आर्ट्स होती हैं, उन्हीं की जो कला होती है, उसी के थ्रू हम लोग कस्टमर को अच्छी ज्वेलरी पहुंचाते हैं। तो उनका तो सबसे बड़ा ही योगदान होता है हमारे व्यवसाय में। कस्टमर के जो भी ऑर्डर्स रहते हैं उसको हम लोग कारीगर के पास पहुँचाते हैं, और उनकी मेहनत से ही वैसी ज्वेलरी हम लोग कस्टमर को पहुँचाते हैं वापस।
1: आने वाले समय में क्या और लग रहा है कि ये डिज़ाइन ज़्यादा पॉपुलर रहेगा, और उसको लेकर आप पहले से ही एक कदम आगे हैं, क्योंकि कंपटीशन का भी दौर है तो उसको भी बीट करना है?
0: कंपटीशन का तो काफ़ी ज़्यादा अभी जोर है, और साथ ही रेट भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उस वजह से अभी कस्टमर की जो डिमांड है वो लाइट वेट ज्वेलरी में ज़्यादा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कस्टमर को लाइट वेट ज्वेलरी में ला के उन्हें लाइट वेट ज्वेलरी उन्हें पहुँचाएँ, उन्हें दें, और इसके अलावा फिर जो भी उनकी डिमांड होती है, जिस वेट में उन्हें चाहिए होता है, उस वेट में हम लोग कारीगर से बनवा के उनसे बात करके अपने शॉप पे लाने की पूरी कोशिश करते हैं, और कस्टमर को हम लोग वो पहुंचाते हैं।
1: ये तो बात ज्वेलर्स की हो गई, लेकिन इसकी पढ़ाई कैसे होती है, छात्र क्या पढ़ाई करके इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं? चूंकि ये कला भी है, क्रिएटिविटी इसमें होनी चाहिए, और तभी व्यवसाय बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अर्पणा रस्तोगी हैं, जो कि केंद्र समन्वयक एवं सहायक प्रोफेसर हैं, फैशन संप्रेषण विभाग, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, भुवनेश्वर। मैम, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जो लोग, जो छात्र इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, तो वो किस तरीके का कोर्स करेंगे कि उनको इस इंडस्ट्री में सहूलियत होगी और वो आगे ग्रोथ करेंगे आपके नज़रिए से?
2: ज्वेलरी डिज़ाइन लाइफ एंड एसेसरीज का, लाइफ स्टाइल और एसेसरीज का ही एक पार्ट है, जो कि डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट से बनता है। तो सो ये आता है कैटेगरी के अंदर, जिसे कहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग। आज के इस टाइम पे जहाँ पे आपको पता ही है गोल्ड एंड सिल्वर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और यहीं पर पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग की, जो कि टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो कभी मिनिमल डिज़ाइनिंग होती है, कभी टेम्पल डिज़ाइंस होती हैं, और ज्वेलरी स्पेशली इन इंडिया में सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं है, मतलब सिर्फ वो नहीं है कि आप किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं। इंडिया के अंदर ज्वेलरी हर जेंडर, कास्ट, रिलीजन, उम्र के लोग पहनते हैं। दैट्स व्हाई ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है विच इज कॉल्ड अ जेम मार्केट, जो हमेशा चलेगा। इसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन के अंदर स्टाइलिंग में, यानी आप जब तैयार होते हैं, उसमें ज्वेलरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो एज पर आई बिलीव, ज्वेलरी डिजाइनिंग इज वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि आज के डेट में ज्वेलरी डिजाइनिंग में सिर्फ वही बच्चे नहीं हैं जो कि गोल्ड और सिल्वर के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि अलग मेटल्स के साथ में भी वो ज्वेलरी को डिजाइन कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, एक बात हमेशा से बोली जाती कि ये बहुत ही क्रिएटिव क्षेत्र है, तो क्या क्रिएटिविटी होने के साथ साथ में, चूंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो क्या तकनीक में भी उतना ही दक्ष होना जरूरी है जो छात्र इस लाइन में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आके अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, या कुछ और भी करना चाहते हैं? क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, क्या दोनों के लिए दक्ष होना जरूरी है?
2: पहले तो समझना ये बहुत जरूरी है कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। क्रिएटिविटी एक ऑब्जर्वेशनल, साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे किसी को सिखाया नहीं जा सकता। सिर्फ बताया जा सकता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको समझ के, ऑब्जर्व करके और राइट मेथड को चूज करके आप क्रिएटिव बन सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कोई क्रिएटिव नहीं हो जाता, या अपने काम को करने का तरीका मान लीजिए अलग है, और आपको लगता है एक मैं ऐसा हैंड डिज़ाइन बनाऊंगा जिससे कि बहुत अच्छी ज्वेलरी डिज़ाइन हो जाएगी, वो मुश्किल है। तो आपको समझना पड़ेगा उस टेक्निकलिटी को कि कैसा

0: कौन सा मेटल यूज किया जाए, किस मेटल के साथ में किसका फ्यूजन होगा, कौन सा मेटल कितना बेंड हो सकता है, तब आप उस डिजाइन को बना सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, हमने बहुत सारे ज्वेलर्स से भी बातचीत किया तो जो उन्होंने बताया कि मार्केट में डिमांड इस चीज की है, तो क्या उसका इम्पैक्ट एजुकेशन पे पड़ता है कि उनको वही चीज बताई जा रही है जो मार्केट में डिमांड में है, तो कैसे एजुकेशन में वो सारी चीजें शामिल की जाती हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज उनको कैसे दिया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: एज फार एज निफ्ट इज कंसर्न, अगर मैं निफ्ट के बारे में बात करूं तो निफ्ट में ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से आएंगे और आपको ज्वेलरी डिजाइन कराने लगाया जाएगा। निफ्ट एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर वर्क करता है, जहां पर वो आपको बताता है कि मटेरियल्स की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कौन कौन से मटेरियल्स कैसे वर्क करते हैं, साथ ही साथ कैसे आप उसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाते हैं। जैसे किसी भी डिजाइन को अगर आपको बनाना है तो एक तो आपने हाथ से बनाया, फिर कैसे आप उसे सॉफ्टवेयर के साथ में रिफाइन रीट्यून करते हैं, मटेरियल आप कौन सा उसमें यूज करेंगे, इन्फ्यूजन आप कैसे करेंगे जिससे कि उसको बनाया जा सके। नाउ कम टू द एकेडमिक साइड, ज्वेलरी डिजाइनिंग एक सिर्फ स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, उसके साथ में बहुत सारे एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं उस एक स्पेसिफिक फील्ड में जाने के लिए, जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग होता है, जिसमें सिस्टम लर्निंग होती है कि यानी आप कैसे अंडरस्टैंड करें कि आप कैसी ज्वेलरी बनाएं, कितने ग्राम की बनाएं, यू नो जो वर्क करे, और आप किन लोगों के लिए बनाएं। तो इसका एकेडमिक्स का अगर मैं बात बोलूं तो जनरली 10+2 के बाद में बच्चे में स्टडीज में आते हैं, जिसमें प्राइमरी बेसिस में उन्हें क्रिएटिव नॉलेज दी जाती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल्स दी जाती है, उनको ज्योमेट्री भी पढ़ाई जाती है, उनको ये भी बताया जाता है कि कैसे आप अपने इस प्रेजेंटेशन को बेहतर करें, विच इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन। आपको प्रोटोटाइपिंग सिखाई जाती है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी फ्लेक्सीबिलिटी, उसकी वर्क फंक्शनैलिटी कैसी रहेगी, कि कैसे वो प्रोडक्ट काम करेगा। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी पहले साल में दी जाती है, उसके बाद में अगले साल में स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, जिसमें से एक एसेसरी डिज़ाइन एंड ज्वेलरी डिज़ाइन डिपार्टमेंट है जिसमें बच्चे ज्वेलरी मेकिंग को पढ़ते हैं। तो ज्वेलरी डिज़ाइन में भी कहाँ से आप इंस्पायर होंगे, किसी डिज़ाइन को आप कैसे बनाएंगे, ट्रेंड में क्या चल रहा है, व्हाट इज ट्रेंड एंड फोरकास्टिंग, किस तरीके की ज्वेलरी लोग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, कब पहनना पसंद करते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ अ रिसर्च बेस्ड वर्क भी उनको पढ़ाया जाता है।
1: बिल्कुल मैम, और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, हालांकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पारंपरिक रूप से जो डिज़ाइन वर्षों से लोग पसंद कर रहे हैं उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन आज के बदलते दौर में हमने ये भी देखा कि लोग नई डिज़ाइन नई टेक्नोलॉजी को भी उतनी तेज़ी से अपना रहे हैं, तो क्या जब इसकी एजुकेशन दी जाती है छात्रों को तो पारंपरिक डिज़ाइन भी बना रहे और नई डिज़ाइन नए सॉफ्टवेयर जो इसके आगे हैं जिसमें 2D 3D इस सब डिज़ाइन सिखाए जाते हैं, क्या दोनों को कॉम्बिनेशन करके सिखाया जाता है ताकि हम परंपराओं को भी अपने साथ रखे रहें और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी कदम ताल मिला सकें।
0: अब आज के ज़माने में जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुका है, एकेडमिक्स में पढ़ाई में उसको यूज़ किया जा रहा है, आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। हर तरीके की पढ़ाई में टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए नहीं कि आप अपने रूट से दूर हो जाते हैं, बल्कि उन्हें और सजा के संवार के रखने के लिए। जब एक आर्टिस्ट अपने एक कारीगर, स्पेशली अगर ज्वेलरी डिज़ाइन की बात करें, अगर एक छोटे से कमरे पे एक कुप्पी पे बैठ करके सोने को गलाता है तो वो सिर्फ वही नहीं करता है बल्कि अपने शरीर को भी धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे गलाता ही चला जाता है। और ये हम नहीं कहते हैं, ये साइंस कहती है, रिसर्च करती है। निफ्ट इसके लिए बहुत काम करता है। निफ्ट आर्टिजन्स की प्रॉब्लम, उनके क्लस्टर्स को समझना, उनके चैलेंजेस को समझना, ये भी कार्य करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इस पर बहुत काम कर रही है, इन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और यही नहीं, हमारे हर डिपार्टमेंट में इसको लेकर के एक सब्जेक्ट भी है जिसमें कि हम लोग बच्चों को रिसर्च के लिए क्लस्टर एरियाज में लेकर के जाते हैं।
1: आपने इस बातचीत के माध्यम से कहीं न कहीं जरूर समझा होगा कि ज्वेलरी डिजाइनिंग केवल आभूषण बनाने की कला नहीं है, बल्कि ये भारतीय विरासत, आधुनिक नवाचार और आर्थिक सशक्तिकरण का भी एक अद्भुत संगम है। ये क्षेत्र न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक पहचान को संजोए हुए है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता और रचनात्मक भविष्य के नए द्वार भी खोल रहा है। यानी कि परंपरा और तकनीक के इस सुनहरे मेल के साथ

तो दोस्तों, नई उड़ान की विशेष श्रृंखला हुनर में आज आप जान रहे थे ज्वेलरी डिजाइनिंग, बिजनेस भी, कला भी, इस विषय पर लोगों की बातचीत सुन रहे थे और उनके अनुभव जान रहे थे। और उम्मीद है कि ये आज का अंश आपको बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल अगर इसके बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं तो खतों के माध्यम से अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा पता है, नई उड़ान कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। तो बस आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे यानी कि अभिषेक को इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
4: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
6: ज्ञान, विकास और अवसरों का मधुर संगम है

कार्यक्रम नई उड़ान, जहां समय की अर्थपूर्ण चर्चाएं, देश के विकास से जुड़ी ताजा झलकियां, युवाओं के लिए मार्गदर्शक करियर सूत्र और धरातल से लाई गई सच्ची आवाजें, हर रोज शाम 5:45 पर आकाशवाणी प्राइमरी चैनल 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज मीडियम वेव पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम नई उड़ान।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सर्वकारेण कस्यापि सौंदर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौंदर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषेधितम्। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन इबोला संक्रमणेन प्रभावित देशेभ्यः आगच्छद्भ्यः अथवा पारगमनं कुर्वद्भ्यः यात्रिणां कृते कश्चन विशेष स्वास्थ्य परामर्शः प्रसारितः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्रिणः सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वयुते मंत्रिमंडले द्वात्रिंशत् जनाः सम्मिलिताः, येषु चतस्रः महिला मंत्रिणः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायां अद्य सायं अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटंस तथा चेन्नई सुपर किंग्स दलयोः मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा च तस्य इटली समकक्षीया जॉर्जिया मेलोनी इत्येतौ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर इत्यत्र सहकार्याय स्वकीय प्रतिबद्धतां ज्ञापितवन्तौ। अस्याः परियोजनायाः भूरिशः प्रशंसां कुर्वन्तौ उभौ नेतारौ ऐषमः 26,000+ अस्य उपक्रमस्य प्रगतये आईमेक मन्त्रिस्तरीय गोष्ठ्याः प्रथमायोजने दृढपदक्षेपं स्वीकर्तुं प्रोत्साहितवन्तौ। रोमनगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह आयोजिते संयुक्त संवाददातृ सम्मेलने इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी आईमेक इत्येतं यूरोप मध्य पूर्व भारत देशान् संयोजयितुं कश्चन महान् आर्थिक संपर्क मार्गः वर्तते इति वर्णितवती। तया प्रोक्तं यदस्मिन् व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखला स्थैर्यं दृढ़ीकर्तुं महत् सामर्थ्यं वर्तते। मेलोनी त्येषा अवोचत् यत् क्षेत्रीयान्तर सम्पर्कस्य सुदृढीकरणार्थं सर्वोपरि प्राथमिकता अस्ति तथा च उभावपि देशौ अस्य वीथि मार्गस्य विकासं दृढतया समर्थयतः। उभावपि प्रधानमन्त्रिणौ पुनरपि प्रोक्तवन्तौ यत् नवोन्मेषः विज्ञानं प्रौद्योगिकी च भारत इटली देशयोः मूलाधाराः सन्ति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् इटली देशः स्वस्य विशिष्टाभिकल्पनायै सूक्ष्मता कौशलाय च विश्वविश्रुतोऽस्ति, अपरत्र भारतस्य ख्यातिः विशालतायै प्रतिभायै सुलभ नवोन्मेषाय च वर्तते।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2020

0: अनुदान प्राप्त मदरसा इत्येतेषु मान्यता प्राप्त मदरसा इत्येतेषु तथा च अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयस्य एवं मदरसा शिक्षा विभागस्य अंतर्गतं कार्यरतासु अनुमोदितासु शिशु शिक्षा केन्द्रेषु माध्यमिक शिक्षा केन्द्रेषु च प्रवर्तिष्यते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तथा दक्षिण कोरिया देशस्य देशभक्ति भूतपूर्व सैनिक कार्यमंत्री कोन ओहयोल च अद्य सियोल नगरस्य इमजिंगक उद्याने भारतीय युद्ध स्मारकस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनम् अकुरुताम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरस्य नरेंद्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटंस दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति। क्रीडा सायं सार्धसप्तवादनतः आरभ्यते। गुजरात टाइटंस दलेन पूर्वमेव अंतिम चतुष्क क्रीडायां स्वस्थानं निश्चितं। चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं च अंकतालिकायां चतुर्थस्थानं प्राप्तुं स्वस्य संभावनां सुदृढीकर्तुं प्रयतते। अत्रांतरे गतरात्रौ कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन मध्ये कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुर्भिः स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 6:30 और इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी।

0: सुनील,
1: सुनील भैया।
0: हाँ विनय भैया,
1: देखो मौसम में है एकदम तीव्रता आ गया है, बहुत तेज गर्मी हो रही, धूप हो रही है, और ऐसे में हम सबका ई मौसम से बच के रह गए हैं।
0: बिल्कुल भैया, बच के रह बहुत ज़रूरी है, और बहुत जब आवश्यक हो, बहुत ज़रूरी हो तब निकलो, नहीं तो अपन जो काम है वही ठंडे ठंडे सुबह शाम संझा में यहाँ निपटाओ।
1: बहुत सही बात कहे हो आप। देखो इस समय जब काम करे के है भैया, तो सवेरे जल्दी उठो और जल्दी काम निपटाए गए, जब तक धूप और लू का प्रकोप बढ़े तब तक घर वापस आ जाओ। एक के साथ साथ अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना हो दो, पानी लगातार पियत रहो, और जैसे कि जो आजकल के पेय हो, तुमने गाँव देहात में से आम के पना है, नींबू के शिकंजी है, छाछ है, ये सब चीज़न का निरंतर सेवन करत रहो, तो शरीर में अगर पानी की कमी ना हुई तो कोनो प्रकार की समस्या ना हुई, नहीं तो पक्का है कि अगर तनिको लापरवाही है तो डॉक्टर के यहाँ जाएक पड़ी।
0: बिल्कुल भैया, डॉक्टर के यहाँ जब जाएक पड़ जाते तो जेब बिल्कुल भारी हो जाते,
1: जेब भारी ना, जेब खाली हो जाते
0: मतलब जेब पे यहाँ दबाव आ जाते, भारी पन आ जाते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जेब दबाव आ जाते। और जैसे जब हम बात करे थे कि जो शरीर में यहाँ पानी की कमी ना हो, तो इसके लिए जो अपन पेयजल होते
0: बिल्कुल
1: वो बहुत महत्वपूर्ण होते, लेकिन उनके साथ यह चीज देखा गया है कि शुद्ध और साफ पेयजल हो।
0: बिल्कुल भैया,
1: क्योंकि जहाँ पानी जीवन बचावत है वहाँ शुद्ध पानी रोग भी पैदा करते हैं।
0: बिल्कुल भैया, तमाम तरीके के जो रोग हैं उनका कारण पानी ही होते, जल ही होते, इसलिए पानी जो हो चाहिए पिए के लिए वो एकदम साफ सुथरा और स्वच्छ हो चाहिए।
1: भाई अगर पानी ना पियो तो आपके पेचिश की बीमारी हो सकत है, पेट खराब हो सकत है, हैजा जी का कहा था वहा हो सकते।
0: बिल्कुल भैया,
1: कई बार पीलिया हो जाते, कई बार जो है डॉक्टर भाई बतावत है कि वो टाइफाइड हो जाते, जिसका मियादी बुखार कहा थे, तो तमाम सारी बीमारियों के जड़ जो होते वो अशुद्ध पानी होते।
0: बिल्कुल, और इन सबका निदान भी है कि स्वच्छ पानी का पिए के रूप में यहाँ प्रयोग किया जाए।
1: इसके लिए सरकार भी देखो प्रयासरत है कि हर व्यक्ति के यहाँ शुद्ध साफ और जितना जरूरत है उतना जल मिले। इसके लिए देखो अपने देश में यहाँ जल जीवन मिशन चलावा जा रहा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में तो एक वरदान के रूप में काम कर रहा है।
0: बिल्कुल भैया, तो पहले के समय में यहाँ तमाम इनकी पानी से संबंधित जो समस्याएं रहे ई योजना के माध्यम से वो दूर हो रही हैं, और सरकार का ये प्रयास है कि हर घर जो है हैंडपम्प लगा हुए और सरलता और सुलभता से सबका जल की उपलब्धि हो सके।
1: बिल्कुल, जल के जो बात कहे तो हैंडपंप के साथ साथ जो नल से जल है
0: बिल्कुल
1: जो है पहुंच हर घर तक बने। और देखो इसके लिए सरकार जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना चला रही, तो आज अपने कार्यक्रम में राम मनोहर त्रिपाठी भैया जानकारी लेके आए हैं कि जल जीवन मिशन ग्रामीण से गाँव में बदलाव देखा सुना जाए और का ध्यान दिया जाए।
2: दोस्तों एक समय था जब हमारे देश के गांव में पानी की समस्या

समस्या सिर्फ तकलीफ नहीं थी बल्कि यह पूरी जिंदगी को रोक देने वाली दीवार थी। जरा सोचिए उन बच्चियों के बारे में जो स्कूल जाने की उम्र में माँ के साथ पानी भरने जाती थीं और जब लौटती थीं तब तक स्कूल का पहला घंटा निकल चुका होता था। फिर धीरे धीरे वो स्कूल जाना छोड़ देती थीं, उन्हें पढ़ाई नहीं बल्कि पानी चुनना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 4-5 बजे महिलाएं सबसे पहले मटका उठाकर घर से निकलती थीं और 3-4 किलोमीटर तक की दूरी तय करके पानी भरने का काम नदी, तालाब या कुएं से किया करती थीं। यह कहानी किसी एक गांव की नहीं है बल्कि यह करोड़ों भारतीय परिवारों की रोज की कहानी है। दोस्तों, हमारे देश के गांव में पानी की ये समस्या सिर्फ समस्या नहीं थी, यह तो हमारे विकास को रोक देने वाला एक बहुत बड़ा अवरोधक था। जब महिलाएं नदी, तालाब, कुएं से या नलकूप से जो पानी लेकर के आती थीं वो प्रायः गंदा होता था, जिसमें अनेक प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया भी होते थे, जिसका परिणाम होता था कि हमारे ग्रामीण और बच्चे डायरिया, टाइफाइड और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते थे और उनकी आधे से ज़्यादा कमाई दवाइयों पर चली जाती थी और महिलाओं की कमर भारी मटके उठाते उठाते झुक जाती थी। उनके सपने, उनकी ऊर्जा उनके उस लंबे सफ़र में बिखर जाते थे। जब पानी जैसी बुनियादी चीज़ के लिए आधी आबादी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो, ऐसे में जल जीवन मिशन किसी वरदान से कम नहीं है। 15 अगस्त 2019 का वह दिन जब हम सब और संपूर्ण देश अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अब गांव के हर घर में नल का साफ पानी पहुंचेगा। जी हां, इसी घोषणा ने आगे चलकर जल जीवन मिशन का रूप धारण किया, जिसका लक्ष्य है कि भारत के हर गांव, हर घर को एक नल दिया जाए जिसमें पीने का शुद्ध पानी प्रतिदिन आए। जी हाँ दोस्तों, हर घर नल केवल एक शब्द नहीं है, ये करोड़ों भारतीय परिवारों की आज़ादी का वादा है। यह उन माताओं के सम्मान का वादा है जो सालों से पानी के लिए मीलों चलती रहीं। मित्रों, जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत का मुख्य लक्ष्य है 2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार के घर तक नल से पीने का साफ पानी पहुँचाना है, क्योंकि 2019 तक सिर्फ 70% अर्थात 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के कनेक्शन लिए थे। शेष 83% परिवार हैंडपंप, कुआं, नदी या अन्य दूसरे साधनों से दूर से पानी लाने के लिए मजबूर थे। आज सरकार के दृढ़ संकल्प के चलते 5 मई 2026 तक देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन पहुँच चुका है, जो कुल ग्रामीण घरों का लगभग 78% है। और अगर हम अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में मात्र 5.16 लाख घरों में नल था, जो 2026 में बढ़कर के 2.6 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच चुका है। मित्रों, जल जीवन मिशन ने सिर्फ नल ही नहीं लगाया बल्कि इसने गांव की रोज़मर्रा की जिंदगी और सोच दोनों बदली है। जैसे इस मिशन ने महिलाओं की जिंदगी बदली, पहले सुबह सुबह जल्दी उठकर 2-3 किलोमीटर दूर तक चल करके हैंडपंप या किसी अन्य साधन से पानी लाना पड़ता था, दिन के 3-4 घंटे सिर्फ पानी लाने में ही चले जाते थे और अब घर में नल खुलते ही पानी मिल जाता है और महिलाएं बचे समय में स्वयं सहायता समूह, सिलाई कढ़ाई, दुकान, अपने बच्चों की पढ़ाई जैसे विभिन्न कार्यों में अपना ध्यान दे रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के कई गाँवों में नल आने के बाद महिलाओं की कमाई 40% तक बढ़ गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है वो है बीमारियों से छुटकारा। पहले गंदे पानी से दस्त, पीलिया, टाइफाइड जैसी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती थीं, जो बहुत बड़ी आय हमारे ग्रामीण भाइयों की ले जाती थीं। हर महीने डॉक्टर का खर्चा कम से कम 500 से 1000 रुपये होता था, लेकिन अब नल का साफ पानी आने से जिन घरों तक पहुँच चुका है वहाँ पानी वाली बीमारी लगभग 70% से कम हो चुकी हैं। दवाई पर खर्च होने वाला पैसा अब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है स्कूल में बच्चों की उपस्थिति। बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ी है। पहले बालिकाएं पानी भरने के कारण स्कूल नहीं जा पा रही थीं, बच्चे भी बीमारी के कारण भी स्कूल से अनुपस्थित रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्कूल में बालिकाओं की उपस्थिति 25% तक बढ़ चुकी है। बच्चे स्वस्थ हैं और वे मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। मित्रों, जल जीवन मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार भी सृजित हुए हैं। पहले यदि नल

0: खराब हो जाता था तो ब्लॉक से मिस्त्री बुलाना पड़ता था और कई दिन इंतजार करने के बाद फिर भी ठीक नहीं हो पाता था और अतिरिक्त पैसा भी खर्च करना होता था। अब जल जीवन मिशन आ जाने से हर गांव में 5 से 6 नौजवानों को प्लम्बर और अन्य पंप ऑपरेटर जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया है। इनको पानी समिति के माध्यम से मानदेय मिलता है, इसलिए खराब नलों की मरम्मत तत्काल हो जाती है। इस प्रकार गाँव का पैसा गाँव में ही रह जाता है, जिससे गाँव की तरक्की होती है। जल जीवन मिशन से खेती और पशुपालन में भी सुधार हुआ है। पहले जानवरों को दूर नदी तालाब तक ले जाना पड़ता था, गर्मी के मौसम में चारा पानी की दिक्कत हो जाती थी, लेकिन घर में नल होने से पशुओं को पानी भी सुलभ है और महिलाएं घर के आसपास जो खाली जमीन पड़ी रहती थी उसमें किचन गार्डन के माध्यम से अपनी सब्जियाँ उगाती हैं, जिससे परिवार को हरी सब्जी प्राप्त होती है और परिणामस्वरूप परिवार के सदस्यों का पोषण ठीक हुआ है और वे स्वस्थ रहते हैं। मित्रों, जल जीवन मिशन ने लोगों की सोच में भी बदलाव किया है। पहले हैंडपंप का पानी फ्री समझकर बर्बाद होता था, अब लोगों ने पानी के महत्व और उसकी कीमत को समझा है, जिससे जल की बर्बादी रुकी है। अब कोई नल खुला नहीं छोड़ता, इससे के साथ ही लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। दूसरे साथ ही हैंडपंप से पानी भरने को लेकर के जो रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे, गर्मी के दिनों में लाइन में लग करके पानी भरना होता था, आपस में मारपीट भी तक हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर घर में अपना नल है, कोई भी परिवार पानी के लिए किसी का मोहताज नहीं है। इससे अब गांव में शांति बढ़ी है और सबसे बड़ी बात, पहले ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था के लिए सरकार से अनुरोध करते थे, अब पानी समिति के माध्यम से अपनी खुद पानी की व्यवस्था चलाते हैं। इससे जन भागीदारी से जल स्वराज कहते हैं। ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति ग्रामीण समुदाय की जन भागीदारी होती है, यही समिति योजना बनाती है और इस पानी समिति में 50% सदस्य महिलाएं होती हैं। हर गांव में 5 महिलाओं को पानी जांचने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो पेयजल की स्वच्छता परीक्षण का समय समय पर करती रहती हैं। मित्रों, पानी मिलना एक वरदान है, लेकिन पानी बचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, यदि नल खुला छोड़ दिया तो कितना पानी बर्बाद होता है। एक टपकता हुआ नल एक साल में हजारों लीटर पानी बहा देता है, इसलिए हर हाल में पानी की बर्बादी को रोकना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगर आपके गांव में मोहल्ले में कोई नल टूटा है, खुला हुआ है या टपक रहा है या किसी प्रकार का लीकेज है, तो तत्काल उसकी सूचना संबंधित को दें ताकि उसे ठीक किया जा सके। अपनी जिम्मेदारी को समझें, पानी की हर बूंद अनमोल है और अगर आज हमने पानी की बर्बादी को नहीं रोका तो आगे आने वाली समय में हमें पानी के लिए संकट का सामना करना पड़ सकता है। पानी बचाने का मतलब है अपने भविष्य को बचाना, ये जिम्मेदारी आपकी भी है और मेरी भी। दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब भारत का हर गांव, हर परिवार कह सकेगा हमारे घर में नल है, हमारे घर में पानी है। जल जीवन मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, यह एक सपने की उड़ान है, उस माँ के सपने की जो कभी मटका उठाकर निकलती थी और सोचती थी कि काश एक दिन घर में ही पानी आ जाए। दोस्तों, वो दिन आ गए हैं, अब पानी को सहेजिए, इस मिशन को अपनाइए और अपने गांव को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब तक नल से पानी बहता है तो सिर्फ पानी नहीं बहता, उसके साथ बहती है उम्मीद, बहती है तरक्की और बहती है आने वाले कल की खुशी। इसलिए कहते हैं, जल है तो कल है।
1: सुनील भैया।
2: हाँ विनय भैया।
1: देखो, कितनी बढ़िया जानकारी जल जीवन मिशन ग्रामीण के बारे में है दीन भैया राम मनोहर त्रिपाठी भैया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, बिल्कुल भैया।
1: और देखो, एक बात और है कि जौन अपन देश है, अपन समाज है, खास करके जो भारतीय समाज है,
2: बिल्कुल
1: अहिंसा के यहाँ बहुत महत्व देते हैं।
2: बिल्कुल, अपन देश जो है हमेशा से अहिंसा का ही पुजारी रहा है।
1: हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो बड़ी दुखद हो जाती हैं, बड़ी दुखद यादें हो जाती हैं उनके लिए।
2: बिल्कुल, और उन घटना जो होती हैं उनसे हमका सबका सीख ले की जरूरत भी है।
1: बिल्कुल, सीख ले की जरूरत है। और ये जो आज का दिन है, मतलब आज 21 मई है,
2: बिल्कुल
1: ये जो है आतंकवाद निरोध दिवस के रूप में हम मनावा जाते हैं।
2: बिल्कुल, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में यहाँ आज के दिन के यहाँ मनावा जाते हैं।
1: और आज एक बहुत दुखद घटना हो रहा है, जो अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनका आज एक दुखद दुर्घटना में निधन हुआ रहा है।
2: बिल्कुल,
1: तो वह के जो है तहत हम लोग ईद दिवस के यहाँ याद करी थे। तो देखो, ये तो हुआ कि हम सबका है कि मन वाणी कर्म तीनों चीज़ों से कुछ ऐसा ना करे के हैं जिसे

0: किसी के यहाँ भी कष्ट पहुँचे,
1: संकल्प लेके हम, बिल्कुल बहुत जरूरी है।
0: हाँ, और देखो अब बात है एक गीत गाने की।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो अंजलि श्रीवास्तव बहनी अपने कार्यक्रम में है एक गौनई लेके आई हैं, खेमटा गीत है, तो एक आनंद लीन जाए।

0: विनय भैया, श्रोता पंच अभी आनंद लिहिन अंजलि श्रीवास्तव बहनी की आवाज में यहाँ खेमटा गीत निहुर निहुर कैसे बुहारू अंगनवा
1: टुकुर टुकुर देवरा निहारे बेमनवा। तो देखो ये बहुत सुंदर गवनई रहा है
0: बिल्कुल। और अब अंगनवा से निकल के यहाँ खेती पाती की तरफ चल चला
1: बिल्कुल जाए? बिल्कुल, देखो खेती पाती की तरफ चलो, लेकिन जो कहा जाते हैं कि पूरे हिसाब से चलो, अगर हिसाब किताब गड़बड़ रखी हो तो खेती पाती की तरफ न चल पे हो
0: बिल्कुल। खेती में यहाँ फिर जो है मजा

0: नाई और उनका पूरा जो है लाभ भी ना मिल पाई।
1: तो
0: कोई भी फसल की बोवेस पहले जो है ना अपने खेती पाती में कौन से पोषक तत्वन की कमी है, कौन से ऐसे जो तत्व हैं जिनका हम जो है अपनी खेती पाती में और रुका जो है बढ़ा सकी, ये सब जानकारी के लिए मृदा परीक्षण या मिट्टी के स्वास्थ्य का परीक्षण बहुत जरूरी है।
1: भैया जैसे हम पंच जब बीमार हुए थे तो डॉक्टर भैया कहाँ जाए थे तो डॉक्टर भैया कहा करते हैं कुछ जाँचे लिख देते हैं, अब जाँच में पता चल जाते हैं कि खून की कमी है कि कोनो और तत्व की कमी है या कोनो की अधिकता है। बहुत सारे जैसे शरीर में तत्व होते हैं वैसे बहुत सारे तत्व अपनी माटी में होते हैं।
0: बिल्कुल भैया, जब वो बीमारी के जब पकड़ मिल जाते ना तो सीधे वही पे प्रहार कर दो तो जो है सीधे उनका इलाज आसानी से हो जाता है। तो वहाँ हाल अपनी खेती पाती का भी,
1: जैसे कोनो कोनो मन के खून की कमी होते तो डॉक्टर भैया उसे जाँच से निकाल लेते हैं और फिर जब खून की कमी के दवा होते वह उका देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे जो होते हैं कि अपने मिट्टी के जब जाँच हो जाते तो उनकी जब रिपोर्ट मिल जाते हम सबका तो पता चल जाता है कि कौन तत्व की कमी है और कत्ती कमी है, तो उसे जो है कि उतने आप क्या प्रबंधन करें क्या पड़ते तो जो आपके यहाँ अतिरिक्त खर्चा हो जाते वो बचत है और जो फसल के उत्पादन हो बढ़िया एक ही होते कि जो समस्या रहे वह हल हो गए, मिट्टी स्वस्थ हो गई।
0: बिल्कुल भैया, और ई परीक्षण से एक चीज की और जानकारी हो जाती है कि हमारी माटी में यहाँ जो कौन से पोषक तत्व है उन मौजूद है और उनका प्रयोग हमका नहीं करना है।
1: वह तो बताए कि इसे अतिरिक्त खर्चा आपके बच जाते हैं। और देखो भैया ये तो सब करवे के रहो लेकिन अब जब बात पोषक तत्व की आपूर्ति के होते तो अब सरकार के मंशा है कि हर मनई तक जो है आवश्यकता अनुसार जो है रासायनिक खाद और चीजें पहुंचे, जो योजनाएं हैं वही पहुंचे, जितनी सुविधाएं मिल रही वही पहुंचे, जो सब्सिडी मिल रही वह पहुंचे। तो उनके लिए अब देखो आजकल फार्मर रजिस्ट्री बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल भैया, यू आवश्यक काम जितने भी अपन पंच भाई हैं किसान भाई हैं करना बहुत जरूरी है। और यू बहुत आसान सा काम है कि जो एक आधार कार्ड आईडी के रूप में यहाँ लागत है और साथ में यहाँ जो खेती के कागजात हैं खसरा खतौनी उनका लेकर जाएगा, यहाँ पास का जो जन सुविधा केंद्र है वहाँ पर जाएगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा कराए के यहाँ और इसका लाभ ले सकत है।
1: बिल्कुल लाभ ले सकत है और एक तरह से अपन जो है वो दर्ज हो जाते हैं कि हम किसान हैं, हमारे पास इतनी जमीन है और वही हिसाब से आपके यहाँ जो सुविधाएं सरकार की तरफ से हों, चाहे उर्वरक की हों, चाहे सब्सिडी की हों, चाहे बीज की हों, वो मिलती हैं। और देखो जो भविष्य आ रहा है वो मैं तय कह लो कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के आपके यहाँ कौनों खेती किसानी से जुड़ी लाभ या सुविधा ना मिली।
0: बिल्कुल
1: फार्मर रजिस्ट्री बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो देखो ये सब चीजें तो खैर होते रहती हैं लेकिन जौन विषय मतलब जौन खेती का विषय आवे वाला है मतलब जो फसल आवे वाली है अगर उनके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए, थोड़ा ऊपर चर्चा हो जाए तो अपन खेती पाती और बेहतर हो जाए।
0: बिल्कुल भैया, और लाभ मिलत है। और आकाशवाणी लखनऊ के आरयू हमेशा से प्रयास रहा है कि अपने से जुड़े जो पंच भाई हैं किसान भाई हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तमाम तिनके ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और तमाम ऐसी गोष्ठियाँ भी आयोजित की जाती हैं जिससे अपन किसान भाई का लाभ मिल सके।
1: तो देखो यह तरह से एक राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 भई रहा है तो ऊपर आधारित रेडियो रिपोर्ट है, इसका वाचन और संपादन रियाज भैया के ही हैं, रियाज अहमद भैया के ही हैं।
0: बिल्कुल,
1: और इसे प्रस्तुत करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो यही का सुना जाए।
0: बिल्कुल भैया,
2: आज 21 मई 2026 को गोमती नगर लखनऊ में स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को वर्चुअली रूप से संबोधित किया कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सूर्य प्रताप शाही ने। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे राज्य मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश श्री बलदेव सिंह औलख, कार्यक्रम की अध्यक्षता की कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश श्री दीपक कुमार ने। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर पंकज त्रिपाठी ने कहा,
3: हमारे अन्नदाता कृषक भाइयों एवं बहनों, आज प्रदेश की खरीफ रणनीति पर विचार विमर्श है, सुझाव है, आपके अनुभव की जानकारी है, आज हम सब ही यहाँ समवेत हुए हैं। आप सभी का मैं हृदय से इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि खेती जलवायु से भी प्रभावित होती है, भूमि से भी प्रभावित होती है और यही वो समय है जब हम खरीफ की तैयारी प्रारंभ करते हैं। गर्मी की जुताई और हरी खाद मृदा की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए निरंतर हमें जीवांश पदार्थ को सुनिश्चित करने के लिए हरी खाद की बुआई का भी समय आ चुका है। साथ ही खरीफ की फसल में धान की नसी की भी तैयारी हमें करनी है। इन सभी की शुरुआत

0: से पूर्व यह आवश्यक है कि हम सभी एक रणनीति बना लें और इसके लिए आवश्यक होगा कि जो भी नवीन तकनीकें जो कृषि विश्वविद्यालयों से शोध केंद्रों से हमें प्राप्त होती हैं हम उन्हें हर उस किसान भाई तक पहुंचाएं जहां पर जिससे कि वह एक अच्छा उत्पादन उत्पादकता प्राप्त कर सके। मौसम में आप निरंतर परिवर्तन देख रहे हैं, जो सामान्य वर्षा है उसकी 90% वर्षा होने की संभावना इस वर्ष बताई जा रही है, तो निश्चित रूप से हमें उसके अनुसार अपनी रणनीति अपनी फसलों के चयन पर विचार करना होगा। इसके लिए उन फसलों पर हमें विचार करना होगा जो फसलें कम पानी लेती हों। धान के क्षेत्र से जहां पर पानी की व्यवस्था कम है वहां पर हम दलहन और तिलहन की फसलों को यदि हम रिप्लेस कर पाएं तो बहुत अच्छी सफलता होगी। धान में एक नया विधि आई है DSR सीधी रुपाई, तो DSR विधि से यदि हम बुआई करके करेंगे तो निश्चित रूप से लागत को हम कम कर सकेंगे और जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है उसको हम कुछ कम कर सकेंगे। बीजों की व्यवस्था पूरे प्रदेश में कर ली गई है, धान का बीज पहुंच चुका है, ढैंचा का बीज पहुंच चुका है, अभी दलहन तिलहन और मिलेट्स के बीज हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है, बीज विकास निगम के साथ हमारा समन्वय हो चुका है और यह बीज भी बहुत शीघ्र आपके गोदामों पर पहुंच जाएगा। प्रत्येक किसान अपना पंजीकरण करेंगे कृषि विभाग के पोर्टल पर और पंजीकरण करने के उपरांत आपको जितने बीज की मात्रा की आवश्यकता है आप बता देंगे, उसी के आधार पर अब लॉटरी के आधार पर हम बीज आपको वितरण कर रहे हैं। ब्लू स्ट्रिप और फेरोमैन ट्रैप इनका प्रयोग को बढ़ावा देना पड़ेगा जिससे कि जो हम उत्पाद कर रहे हैं उसमें कम से कम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना पड़े। आज यहाँ इस गोष्ठी में केवल फसलों पर ही नहीं बल्कि सब्जियों पर फलों पर पशुपालन के विषय से संबंधित विषयों पर भी और सहकारिता के विभिन्न विषयों पर आज यहाँ पर चर्चा होगी। मैं अपने आए हुए सभी किसान भाइयों का सभी आगंतुकों का हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।
1: उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा,
2: आज पूरे दिन की जो ये गोष्ठी हुई है इसमें बड़े सकारात्मक विचार हमारे किसान भाइयों ने किए, सीधा संवाद किया और आप सब लोगों ने अपनी उपलब्धियां और उपलब्धियों के साथ साथ जो कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों के बारे में भी बताया। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज बहुत सारे किसान भाई जो आज के समय की जो सबसे प्रमुख चुनौती है वो है कि हमें जहर मुक्त खेती करनी है। सत्र में जब जैसे ही पंकज त्रिपाठी जी बता रहे थे कि आने वाला समय खरीफ के लिए थोड़ा चुनौती पूर्वक है क्योंकि अभी मौसम विभाग ने अभी कहा है कि क्योंकि अल नीनो का प्रभाव शायद विपरीत हमारे मानसून पर पड़े और हमारी जो ये खरीफ का सीजन है वो मानसून आधारित बहुत हद तक होता है, तो किसान भाइयों हम सब लोगों को इस चुनौती के लिए तैयार रहना है। साथ ही एक और चुनौती है, गल्फ में वॉर चल रही है, बहुत सारा हम लोगों जो तेल आयात करते हैं अगर मानसून नहीं हुआ तो हम लोगों को वाटर पंप की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। इसके साथ ही हो सकता है कि थोड़ा खाद की भी उपलब्धता उस हिसाब से ना रहे जितना पिछले वर्षों में रही, इसकी भी चिंता हमें किसान भाइयों को और विशेष रूप से मंच पर बैठे हुए हमारे सभी अधिकारियों को भी करनी पड़ेगी। पिछले 3 दशकों में जो लोगों के खाने पीने की पद्धति है और जो हम लोग उत्पादन कर रहे हैं उसमें बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, खाने पीने की पद्धति का बदलाव और जो हम लोग उत्पादन कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया चला है। आज से लगभग 3 दशक पूर्व हम लोग प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और चावल पर आश्रित थे, लेकिन पिछले 3 दशकों में हमने देखा है कि हमारे भोजन की थाली में और भी खाद्य पदार्थ फल फ्रूट मांस अंडे मीट डेयरी प्रोडक्ट्स इसकी बहुत आयत होने चली है, तो इसके लिए हम लोगों को भी अपनी जो फसल की प्राथमिकता है जो हम लोगों की किसानी की प्राथमिकता है उसको भी हम लोगों को अपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक बात और, ये जो बदलाव खाने पीने का आ रहा है वो सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं आ रहा है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ रहा है, इसके लिए हम सब लोगों को अपना जो उत्पादन करना है उसको हमें उसी हिसाब से अपनी प्राथमिकताओं को सेट करना पड़ेगा। जितने भी यहाँ पर आए हुए कृषक हैं सब लोगों से मैं अनुरोध करूंगा आप सब लोग भी अच्छी पैकेजिंग अच्छी ब्रांडिंग अच्छी मार्केटिंग और पूरे संपूर्ण विश्व स्तर पर रीच के लिए बहुत सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, आप उस अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का भी आप सब लोग इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं आप सब लोगों को ग्राहकों तक पहुंचने की आप लोगों को बहुत बहुत आसानी रहेगी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने नए एंटरप्रेन्योर के लिए जो भी नए कृषि क्षेत्र में नए लोग आना चाहते हैं

उनके लिए हम लोगों ने एक स्टडी ग्रुप बनाया है जिसमें आप सब लोग अपने ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं। हम उनको मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, सर्टिफिकेशंस के लिए, क्योंकि सर्टिफिकेशंस भी आजकल कोई भी ग्राहक होता है वो सबसे पहले पैकेज पर देखता है कि क्या सर्टिफिकेशंस हैं। इसी अनुसंधान परिषद में हम हर 15 दिन में मौसम आधारित जानकारी देते हैं। वो मौसम आधारित जानकारी सभी कृषि विभाग और उसके साथ के जुड़े हुए सभी विभागों को जाती है। इस बार मुझे बड़ी खुशी है और बड़ा हर्ष का विषय है कि प्रगतिशील किसानों की अब की बार की सहभागिता बहुत अच्छी रही है।

0: सारा देश देखता है। अभी हाल में उन्होंने आह्वान किया कि हम सब लोगों को थोड़ा सा खाद्य तेल का खाना कम करना चाहिए और उसका उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इसकी दिशा में भी जो दलहन की फसलें हैं, जो तिलहन की फसलें हैं, किसान भाइयों, हम सब लोगों को जो आयातित फसलें हैं, अभी जो खाद्य तेल का आयात है, टोटल कृषि आयात का लगभग 50% है, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के किसान लोग जो अपनी तिलहन की फसल है उसको भी अपनी जो आने वाली जो अपने खरीफ के सीजन है जिसमें तिल की फसल बड़ी महत्वपूर्ण है, मूंगफली की फसल बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी अपनी प्राथमिकताओं में आप शामिल कर सकते हैं। मैं आभारी हूँ कृषि विभाग का और विशेष रूप से पंकज त्रिपाठी जी का और डॉक्टर रविंद्र सिंह जी का कि उन्होंने इतने अच्छे आयोजन के लिए सबको आमंत्रित किया और विशेष रूप से भी मुझे आमंत्रित कर मुझे अपने विचार और अपनी भावनाएं आप सब लोगों के बीच में व्यक्त करने का मुझे अवसर दिया है। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अंत में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।
1: उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा,
2: खेती बाड़ी दूध दुहान समृद्ध किसान की है पहचान। किसान वो है जिसके पास में खेती है, बाड़ी माने बगीचा है, और दूध दुहान का मतलब जिसके पास पशुपालन है। ऐसे ही किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 25 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय गोष्ठी में बड़ी संख्या में यहाँ प्रयोगधर्मी ऐसे किसान आए हैं। ऐसे अनेक प्रयोगधर्मी किसानों ने जो अपने अनुभव बताए, मैं इनकी सबको भूर प्रशंसा करता हूँ। आपके पास में कम से कम एक गाय हो और गोबर गैस हो, आज की आवश्यकता हो गई है। और आज बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोगों ने यहाँ पर ग्रो सेफ फूड का उद्घाटन किया है, तो हमें प्रबंधन करना है एक एक ग्राम गोबर का, एक एक ग्राम गौमूत्र का, एक एक ग्राम वानस्पतिक अवशेष का, चाहे उसमें धान की पराली हो, सब्जी मंडी का कचरा हो, फल मंडी का कचरा हो, कोई भी वानस्पतिक अवशेष आज आवश्यकता है। घर घर में गोबर गैस होना चाहिए। इस आपदा के इस अवसर पर जहां हमको पेट्रोलियम की समस्या बढ़ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं एलपीजी की समस्या को लेकर, डीएपी यूरिया की समस्या को लेकर, डीजल पेट्रोल की समस्या के लिए, मेरे भाई और बहनों, इस सब का समाधान है गोबर गैस संयंत्र। और गोबर गैस के लिए चाहिए गाय, उसके लिए चाहिए भैंस। हमारे पास उत्तर प्रदेश में 3,30,00,000 के लगभग महेश वंश है भैंस, और लगभग 1,90,00,000 गौवंश है, 5 करोड़ हमारे पास पशुधन है। ये बहुत बड़ी संपदा हमारे पास में। जमाना खेती किसानी का है, जिसके पास खेती होगी, जिसके पास पशुपालन होगा, आने वाले समय में सबसे सम्मानित होगा। बढ़ती हुई आबादी को भोजन देना आज सबसे बड़ी चुनौती बढ़ रही है। खेती का रकबा कम हो रहा, आबादी बढ़ रही है। सबसे बड़ा सम्मान यदि किसी का है तो किसानों का है। आप अंत में मैं एक बात करूंगा कि समय आ गया है अब मल्टीलेयर फार्मिंग का। मल्टीलेयर फार्मिंग माने क्या? केवल गेहूं, धान, गन्ना, आलू की खेती करने से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी का हम पेट नहीं भर सकते हैं। हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफ, उसके लिए चाहिए किसान वो है जो किसान के पास में खेती भी है, अपना पशुपालन है, अपनी दालें हैं, अपने तेल है, अपने मसाले हैं। आज हमारे पास में आवश्यकता है कि पशुओं के लिए कैटल फूड सिक्योरिटी की, हरे चारे की, मुरिंगा विद नेपियर लगाने की आवश्यकता है। मैं मंच के सभी अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में मिशन मुरिंगा चलाने की आवश्यकता है। मुरिंगा यदि लगेगा और गाय खाएगी तो आपको गाय के लिए वो सुरक्षा का काम करेगी, डीए आपको जो है खली चुनी चोकर का काम करेगी, और आप मुरिंगा आदमी खाएगा, आदमी ठीक हो जाएगा, खेत में गिरेगा, खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। इस समय चुनौती है हमारे सामने खेत में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना। जहां 2.5% ऑर्गेनिक कार्बन था, उत्तर प्रदेश में सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.2-0.3% बचा है। इसलिए आज हमारे सामने चुनौती है, पानी को रोको, पेड़ों को लगाओ। समय आ गया, चले गांव की ओर, चले गाय की ओर, चले खेत की ओर, चले प्रकृति की ओर। बच्चों को देसी गाय का दूध घी दही पिलाना है, मूत्र गोबर को खेत में ले जाना है, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में अभी 7,716 गौशाला है। ये गौशाला हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इनको गौ आधारित प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण केंद्र बना देना चाहिए। तो हम अपने गायों के, बैलों के, भैंस के मूत्र का, गोबर का, कचरे का प्रयोग करके हम बायोगैस का उत्पादन करें। घर घर में हम एलपीजी की समस्या का निराकरण कर सकते हैं। गांव गांव में गोबर गैस लगेंगे तो जो एलपीजी गांव में जा रही है उसकी पूर्ति शहर वालों के लिए हो जाएगी। यदि हम विकसित भारत 2047 बनाना चाहते हैं, उसका आधार है गाय, गांव, किसान, खेती। मैं अपनी बात को पूरी करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस काम में लगेंगे तो आने वाले 2047 में भारत को एक नया समृद्ध और संपन्न बनाने की दिशा में काम करेंगे। सभी को मेरा प्रणाम।
1: प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए और उनकी समस्याओं को सामने रखते हुए कहा कि

0: सम्मानित किसान साथियों, मैं सबसे पहले आपका आभार देना चाहूंगा कि आप लोग इस गरीब गोष्ठी में आए और आपने अपने यहाँ विचार साझा किए, जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको आपने यहाँ पे शेयर किया। कृषि वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने आपको उन्नत कृषि की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बताया, और जो इधर प्रयोग हुए हैं, जो विश्व स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनसे आपको अवगत कराया। आप लोगों ने भी जो फील्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, जो खुद ही अपने अनुभव से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों ने भी अपनी चीजें साझा की। हम लोगों ने आपके द्वारा बताई गई जो कमियां हैं या जो सुझाव हैं उनको नोट किया है। कुछ को मैं इंगित करना चाहूंगा जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है और उस पर हमें और हमारी टीम को ध्यान देना है। एक पशु बीमा पे आप लोगों ने कहा, एक सब्सिडी जो पशुओं पे है योजना पे, उसको 5 पशुओं पे लाने की आपने बात कही। उद्यानीकरण में सब्सिडी के भुगतान में जो दिक्कत आ रही है वो आपने कहा। किसान सहायकों के मानदेय की बात आपने रखी। कृषि यंत्र अनुदान पे जो दिक्कतें आ रही हैं और उन पे ज्यादा अनुदान बढ़ाने की बात की आपने। तमाम चीजें पैदा की जा रही हैं लेकिन उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है स्थानीय स्तर पे, वो आप लोगों ने इंगित किया। जो स्प्रिंकलर की बात है आपने रखी, झांसी से धन धान्य योजना और जो अधिकारियों का उसमें सहयोग और रोल होना चाहिए, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार बीज की उपलब्धता करानी चाहिए, DSR के लिए जो मशीन नहीं है उनके बारे में क्या किया जा सकता है, यूपी एग्रीज में सिलेक्शन नहीं है जिन डिस्ट्रिक्ट्स का, और पशुपालन और मत्स्य पालन हेतु जो KCC की समस्या है जिसमें हम लोग बैंक से और नाबार्ड के साथ मिलकर ऑलरेडी ये समस्या हम लोगों के सामने है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि इसको कैसे सार्थक बनाया जाए और KCC कैसे उपलब्ध कराया जाए आपको। एक आलू उत्पादन की भी बात थी, अगेन वो प्रोसेसिंग प्लांट्स की कमी है जो लोकल स्तर पे, चाहे वो मक्का हो, आपने कहा ककड़ी और अच्छे उत्पाद हो रहे हैं, उनको उनकी प्रोसेसिंग हो, उनका ज्यादा कीमत स्थानीय स्तर पे अपने कृषकों को मिले। सोलर प्लांट्स पे सब्सिडी की बात आपने की कि उसको ज्यादा किया जाए। माइनर्स में पानी की बात आई। एक इन विपणन की जो समस्या आती है, एक तो उसके सर्टिफिकेशन की है कि जो खरीदता है उसको कैसे विश्वास हो कि ये प्राकृतिक खेती के उत्पाद हैं, और बेचने वाले को उसका मूल्य नहीं मिलता जिसके कारण थोड़ा प्रोत्साहित होते हैं। तो ये एक गैप है जो हम लोगों को फिलअप करना है। ये देखना है कि जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनके उत्पादों के लिए हम कहाँ आउटलेट दें और कैसे उसकी अच्छी कीमत दें। एक खाद विक्रय पे रसीद नहीं देने की शिकायत थी। FPOs द्वारा मार्केटिंग के लिए उचित स्थान मंडी में मांगी गई है, उस पर हम लोग देखेंगे कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं ताकि लोकल जो बायो मैन्योर प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी प्रोत्साहन मिले। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
1: आज की रेडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। विनय भैया, देखो कितनी अच्छी गोष्ठी रही। जी के माध्यम से कहा गवा कि अपनी खेती पाती की तरफ लौटो, अपने हरहा गोरुन की तरफ लौटो, और जो है दूध दही घी की ओर लौटो,
2: और सबसे बड़ी बात है कि
1: ज्यादा
2: जन अपन पुरानी
1: ऑर्गेनिक खेती पर भी बल दीन गवा है, और तमाम जो ऐसे जो है विशेषज्ञ आए तो जो ई बात का भी कहें कि जो है धान गेहूं या जो है दलहनी तिलहनी फसलन के अलावा जो और तमाम तरह की फसलें शोध करके जो है लाई जा रही हैं उनका भी अपनी खेती पाती में यहाँ जोता बावा जाए, ताकि जो है और तेजी से अपन आर्थिक विकास हो सके और अन्य खूब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो सके।
2: बिल्कुल भैया। और देखो, जब अपन देसी तरीके से फसल पैदा की जाते हैं तो उसका स्वाद जो है निराला होते।
1: बिल्कुल भैया।
2: आप यहाँ आद हो या ना आद हो, कि जब मकई घर की होत रहा है, मकई की रोटी में हम मोट मोट मस्का लगाए के हैं, मक्खन जी का लगाए के हैं,
1: बिल्कुल भैया,
2: नमक लगाए के हैं खाओ, या फिर दूध में डाल के हैं खाओ, या फिर जो मट्ठा होता है वही मक्के घोट के हैं, मकई डाल के रोटी डाल के हैं, गुड़ डाल के हैं खाओ, तो का आनंद रहा है।
1: बिल्कुल भैया, उसका स्वाद भी मिलत रहा है, वो शरीर में भी लागत रहा है, और जब ये सब चीज़ें घर में बनती रहें तो एक अलग तरह का माहौल की सुगंध पूरी जो है घर में यहाँ जो है महकत रहा है।
2: तो देखो ईजन सुगंध है। यह सुगंध अब आज हम एक गौनई के माध्यम से लाए हैं।
1: बिल्कुल।
2: कि मकैया में है काका खूबी हो, जो मक्का है वहाँ काका खूबी है, और काव की बढ़िया बातें हैं उनके गीत के माध्यम से सर दिग्विजय सिंह नाथ सिंह का है, अभी बताए रहे हैं या सुनाए रहे हैं, तो कहा सुना जाए आनंद लीन जाए, और वही पलन में है खवा जाए जो कहूँ मस्का रोटी खाए हो बचपन।
1: बिल्कुल भैया, आनंद लीन जाए लोकगीत का।

0: तो विनय भैया अभी श्रोता पंच आनंद लिहिन लोकगीत क्यार
1: मकैया हो तो रगुन कहले न जाला, मतलब कितने गुण है, चाहे चाउर बनाओ चाहे रोटी बनाओ चाहे मसाला संखाओ चाहे मट्ठा संखाओ,
0: हर स्वाद का आनंद
1: आनंद है। अब भैया के लाओ बड़े नीक लागत है।
0: बिल्कुल भैया, उनका सब पहले वाली जो फसलें रहा है उनका स्वाद बिल्कुल अलग रहा है। और देखो भैया, मौसम का हाल अपने जो किसान भाई हैं उनका इंतजार रहा थे, तो कहा रही अगले 7 दिन का मौसम का हाल।
1: देखो अगले मौसम का जो हाल है वो मौसम जैसा चल रहा वैसे रही, काहे से नहीं, कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। मतलब कि या गर्मी या लू या जो है ऐसे रही, तो भैया पंच भाई से है निवेदन कि जो जायद के फसल के खेती कर रहे हैं वो अपने खेत के लगातार निगरानी करता है, जैसे पानी की कमी दिखे तैसे सिंचाई की व्यवस्था करें, और साथ ही साथ अपने हराहा गुरुन के यहाँ धूप और लू से बचा रहे हैं, अपने परिवार के यहाँ बचा रहे हैं, खुद भी बचे रहे हैं।
0: बिल्कुल भैया, तो यूँ तो रहा है मौसम क्या हाल, मौसम के हिसाब से चलें, आगे बढ़ें और अपन ध्यान रखें, अपनी खेती पाती ध्यान रखें। और साथ में यह देखो विनय भैया, जब अपनी फसल क्या सही दाम मिल जाते हैं ना, तो बड़ा नीक लागत है।

0: तो चार फसलन, चार मंडिन का बाजार भाव लेके जो है हम आए हैं। बिल्कुल, गेहूं की अगर बात की जाए लखनऊ में यहाँ, तो गेहूं का जो आज का भाव रहा है वो 2590 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। कानपुर में यहाँ 2585 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। गोंडा में यहाँ 2543 रुपये प्रति क्विंटल और अयोध्या में यहाँ 2585 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। साथ में यहाँ अगर चावल कॉमन की बात की जाए तो लखनऊ में यहाँ 3470 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 3500 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में यहाँ 2970 रुपये प्रति क्विंटल और अयोध्या में यहाँ 3040 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा।
1: भैया जो चना है छोटा वाला, उसका भाव लखनऊ में है 6630 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 6430 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में है 6800 रुपये प्रति क्विंटल और अयोध्या में है छोटा चना का भाव रहा 6400 रुपये प्रति क्विंटल। भैया जो उर्द काली है तो इका कानपुर में भाव रहा 9280 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में है 9575 रुपये प्रति क्विंटल और अयोध्या में है 9270 रुपये प्रति क्विंटल। भैया इतना जो मटर सफ़ेद है वो का लखनऊ मंडी में है थोक भाव क्विंटल के हिसाब से रहा 4400 रुपये और कानपुर में रहा 4500 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में रहा 4230 रुपये प्रति क्विंटल, अयोध्या में रहा 4270 रुपये प्रति क्विंटल। आलू जौन रहा है वो लखनऊ मंडी में है 720 रुपये प्रति क्विंटल रहा है, कानपुर में 640 रुपये प्रति क्विंटल रहा है और गोंडा में है 720 रुपये प्रति क्विंटल रहा है, अयोध्या में है आलू जो थोक भाव में रहा है वो 725 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। इस तरह से प्याज का भाव जो है लखनऊ मंडी में है रहा 1300 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में रहा 1280 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में रहा 1200 रुपये प्रति क्विंटल और अयोध्या में रहा 1200 रुपये प्रति क्विंटल।
0: तो बिल्कुल भैया, तो यूँ तो रहा है मंडी के भाव, चाहे ब्याचक हो चाहे खरीदक हो, बिल्कुल सही भाव की जानकारी अपने श्रोता पंचन का हुई गवे है। और साथ में यहाँ एक जानकारी और है कि अगले दिन के कार्यक्रम का है।
1: हाँ बिल्कुल भैया, बहुत सही कहे पंच भाई, जो है आज से जब सुन लेते हैं तो कल उनका पता रहा था कि भाई हमारे महत्व क्या चीज है तो उनका जरूर सुना था। हालांकि सुनत पंच भाई लगातार अपन कार्यक्रम है, लेकिन कुछ लोगन का जैसे जो होते विशेष लगाव होते किसी विशेष विषय पर, तो यह के हम पंच कोशिश करी थे कि अपने पंच भाई के यहाँ कल के कार्यक्रम की जानकारी दे दी जाए।
0: बिल्कुल,
1: तो आज जो कार्यक्रम सुनें तो सुनबे कहीं ना, कल का जो लोकायतन के वार्ता है वह है जलवायु परिवर्तन और दायित्व।
0: बिल्कुल,
1: और दूसरा जो एक खेती किसानी के वार्ता है वह है किसान डायरी, जो कि कृषि समाचार पर आधारित होते हैं। और जो जलवायु परिवर्तन और दायित्व के वार्ताकार हैं वे डॉक्टर नागेश्वर दुबे भैया हैं, लोकायतन कार्यक्रम में आ रही हैं। और खेती किसानी के तो डायरी, किसान डायरी तो पंच भाई जानते हैं कि जो साप्ताहिक गतिविधियाँ होती हैं कृषि जगत के लिए, उनका एक समाचार के रूप में लेके हम पंचन के।
0: बिल्कुल भैया, बिल्कुल
1: चलत चलत अब अपने कार्यक्रम का पता बता दो।
0: बिल्कुल, काहे से जो है फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी होते, तो कार्यक्रम का पता है लोकायतन एवं खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। और इसके साथ में यहाँ श्रोता पंच ईमेल के माध्यम से भी अपन प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उनके लिए ईमेल आईडी है farmandhomeairlakhnau@gmail.com।
1: एक बार फिर से ईमेल का पता अपने पंच बहन के बता देते, farmandhomeairlakhnau@gmail.com। पर अगर आप मेल करते तो आपके बात, आपके प्रतिक्रिया सीधे हम तक पहुंची और उनका उत्तर आपके यहाँ जरूर मिली।
0: बिल्कुल भैया, और यही साथ अब समय हो चला है कि अपने सब श्रोता पंचन से लीन जाए। आ गया, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही

0: पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। चार अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया आज अंतिम दिन है। प्रदेश में अब तक 46,93,783 लोगों ने स्वगणना में हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लगभग 2,96,000 लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में कल से जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
4: प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
6: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
4: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि एक अच्छी पहल है।
7: मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन, पठन पाठ की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनकी छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदय ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है। और एक समान बच्चे दिखें, अलग अलग देखते उनको लग जाए कि ये इस विद्यालय के भी अच्छी बात हो सके। शिक्षा में इस प्रकार के सुधार कार्यक्रम किए गए हैं वर्तमान काल में, तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश अब शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। और ये एक अच्छा वो है कि सबके साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार अलग अलग ड्रेस कोड हो तो ये ज्यादा बेहतर।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर से लेकर जनपदों में खेल के मैदान और स्टेडियम का निर्माण करा रही है। श्री योगी ने कहा कि देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।

0: ये युवा ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें चरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आगामी चरण में हर जनपद में निवेश हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित है। बांदा बीते चार दिनों से लगातार देश का सबसे गर्म जनपद बना हुआ है। कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। सभी जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। फतेहपुर के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हीटवेव के मद्देनजर नगर पालिका प्रशासन ने शहर के चौराहों और बाजारों में वाटर स्प्रिंकल लगवाए हैं।
2: हीट वेव को देखते हुए एडवाइजरी जो है सरकार ने जारी की है। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा जो है हमने 22 स्थानों पे अस्थाई हमने प्याऊ लगवाए हैं और इसके अलावा शहर में हमारे 14 वाटर कूलर लगे हुए हैं जिससे शीतल पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा जो हीट वेव का अलर्ट आ रहा है और मौसम जितना गर्म है, इसको देखते हुए हम लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं। जो भी हमारे तिराहे चौराहे हैं या मार्केट की एरिया है, उस एरिया में हम स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं जिससे वातावरण में थोड़ी सी नमी उत्पन्न होती है और लोगों को राहत मिलती है।
1: प्रदेश के 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आज लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। करीब 8000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को पारदर्शी और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे भी गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची में कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर को भी शामिल किया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार नए केंद्रों के लिए लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अनुकूल, सुलभ और कुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रीतुल कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों केंद्रों से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:31 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं 1983 विश्व कप का सफर इतिहास के पन्नों से। आलेख शमशुल अरकीन का, स्वर आसिफ इकबाल और शमशुल आफरीन की।

0: खेल जगत प्रोग्राम के एक नए अंक के साथ मैं हूं आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं
1: शम्सुल आरफीन।
0: नमस्कार श्रोताओं, क्रिकेट को हिंदुस्तान में जितनी शोहरत मिली उतनी शायद ही किसी और खेल को मिली हो, इसीलिए आज का खेल जगत क्रिकेट पर ही आधारित है।
1: जी हाँ साथियों, आज के खेल जगत में हमने इतिहास के पन्नों को खंगाला और उनमें से एक बेहद कीमती पन्ने को इस प्रोग्राम के लिए सुरक्षित किया और वो पन्ना क्रिकेट की दुनिया से है।
0: तो श्रोताओं, आज का हमारा विशेष खेल जगत जिसका शीर्षक है इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्ने से हमने 1983 का वर्ष चुना है क्योंकि इसी साल भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था और फिर दुनिया ने भारतीय क्रिकेट टीम का लोहा माना।
1: बिल्कुल, विश्व कप 1983 से पहले विश्व कप 1975 और विश्व कप 1979 में उस वक्त की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम का खिताब वेस्टइंडीज को हासिल था, क्योंकि 75 और 79 में विश्व कप की विजेता टीम वेस्टइंडीज ही थी।
0: साल 1983 विश्व कप की बात करें तो 1983 में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही थी। ग्रुप ए में थी इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। वहीं ग्रुप बी में वेस्टइंडीज थी जो कि दो बार की चैंपियन थी। ग्रुप बी में भारत थी, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे भी थी जो कि अपना पहला विश्व कप खेल रहा था।
1: ये तीसरा विश्व कप 9 जून से 25 जून 1983 को खेला गया और ये इंग्लैंड के साथ साथ वेल्स में हुआ। इस विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम को कोई भी मजबूत दावेदार नहीं मान रहा था। इस विश्व कप में बहुत से उलटफेर भी हुए, जैसे 9 जून 1983 को ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच जो मैच हुआ उसमें जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी।
0: जी हां, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान किम ह्यूज ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे टीम ने 60 ओवर में 239 रन 6 विकेट खोकर बनाए, जिसमें जिम्बाब्वे के कप्तान डंकन फ्लेचर ने 84 बॉलों पर 69 रन बनाए।
1: लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियन महज 226 रन ही बना सकी 7 विकेट पर। हैरत की बात।

0: तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरे 60 ओवर मैच खेले।
1: 9 जून को जहां जिम्बाब्वे ने उलटफेर किया, वहीं 9 जून 1983 को ही भारत ने भी जीत के साथ अपने विश्व कप का आगाज किया।
0: अब बात करते हैं भारत बनाम वेस्टइंडीज का वो मैच जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, सुनील गावस्कर एक रन बनाकर आउट हो गए। वहीं श्रीकांत ने 14 रन बनाए। यशपाल शर्मा ने जबरदस्त 89 यानी 89 रन और संदीप पाटिल ने 36 रन और कपिल देव की 15 रनों की बदौलत भारत ने 60 ओवर में 8 विकेट पर 262 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज 228 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। नतीजा भारत ने वर्ल्ड कप 1983 में अपना पहला मैच ही नहीं जीता बल्कि वेस्टइंडीज जैसी खतरनाक टीम को भी शिकस्त दे दी।
1: जी हां, इसके बाद भारत के एक मैच का और जिक्र करना जरूरी हो जाता है। 18 जून 1983 का वो दिन जब न्यू कमर जिम्बाब्वे का भारत से मैच था और ये मैच लीसेस्टर में खेला जाना था। इस मैच का टेलीकास्ट करने के लिए बीबीसी ने संसाधनों का हवाला देते हुए इसको कवर करने से मना कर दिया था। उनका ख्याल ये था कि दोनों टीमें कमजोर हैं, ये क्या ही कर लेंगी, और सच में उस समय ये सच भी था।
0: लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इस मैच में भारत ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया जो कि गलत साबित हुआ क्योंकि शुरुआती 5 विकेट महज 17 रन पर गिर गए थे। लेकिन उसके बाद कपिल देव ने इतिहास रचते हुए आतिशी पारी खेली और 175 रन नाबाद महज 138 गेंदों में बनाए जिसमें 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे। और उनकी इस पारी की बदौलत भारत का स्कोर 266 रनों तक पहुंच गया और जिम्बाब्वे ये मैच 31 रनों से हार गया।
1: 20 जून 1983 को भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया से था और ये मैच भारत के लिए करो या मरो वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। यशपाल शर्मा के 40 रन, संदीप पाटिल के 30 रन, महिंदर अमरनाथ के 29 रन और कपिल देव के 28 रनों की बदौलत भारत 55.5 ओवर में 247 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। लेकिन मदन लाल और रोजर बिन्नी ने 4-4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी जबकि कप्तान कपिल देव ने भी 2 विकेट लिए। नतीजा ये रहा कि भारत ने ये मैच 118 रनों से जीता जिसकी उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
0: और इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया और सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड से उसका सामना होना था। 22 जून 1983 को मैनचेस्टर में हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 213 रन ही बनाए। इसके जवाब में भारत ने 4 विकेट खोकर ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस जीत में गेंदबाजों के साथ बल्लेबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। यशपाल शर्मा ने 61 रन, मोहिंदर अमरनाथ ने 46, संदीप पाटिल ने 51 और इस तरह भारत पहली बार इंटरनेशनल विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर गया।
1: जी हाँ बिल्कुल, इधर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि वेस्टइंडीज अपने वक्त की 2 बार की चैंपियन भी थी और तीसरी बार इतिहास रचने के करीब थी।
0: और फिर विश्व कप 1983 में वो हुआ जिसकी किसी ने भी शायद कल्पना नहीं की होगी। इधर भारतीय टीम ने अपने ऊपर से कमजोर टीम होने का जो दाग लगा हुआ था उसको धुलने की भरपूर कोशिश की।
1: 25 जून 1983 का वो ऐतिहासिक दिन जो आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है।
0: और इस मैच में यानी फाइनल मैच जो कि विश्व कप 1983 का फाइनल मैच था, इसमें जो प्लेइंग 11 जो थी भारतीय क्रिकेट टीम की वो बड़ी दिलचस्प थी। कप्तान कपिल देव के साथ श्रीकांत, महिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा, संदीप पाटिल, सुनील गवास्कर, कीर्ति आजाद, रोजर बिन्नी, मदन लाल, सैयद किरमानी और बलविंदर संधू साहब शामिल थे।
1: लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में टॉस वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने जीता और

0: पहले फील्डिंग चुनी। पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमी बेचैनी से इस मैच को देख रहे थे। खुद लॉर्ड्स में तकरीबन 30,000 दर्शक मौजूद थे।
1: जी हाँ, बेचैनी तो थी ही। भारत की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं रही, क्योंकि सुनील गावस्कर 2 रन बनाकर जल्द ही आउट हो गए, लेकिन श्रीकांत ने 38 रन बनाए। दरअसल उस वक्त वेस्टइंडीज की जो धारदार बॉलिंग थी, उससे पूरी दुनिया खौफ खाती थी। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों ने हिम्मत के साथ सामना किया और सम्मानजनक स्कोर तक जा पहुंचे।
0: जी हां, श्रीकांत के 38 रन मोहिंदर अमरनाथ के 26 और संदीप पाटिल के 27 रनों की बदौलत भारत 183 रनों पर ऑल आउट हो गया। और उस समय लोगों का ये मानना था कि ये डिफेंड करने लायक स्कोर नहीं है। वेस्टइंडीज के खेमे में भी खुशी की लहर थी कि इतना छोटा स्कोर आसानी से हासिल किया जा सकता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, और ऐसा लगा भी, क्योंकि वेस्टइंडीज की शुरुआत तेज रही। उस समय विवियन रिचर्ड्स आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मदन लाल की गेंद पर रिचर्ड्स ने हुक शॉट हवा में खेला और कपिल देव ने अपने पीछे की तरफ लंबी दौड़ लगाकर कैच पकड़ा, और इस कैच के साथ ही भारत की उम्मीद जाग गई थी। और ये लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान आज बिल्कुल खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। 30,000 से ज्यादा दर्शक आज इस मैच को देखने के लिए मौजूद है। इस वक्त विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं विवियन रिचर्ड्स, जो कि भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। इसी के साथ इस वक्त मदन लाल के हाथ में गेंद है और वो धीरे धीरे चलते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए सामने है विवियन रिचर्ड्स, और ये पटकी हुई बॉल को उन्होंने हुक कर दिया है। गेंद काफी ऊंची हवा में है, उसके पीछे भारतीय कप्तान कपिल देव दौड़ रहे हैं, क्या ये कैच ले पाएंगे? सारे लोग सांसता में बैठे दे रहे, और इसी के साथ ये कैच, और भारत की उम्मीद एक बार फिर से जिंदा होते हुए। जबरदस्त कैच, ऐतिहासिक कैच, और इसी के साथ विवियन रिचर्ड्स आउट।
0: जी हाँ, कपिल देव का वो कैच बेस्ट कैचेस में आज भी गिना जाता है, या यूं कहें कि ऐतिहासिक कैच था वो। उसी कैच के बाद वेस्टइंडीज के विकेट ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे।
2: That's out. Yes. Kapil Dev finally gets his just desserts. Andy Roberts falls LBW. No doubt at all in Barry Mayer's mind. He went for 4-1, 26 for 9. And India almost there. And that's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end, did Michael Holin. Tried to swing that straight ball with the leg. It's another wicket for Amarnath. Now delighted he looks. 140 all out, West Indies. And an observation here for Kapil Dev to receive the trophy from Lord Carr, chairman of the Prudential Assurance Company.
0: स्कोर कार्ड के हिसाब से वेस्टइंडीज के गॉर्डन ग्रीनीज ने 9 रन, डेसमंड हैंस ने 13 रन, विवियन रिचर्ड्स ने 33 रन, क्लाइव लॉयड ने 8 रन, लैरी गोम्स ने 5 रन, फॉन बॉक्स ने 8, जेफ डुजॉन 25, मेलकम मार्शल के 18 और एंडी रॉबर्ट्स ने 9 रन बनाए।
1: और इसके बाद वेस्टइंडीज की पूरी टीम 140 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से भारत ने 43 रनों से ये मैच अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत में भारत के गेंदबाजों ने जो भूमिका अदा की, उसे क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। इस मैच में मोहिंदर अमरनाथ ने 7 ओवर में 12 रन देकर 3 बहुमूल्य विकेट हासिल किए। उनके अलावा मदन लाल 12 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। बलविंदर संधू और रोजर बिन्नी ने भी 2-2 विकेट लिए।
0: इस मैच में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को मिला, जिन्होंने न सिर्फ 3 विकेट लिए बल्कि अपने बैट का जौहर दिखाते हुए 26 रन भी शामिल किए।
1: और इस तरह भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।
0: और श्रोताओं, यही वो पल था, वो समय था, जिसने क्रिकेट को भारत में स्थापित करने और लोकप्रिय बनाने में अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट मैदान से निकलकर गांव-गांव और गली-गली तक पहुंच गया। कपिल देव भारतीय जनमानस के हीरो बन गए। क्रिकेट कमेंट्री हर घर और सड़क चौराहों पर सुनी जाने लगी। रेडियो ने इस खेल की लोकप्रियता को और धार दिया। मैच वाले दिन सड़कों पर ट्रैफिक कम हो जाता, चाय की दुकानों पर भीड़ लग जाती। आज भारत में क्रिकेट का जो स्वरूप है, जो लोकप्रियता है, उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं उस विश्व कप ने ही रखी थी।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारे

0: आज के खेल जगत का विशेष अंक इतिहास के पन्नों से।
1: आपके साथ इस सफर में शामिल थे मैं आसिफ इकबाल
0: और मैं शम्सुल आरफीन।
1: कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम? अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर भेजें।
0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम से हमें आज्ञा दें।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 7:45 और इसी के साथ प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में आप तक पहुंचा रहे हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म का गीत।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गीत। और अब आपके रेडियो सेट पे पहुंचा रहे हैं अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म का गीत जिसे गाया कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में कुली नंबर वन इस फिल्म का गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अकेले हम अकेले तुम इस फिल्म का गीत।

अकेले हम अकेले तुम इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 8 और इसी के साथ प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओं, आज के इस अंक में आपको सुनवाते हैं एक वार्ता जिसका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपादेयता। वार्ताकार हैं प्रोफेसर ध्रुव चंद्र त्रिपाठी।
2: सूर्य, पृथ्वी, जल, जंगल, जमीन के विषय में वेद मंत्रों में लिखा जाना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के चरित्र वर्णन की मूल संकल्पना

0: भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपादेयता। वार्ताकार हैं प्रोफेसर ध्रुव चंद्र त्रिपाठी।
1: सूर्य, पृथ्वी, जल, जंगल, जमीन के विषय में वेद मंत्रों में लिखा जाना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के चरित्र वर्णन की मूल संकल्पना क्या है, ये सब सवाल सहज ही हमारे और आपके मन में उठते हैं। इस पृथ्वी पर चर चराचर सभी के लिए जीवन का नियम बना हुआ है। पर्यावरण संरक्षण को धर्म से जोड़ना, नदियों को देवी स्वरूपा समझना, उसे संरक्षित करना धार्मिक कृत्य माना गया है। जहां समुद्र को देवता और वृक्ष देव भव की परंपरा चली आ रही हो, उसे समझना बेहद आवश्यक है। इन परंपराओं पर सवाल करना या सवाल को न समझना, दोनों बेहद कठिन है। हम आधुनिक युग में नदियों को स्वच्छ नहीं रख सके, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव बाढ़, बारिश, गर्मी, फसल चक्र एवं जीवन पर सीधा पड़ रहा है। हम विवश और लाचार खड़े हैं, हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ऐसे समय में जब पूरा विश्व आपस में लड़ रहा हो, तेल एवं खाद्यान्न का संकट मानव सभ्यता को निकल जाने के लिए खड़ा है। रूस, अमेरिका, यूक्रेन, ईरान, इराक, दुबई, कतर, खाड़ी के अनेक देश और इजराइल और यूरोपीय देश, सभी देश सभ्य कहे जाते हैं। इनके पास अथाह दौलत, अकूत संपदा विद्यमान है, फिर भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। लेकिन हम आज भी विश्व बंधुत्व के सवाल को बार बार उठाती है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि विश्व किस प्रकार इन समस्याओं का हल निकालेगा। अपने निहित स्वार्थों के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करना, बम गोला बारूद से एक दूसरे को मारना, नस्त नाबूद करने, अपनी सोच को विस्तारित करना, अपने देश को खलीफा बनाने की कोशिश करना, हर विश्व का देश लगा हुआ है, एक दूसरे की कोई परवाह नहीं करता है। तब पूरा विश्व भारत की विश्व बंधुत्व की अवधारणा एवं सर्वे भवंतु सुखने की अवधारणा को समझना चाहता है। आप देखे होंगे कि हम हमेशा विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण की बात करते हैं। पूरे भारत में घूम घूम कर नारी शक्ति वंदन एवं सर्वे भवंतु सुखना का उद्घोष करने वाले लोगों को, जिन्हें विद्वत जन कहते हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। उनको अपने लेखनी से विश्व मंच पर भारत की संस्कृति के धरातल को व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कमंडलों में अवस्थित भारतीय संस्कृत की चिरंतन धारा को यदि विवेकानंद जी का प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्व तो न मिला होता, तो दुनिया ने जिस मर्यादित संस्कृति और सभ्यता को देखा, वह कदापि संभव नहीं था। जी हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि विद्वत जनों को आगे आना होगा। जो आधुनिक समाज की मूल अवधारणा है, आज उसी पर चर्चा और विमर्श हम सबको करना चाहिए। भीष्म पितामह ने जो कुछ कहा, उसको आपको समझना होगा। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का कर्तव्य है कि वे समानता के साथ अपने लिए निर्धारित 9 सामान्य धर्मों का निर्वहन करें, अर्थात वे कभी क्रोध ना करें, सदा सत्य ही बोलें, न्याय बुद्धि का परिचय दें, क्षमा भाव को बनाए रखें, आचरण की शुद्धता स्वाभिमान ना छोड़ें, विवाद से कोसों दूर रहें तथा अपने आश्रितों वृत्तिजनों के पालन पोषण में चूक ना करें। साथ ही विद्या दान करना, संयम का परिचय देना और अध्ययन मनन करना, रक्षा करना, यज्ञ करना, दान करना, सभी के लिए उत्कृष्ट कार्य बताया गया। आज हम अत्याधुनिक होने के बाद भी, सभ्यता के सारे मानक प्राप्त करने के बाद भी, आज हमारे समाज में क्या समस्याएं नहीं है? हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे आपके सामने दिखाई पड़ती हैं। हम तो प्राचीन परंपराओं की तरफ अगर लौटते हैं तो निश्चित रूप से एक स्वर्णिम भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। हम थोड़ा

0: आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में। सन 1991 में ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया और भारत की बाजार प्रणाली को खोलने का प्रयास लोगों ने किया। आपको पता ही है कि पहले औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और पूरे विश्व को एक बाजार की आवश्यकता थी। भारत एक बड़ा बाजार हुआ था। अब भारत की संयुक्त परिवार प्रणाली अगर वैसे ही बनी रहती तो एक बच्चा जहां पैदा होता था घर में रहता था, दो तीन बच्चे थे, माँ उसकी अपने बच्चे को सुबह नहला धुला के बाहर भेज देती थी, वो चार पांच हाथों में रहता था, कभी बुआ के साथ रहता था, कभी मौसी के साथ रहता था, कभी दादी के साथ रहता था, कभी नानी के साथ रहता था, कभी नाना के साथ रहता था, कभी चाचा के साथ रहता था। माँ शाम को अपने बच्चे को पाती थी, दो से चार बच्चे पल जाते थे, तो संयुक्त परिवार व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन थी। आज यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों को यह लगा कि साहब इस संकल्पना को अगर हम खराब नहीं कहेंगे तो हम तो अपने सामान को नहीं बेच पाएंगे, तो उन्होंने एकल परिवार व्यवस्था को अच्छा कहने लगे, कहने साहब न्यूक्लियर फैमिली इज द बेस्ट फैमिली। तो उन्होंने कहा कि परिवार टूटेंगे तो क्या होगा, एक टीवी की जगह चार टीवी होगी, चार फ्रिज होगी, चार वॉशिंग मशीन होगी, चार मकान होंगे, तो निश्चित रूप से बाजार की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और हमारी कमाई बढ़ेगी। यानी हमारी पारंपरिक प्रवृत्तियों को, हमारी पारंपरिक जो सोचने की जो धुरी थी उसे तोड़ा गया। अब बड़े साजिश के साथ इस पर प्रहार किया गया। इन सब बातों को हमें समझना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपादेयता, इस विषय पर अभी आप एक वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे प्रोफेसर ध्रुव चंद्र त्रिपाठी। इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम का यह अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 8:10 और ये वक्त है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं

ख्याल रंग के नगमा कहूँ तुझे, खुशबू ख्याल रंग के नगमा कहूँ तुझे, हैरान हूँ तुझको देख के मैं क्या कहूँ तुझे।

सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की कई गज़लें, और बेहद खूबसूरत सी गज़लों के बाद अब ये कार्यक्रम सुगम संगीत का यहीं समाप्त होता है।

0: ज्ञान विकास और अवसरों का मधुर संगम है कार्यक्रम नई उड़ान, जहां समय की अर्थपूर्ण चर्चाएं, देश के विकास से जुड़ी ताजा झलकियां, युवाओं के लिए मार्गदर्शक करियर सूत्र और धरातल से लाई गई सच्ची आवाजें, हर रोज शाम 5:45 पर आकाशवाणी प्राइमरी चैनल 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम नई उड़ान।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 8:30 और इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए गीत के साथ, फिल्म का नाम कहो ना प्यार है।

उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे मोहब्बतें फिल्म का गीत, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।

0: economies which totally complement each other.
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशान के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज़ एट 9।

0: overs against Chennai Super Kings in Ahmedabad when reports last came in. Earlier, Chennai Super Kings won the toss and opted to field. In the Malaysia Masters Super Badminton, India's Ashmita Chaliha advanced to the women's singles quarterfinals after 21-13, 21-16 win over Malaysia's Go Jinwei in the pre-quarterfinals in Kuala Lumpur today. She will next face 8-seeded Line Højmark Kjærsfeld of Denmark. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railways Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And an IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं असलम बेग। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पांच मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निज़ाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और एलपीजी की खतरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासरा मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पांच मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमेरिका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में MSME के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है।

0: गोवा और शिमाल मशरकी खत्ते में आइंदा दो दिनों तक बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बारे में भी पेशगोई की है। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइस ने आज मुंबई में कौमी स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और घंटी बजाने की रिवायती तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुब्रुस भारत और यूरोप के दरमियान एक कुदरती राहदारी है, नीज वो वसी तर मशरकी बहरे अरब और मशरक वस्ता के दरमियान एक राहदारी है जो उमंग इख्तरा और मुस्तकबिल पर मरकूज खाके के साथ सियासी और इकतसादी इस्तेहकाम फराहम करती है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत कल अच्छी कारकर्दगी वाली निगहदाश्त मईशत तख्लीक देने के एक वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वजारत ने बताया कि इस तकरीब की अहम सरगर्मी मुअम्मर शहरियों के लिए जीवन ऐप और मुअम्मर अफराद की निगहदाश्त वाले करने वालों के बारे में जानकारी के शतायु डैशबोर्ड का आगाज करेगी। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी एक मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से सुदर्शन ने 53 गेंदों में शानदार 84 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फवाइद की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजामों को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिरखास सप्लाई मौजूद है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 9:30 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है आपके पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है आपकी पसंद और आज के सफर में आपकी रेडियो साथी मैं आकांक्षा हूँ आपके साथ। श्रोताओं, ये वो कार्यक्रम है जहाँ हम आपकी ही पसंद के फिल्मी नगमे पहुँचाते हैं आपके रेडियो सेट्स पर और आप अपनी फरमाइश हमें बताते हैं पत्रों और ईमेल के माध्यम से। तो आज के कार्यक्रम में हमने शामिल किए हैं आपके फरमाइशी ईमेल और जो पहला ईमेल हमें मिला है वो आया है औलाद फिल्म के गीत के लिए। तो भाई, आपको बता देते हैं कि इस गीत को किसने सुनना चाहा है। ये ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, रामशंकर, रक्षा मौर्य, राम सागर और पप्पू, आप सब ने मिलकर हमें ईमेल किया और औलाद फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं उषा मंगेशकर की आवाज़ में पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट पर।

उषा मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे औलाद फिल्म का गीत। और कार्यक्रम में जो अगला ईमेल हमें मिला है वो हमें आया है जनपद हरदोई के सांडी जगह से, और ईमेल करने वाली हमारी श्रोता हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा। आपकी फरमाइश नगीना फिल्म के गीत की है, तो भाई आपके रेडियो सेट पे पहुंचा रहे हैं आप ही की पसंद का गीत, आवाज़ मोहम्मद अजीज़ की।

और अब हम शामिल कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में अगला फरमाइशी ईमेल। ये ईमेल हमें आया है नेहा वर्मा, अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल, सियाराम का। आप सब ने हमें गौरपुर ज़िला हरदोई से ईमेल किया है और आपने सुनना चाहा है प्रेम रोग फिल्म का गीत। तो भाई आपकी फरमाइश पूरी किए देते हैं आपके रेडियो सेट पे आप ही की पसंद का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।

प्रेम रोग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं अपना अगला फरमाइशी ईमेल। ये ईमेल हमें आया है ग्राम ललहुआ मितौली ज़िला खीरी से, और ईमेल करने वाले हमारे श्रोता हैं विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा, ऋचा, गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार और विजय पांडे। आपने अपनी फरमाइश तो हमसे जाहिर करी ही और बहुत प्यारी बातें आपने ईमेल में हमें लिख भेजी हैं। आप लिखते हैं कि कोशिश जब तक तब तक जारी रखो जब तक मंजिल ना मिल जाए। अगर हम मंजिल पाने की इच्छा रखते हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी निश्चित रूप से। और आप लिखते हैं कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, लेकिन बहादुर वे कहलाते हैं जब हार निश्चित हो और फिर भी वे मैदान नहीं छोड़ते। कितनी सुंदर बातें आपने लिखी, और वाकई अगर कोई इस समय जीवन में हताश या दुखी होगा या किसी चीज़ में हारा हुआ महसूस कर रहा होगा तो सुनकर उसको ज़रूर एनर्जी मिलेगी, ज़रूर उसके अंदर ऊर्जा आएगी। आगे आप लिखते हैं, आदरणीय बहन जी, सविनय निवेदन है कि मैं आकाशवाणी लखनऊ का नियमित श्रोता हूँ, सभी कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनता हूँ। आकाशवाणी लखनऊ ही मेरा सच्चा साथी है, सुबह से शाम तक इसी के साथ रहता हूँ और लाभ उठाता हूँ। साथ में आप सभी की इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। सबसे पहले तो आप कार्यक्रम को सुनते हैं और गुनते हैं और इतना पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहे हैं कि आप कार्यक्रमों के ज़रिए हमसे जुड़े हुए हैं, और आप बता रहे हैं कि आप सुबह से शाम तक कार्यक्रमों को सुनते हैं। भाई, तो अब हमारी समीक्षा भी ज़रूर करिए ताकि आगे कुछ भी अगर हम सुधार करने की गुंजाइश हो तो वो भी कर सकें। और अभी तो कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अब आपकी हम फरमाइश पूरी कर दें। तो आपने फरमाइश की है साजन फिल्म के गीत की, तो भाई आपको और आपके सभी साथियों को हम सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में साजन फिल्म का गीत।

साजन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी अनुराधा पौडवाल की। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपनी रेडियो साथी आकांक्षा के साथ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार के गाए गीत के साथ। फिल्म का नाम है अमर प्रेम।

अमर प्रेम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी किशोर कुमार की। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी को कश्मीर की कलीस फिल्म के गीत में।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे कश्मीर की कली इस फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं किशोर कुमार को जोशीला फिल्म के इस गीत में।

0: राजकुमार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए सुनते हैं आनंद फिल्म का गीत, गाया है मुकेश ने।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन

आनंद फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी मुकेश की। और अब हम बढ़ चले हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर और आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसीना मान जाएगी इस फिल्म का गीत।

0: क्या बात है,
1: नजर ना लगे।
0: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
2: मैं तशरीफ ला नहीं रही हूँ, तशरीफ ले जा रही हूँ।
0: कहाँ?
2: मिसेस वर्मा के चलने के लिए किसने कहा है? वहाँ सिर्फ लेडीज पार्टी है, तो कर चुकी हूँ, मुझे देर हो।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे हसीना मान जाएगी, इस फिल्म का गीत। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 10:30। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं ऋतु भार्गव का राग चारुकेसी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के आज के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋतु भार्गव का राग चारुकेसी में ख्याल गायन, और इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम आप यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल

से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली

गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने की लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Meteorological Department IMD has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow, and it will continue this week. Similar conditions are likely to prevail over Delhi, Haryana, Chhattisgarh and coastal Andhra Pradesh. In the Malaysia Masters Super Badminton, India's Ashmita Chaliha advanced to the women's singles quarterfinals in Kuala Lumpur today. She will next face 8th seed Line Hoymar Kjelsvik of Denmark. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है. स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 11:10:21. हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है. कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी. तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए. जय हिंद.